उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

पहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफातियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: 101 FM।
3: A-level with zero tuition fee, 100% future. Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफातियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: दिस इज FM
5: 101. दिस इज 101% प्योर। यू आर ट्यून्ड इनटू द वन अबव 101 FM।
6: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is FM 101.

ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम है।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: देखे तो जो इधर

संभल के यारा तू नजर मिलाना, जालिम दुनिया है लोग लत लूट, ना जाना कहीं दूर, प्यार दी गल्ला

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is FM 101.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: This is FM 101.

दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज जमहूरियत के किर्गिस्तान रवाना होंगे। मक्का मुश्तरक दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की का पहला इजलास आज इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान और तुर्की ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। शिमाली कब्रिस के करीब समुंदर में एक कश्ती उलटने से 8 अफराद जां बहक हो गए हैं।
2: कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान। This is FM 101.
4: I love FM 101.
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: दिन की 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम जमहूरिया किर्गिस्तान के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज बिश्केक रवाना होंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरक दिफाई मुआहदे के तहत तजवीराती सियासी और दिफाई कमेटी का इफ्तिताही इजलास आज इस्तंबुल में होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिले वाशुक में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और खवातीन के T20 एशिया कप में पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान मैच कल दुबई में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

दिल मुब्तला है कब से अजाबे सुकूत में, तू रब्बे नुतको लब है मुझे बोलना सिखा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम लाहौर। वेलकम, खुशामदीद जियानु आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियोज में। प्रोग्राम सुनेंगे अब आप लेडीज लाउंज मेरे यानी कि सादिया रफीक के साथ। एवरी मंडे हर पीर के दिन 11 बजे से लेकर ठीक 1 बजे तक हम और आप होते हैं साथ साथ। तो जनाब उसी खूबसूरत से साथ को निभाने के लिए एक बार फिर से मौजूद है आपके साथ। कहिए कैसे हैं आप? वेल उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते गाते मुस्कुराते हमारे साथ साथ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, हंसते रहें मुस्कुराते रहें जहां भी रहें हमारे साथ साथ रहें। सो जनाब एक हफ्ते बाद आज फिर आपसे हो रही मुलाकात। मुलाकात का आगाज करते हैं हमेशा की तरह वेदर अपडेट से जो कि नॉट कमिंग स्लो आई मीन सीरियसली जून जुलाई की गर्मी याद दिला दी है पिछले एक हफ्ते के वेदर ने। वेल लिसनर्स, एज पर रिकॉर्डेड एट 11 AM इट्स 36 डिग्रीज सेल्सियस ऑन द स्केल एंड आज के दिन के हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 37 डिग्रीज और कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्रीज रहने की उम्मीद की जा रही है। ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें, हवा में नमी के तनासुब की बात करें दैट इज 53% और हवा चल रही है 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ओवरऑल वेदर आज के दिन सनी है और जो पूरे वीक की वेदर रिपोर्ट मुझे शो करी है दैट इज नॉट गुड अगेन। ये मुझे बता रही है कि यही वेदर इसी तरह से सस्टेन करने वाला है थ्रू आउट द वीक, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट, फॉर गुड, फॉर बेटर, क्योंकि जनाब मौसम बदलते देर नहीं लगती और सारी रिपोर्ट्स जो हैं एक मिनट में झूठी पड़ जाती हैं, बस किसी तरफ से हवा के झोंके आ जाएं, किसी तरफ से बादल छा जाएं, पता चलता है नहीं चलता। लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल स्टार विद दिस ट्रैक, दिस वन इज माय पर्सनल वेरी मच फेवरेट। वेरी टैलेंटेड सनम मारवी, हैरान हुआ।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

All right, listeners, it's 11:15 on the dial right now, and we're back for once again. Music track ke baad laut kar chuke aapke saath, Ladies Lounge. Mujhe kehte hain Sadia Rafiq. Aapko kya kehte hain? Aap bhi hamein bata sakte hain. 04211100101 is the number. आप लोगों की ऑफर कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे थोड़ी देर में जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही वक्त मिलता है. सफर में, रास्ते में जो लोग हैं, आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपसे कहेंगे हैव सेफ वे. एंड स्पेशली अगर आप ड्राइविंग सीट पर हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से, देखभाल कर, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, अपनी लेन में रहते हुए, सारे सिग्नल्स का एहतराम करते हुए, और जनाब जहां तक नजर जाए वहां तक नजर को घुमाते हुए बहुत एहतियात से ड्राइव कीजिए. इत्मीनान कर लीजिए कि आप ठीक जा रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी ठीक जा रहे हैं.

Well, जनाब आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस भी हम तक पहुंचते हैं 4471 पर. अपने फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101L, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए उसको 4471 पर. आज का टॉपिक क्या है जनाब, ये मैं आपसे डिस्क्लोज करती हूँ थोड़ी देर में. बहुत मजे का टॉपिक, ऐसा हो सकता है टॉपिक मजे का ना हो और जो मजे का नहीं होता उसको भी आप लोगों का फीडबैक बहुत ही मज़े का बना देता है. मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में होते हैं कि जनाब क्या बात की जाए, क्या बात की जाए आज के शो में, तो उस वक्त सोचते हुए, प्लान करते हुए, डिसाइड करते हुए बिल्कुल भी ये नहीं अंदाज़ा होता कि ये टॉपिक जो है किस तरह से लिया जाएगा ऑडियंस की तरफ से, लिसनर्स की तरफ से. जो हमें बहुत ही फ्लॉप किस्म की बात लग रही होती है, फ्लॉप किस्म का टॉपिक लग रहा होता है, उसे आप लोग हिट बना देते हैं. और जो हिट होता है वो तो होता ही हिट है, वो तो सुपर हिट हो जाता है. सो जनाब आज के टॉपिक पे भी हम बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्रैक के बाद. और नेक्स्ट ट्रैक आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा सही स्टार्ट हो रहा है जनाब आज तो. इट्स अ लॉन्ग ट्रैक, थोड़ा सा सुनेंगे, वापस आपको ज्वाइन करेंगे. So don't go anywhere. Just stick around. This is FM 101.

जान जाएगी और क्या होगा। वेल जनाब, इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है, क्या हो सकता है इससे ज्यादा। वेल जनाब, जिंदगी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कीजिए। ऑलराइट, जान जाएगी और क्या होगा। वेल जनाब, इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है, क्या हो सकता है इससे ज्यादा।

पॉजिटिव, स्टे हैप्पी और कोशिश करें कि आपकी खुशियाँ आप खुद कशीद करें, आपकी खुशियाँ दूसरों के मूड्स पे, दूसरों के रवैयों पे, दूसरों के अमाल पे डिपेंड ना करें। हमारी जिंदगी है तो हमें ही कुछ करना होगा ना जी। और जनाब ऐसा ही कुछ हमारा आज का टॉपिक भी है जिस पे हम आज बात करेंगे। हम बात करेंगे हमारे मी टाइम के ऊपर, वो वक्त दिन के किसी भी कह लें औकात में, किसी भी लम्हे में, कि जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं, उस वक्त की बात करेंगे।

वो कौन सा ऐसा लम्हा है, कौन सा ऐसा वक्त है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका, आपकी ज़ात के लिए मुख्तस होता है, या ऐसा लम्हा कि जिसमें आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फ्री होते हैं, कोई और काम, कोई और बर्डन नहीं होता आपके ब्रेन पे, आपके दिमाग पे, आपके नर्व्स के ऊपर हावी नहीं होता, जब आप रिलैक्स कर सकते हैं, जब आप आराम से बैठ सकते हैं, जहाँ आप और कुछ नहीं तो सिर्फ एक कप चाय आराम से बैठ के पी सकते हैं। लाइक आई हैव सीन सो मैनी पीपल कि जिनकी ज़िंदगी घड़ी की सुइयों के साथ चलती है और उनके पास ज़रा भी वक्त नहीं होता अपने लिए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मतलब आई हैव सीन सो मैनी पीपल के जो खाना भी भागम भाग खा रहे होते हैं, फटाफट खा रहे होते हैं कि बस खाना ख़त्म करके तो ये काम करना है, और मुझे बहुत बुरा लगता है, सीरियसली बहुत बुरा लगता है जब हम खाने तक को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसको ड्यू टाइम नहीं देते जो हमें देना चाहिए। हालांकि नाउ आर द डेज के जब मेडिकल साइंस भी ये प्रूव करती है कि खाना हमें पूरी हाजिर दिमागी से खाना चाहिए, अगर हम खाना फोकस करके नहीं खाते तो इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं और बॉडी उसको और तरह से ट्रीट करती है। स्पेशली स्क्रीन टाइम्स की बात करें तो आजकल खाने के साथ स्क्रीन टाइम भी चल रहा होता है, टीवी चल रहा है, बच्चे हैं तो उनके सामने फ़ोन्स और टैब्स और गैजेट्स दीगर जो हैं वो पड़े हुए हैं, उसके बगैर बच्चे खाने नहीं खा रहे होते। तो इस सब से क्या होता है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है वो वीडियोज़ में होता है, कॉन्टेंट में होता है जो चल रहा होता है, और खाना बस हम भर्ती के लिए खा रहे होते हैं। कि एक फर्ज समझ के ही खाना तो है ना जी। सो ऐसा ना किया कीजिए, अपने लिए वक्त निकाला कीजिए, और मेरा आपसे आज के दिन ये सवाल है, सोचिए, गौर कीजिए, अपने दिन भर की रूटीन के ऊपर गौर कीजिए और हमें बताइए कि दिन का ऐसा कौन सा वक्त है जो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना होता है, जाती होता है, जिसमें और कोई इंटरफेयर नहीं करता, और आप कैसे स्पेंड करते हैं उस टाइम को। देखा, फंसा दिया ना। सो जनाब सोचिए, गौर कीजिए और डायल कीजिए 04221100101। आप लोगों के ऑफर कॉल्स हम शामिल करेंगे शो में, और जनाब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन आफ्टर 12। कभी कभी दिस इज बाय राफे।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

Alright जनाब, लौट कर आ चुके आपके साथ एक बार फिर से आफ्टर म्यूजिकल ब्रेक। बात कर रहे हैं मी टाइम के हवाले से, वो टाइम दिन का, वो वक्त जो हम खालिस्तन अपने लिए निकालते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं ये आप मुझे बताएंगे आज चंद लम्हे फरागत के। वो ही ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है फी जमाना, और जो मिलते हैं हमें वक्त मिलता है वो भी हम अपने गैजेट्स की नज़र कर देते हैं, अपने फ़ोन की नज़र कर देते हैं। ऐसी आदत हो गई है स्क्रीन्स की, रील्स की, शॉर्ट्स की, कि बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अभी ऑफर हमारी उस्मान साहब से बात हो रही थी, उस्मान मुगल शाहदरा से हमें सुनते हैं, हमारे साथ होते हैं शो में। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो उस्मान साहब एक बहुत मज़े का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे थे कि कल अभी संडे के दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गए, तो वो इरादतन अपना फ़ोन जो है वो घर छोड़ के गए कि हम सैर के लिए जा रहे हैं, हम तफरी के लिए जा रहे हैं, इन्जॉय करने के लिए जा रहे हैं। अगर फ़ोन साथ ले लिया तो फिर हमारा ध्यान अगेन उसी फ़ोन में लगा रहेगा। हम जो बाहर के नज़ारे हैं, जो इन्जॉय करने जा रहे हैं, उस तरह से इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ सीरियसली वेरी वेरी वेरी ट्रू। सो लाइक आई वाज टेलिंग कि हम लोग हर वक्त एक जल्दी में होते हैं, हर वक्त एक जल्दी में एक काम कर रहे होते हैं, 10 हमारे जहन में होते हैं कि ये हो जाए तो इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है। और अक्सर काम निपटाने के चक्कर में हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं, या इरादतन हम ब्रेक नहीं लेते कि बस काम सारे ख़त्म कर लें ना तो फिर बैठेंगे। इससे होता क्या कि हमारी सारी एनर्जी जो होती है वो ड्रेन हो जाती है, और एट द एंड हम सिर्फ थक जाते हैं और सिर्फ रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। सो वो क्वालिटी टाइम जो हमें खुद के लिए चाहिए, खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, अपने बारे में सोचने के लिए चाहिए, अपनी ज़ात में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं। सो आई वुड से स्पेशली टू ऑल द पीपल जो वर्क प्लेसेस पे होते हैं, वो लोग भी ब्रेक्स जो हैं वो बहुत कम लेते हैं। तो आई वुड से कि आपको अपनी स्क्रीन से नज़रें हटानी चाहिए हर आधे पौने घंटे के बाद। मुसलसल काम करते रहने से आपका ब्रेन, आपकी आइज, आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो सब सफ़र कर रहे होते हैं। सो टेक टाइम आउट, छोटी सी ब्रेक लें, पानी पीने के लिए ब्रेक लें, एक छोटी सी वॉक कॉरिडोर में करके आएं, दोबारा स्टार्ट करें, यू विल फील रिफ्रेश्ड। सो जनाब, दिन का वो कौन सा ऐसा वक्त है जो आप अपने लिए एज अ मी टाइम कंसीडर करते हैं, जिसमें आप अपने साथ वक्त गुजारते हैं? डू लेट मी नो, 111-000-101 डायल करते हुए 042 मिलाना मत भूलिएगा।

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

All right. 11:43 on the dial. Right now, we're back for once again. टाइम की बात हो रही है जनाब, आपका दिन का कौन सा ऐसा वक्त है जो आप अपने मी टाइम के तौर पर गुजारते हैं, जो सरासर आपका जाती वक्त होता है, जिसमें आप रिलैक्स करते हैं, अपनी किसी हॉबी को टाइम देते हैं, अपने किसी इंटरेस्ट को वक्त देते हैं, कोई ऐसा काम जो सरासर सिर्फ आप अपनी जात के लिए करते हैं। वेल जनाब, हमारा बेग हमारे साथ ही हैं ऑफ एयर अभी। बहुत अच्छा लगा हमारा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच याद रखने के लिए। आई मीन, आप लोगों का ये प्यार होता है जो हमें भी भूलने नहीं देता कि स्टूडियोज में ही हमारी जिंदगी है। और वो ये कह रही हैं कि मैं दो तीन बार आपसे बात भी कर चुकी हूँ जब से आप वापस आई हैं, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा आप फाइनली वापस आ गए। मैं आ गई हूँ, कसम से आ गई हूँ, चुटकी काटे। यकीन दिलाएं खुद को, ये मैं हूँ। ऑलराइट, अमारा कह रही थी कि जनाब, मेरा जो मी टाइम होता है वो मेरा रेडियो टाइम होता है, जो मैं रेडियो को देती हूँ, रेडियो सुनते हुए, इन्जॉय करते हुए और डिफरेंट चीज़ें सीखते हुए, कि मुझे रेडियो से सीखने को मिलता है। एंड दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ वेरी वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि किसी दौर में मेरे लिए भी जो मेरा टाइम था वो रेडियो टाइम ही था, रेडियो लिसनिंग का टाइम। आप एंटरटेन भी रहते हैं, आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड यू फील हैप्पी, है ना। ये चीज़ है, जो लोग सुनने के आदि हैं उनके लिए रेडियो जो है वो ज़िंदगी है जनाब। आपको बहुत दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, आसपास कोई भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है, एंड यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ। बिल्कुल भी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रही हूं, दिस इज व्हाट इट इज। और जनाब, हमारा कह रही थी कि कोई भी अच्छा सा ट्रैक आप अपनी तरफ, मेरी तरफ से अपने लिए और आरजे जैनब के लिए प्ले कर दे। सो जनाब, आरजे जैनब आपके लिए, मेरे लिए भी। वेल, दिस वन इज बाय आतिफ असलम। आतिफ असलम का एक नया ट्रैक भी आया है जो मैंने सुना, बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी सुन रहे हैं, दैट इज गोइंग वायरल राइट नाउ, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी रील्स में, बहुत सारी शॉर्ट्स में वायरल जा रहा है। लेकिन मैं बस ये सोचती रह गई कि ये मेरे प्रोग्राम के टाइम और मूड के साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट वन दिस टाइम। सो जनाब, ये जो मून राइज है ये तो हम सबका फेवरेट है ही है, और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। लेट्स एंजॉय।

थैंक यू सो मच जनाब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि बहुत ही एंथुजियस्ट हैं और बहुत ही डेडिकेटेडली जनाब कीप ऑन डायलिंग करते रहते हैं 04221000101। और बहुत माजरत, कॉल मिले भी तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऑफ द एयर इंगेज होते हैं और चीज़ों में, तो नहीं बात हो सकती। लेकिन जनाब आपकी हिम्मत को, आपकी मेहनत को, आपकी रियाजत को सल्यूट करते हैं हम। अभी हनीफ हमारे साथ मौजूद थे, हनीफ साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब आप भी शो में तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि पिछले शो में मैंने बहुत कोशिश की, ना ऑफ एयर बात हो सकी, ना ऑन एयर बात हो सकी, तो हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। दिल पे नहीं लेना आपने, परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करनी, जरा भी नहीं करनी क्योंकि मुझे आप सब लोग याद होते हैं। एंड आई नो कहीं ना कहीं बहुत कोशिश के बावजूद भी रह जाती है बात होने से, लेकिन आई नो आप सब मुझे सुन रहे होते हैं। मी टाइम की बात हो रही है, उस वक्त की बात हो रही है जो हम अपनी जात के लिए निकालते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में जब ज़िंदगी इस कदर मसरूफ हो चुकी है कि हम कब दिन होता है कब रात होती है कुछ पता नहीं चलता, सबकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ हो चुकी है, ऐसे में अपने लिए वक्त निकालना बहुत से लोग भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं, बल्कि हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। मतलब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बस काम के गिर्द घूमती है, हमारे आसपास के लोगों के गिर्द घूमती है, जो जिम्मेदारियां हमारे शोल्डर्स पे या तो समाज ने डाली हैं या हमने खुद डाली हैं, बस उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी चलती रहती है और हम भूल जाते हैं ब्रेक लेना, अपने लिए वक्त निकालना। लाइक मैं ये समझती हूँ कि सुबह में, शाम में किसी वक्त एक छोटी सी हल्की फुल्की सी वॉक कर लेना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ 5-7 मिनट की हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज का वक्त अगर आप निकालें तो इन द एंड उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। लेकिन हम मशीनें बन गए हैं मशीनों के साथ रह रह के, और आज इस टॉपिक पे बात करने का मेरा मकसद यही है कि किसी ना किसी एक बंदे को ही सही या चंद लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कायल कर सकूं कि जनाब बहुत ज़रूरी है मी टाइम हमारी ज़िंदगी में, कि हम अपनी जो एक रेगुलर मशीन की तरह चलने वाली ज़िंदगी है उससे ब्रेक लें, अपने लिए वक्त निकालें, ताकि हम एक्टिव भी रहें, फिट रहें, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी। और कोशिश करें कि जो आपका मी टाइम हो वो हमेशा गैजेट्स फ्री हो, लौट जाए पुराने जमानों की तरह, चंद लम्हों के लिए चार्जिंग पे लगा के फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने सारे लैपटॉप्स को, अपने टैब्स को, बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम कि जब हम स्क्रीन फ्री होते हैं, वरना हम मुसलसल एक दौड़ में है और बस बस बस जिंदगी है कि गुजरती जा रही है, नो वन बोदर्स, हमें एहसास भी नहीं होता एट टाइम्स कि हम जी रहे हैं। ले जनाब आखिरी ट्रैक प्ले कर रहे हैं फर्स्ट आर का परेशान हो गए ना सारे। सो जनाब मगरो ला दिया करें आप भी कभी कभी अपनी रूटीन को, अपनी रूटीन के कामों को। न्यूज ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको एक बार फिर से लेडीज लाउंज में, मुझे कहते हैं सादिया रफीक, डोंट एनीवेयर, जस्ट स्टिक अराउंड, दिस इज एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम जमहूरिया किर्गिस्तान के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज बिश्केक रवाना होंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत तस्वीराती सियासी और दिफाई कमेटी का इफ्तिताही इजलास आज इस्तांबुल में होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिले वाशुक में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और खवातीन के T20 एशिया कप में पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान मैच कल दुबई में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

Tuntero FM 101, One and Above. Well, welcome back after news break. It's 36 degrees Celsius on the scale. So, ek karam din hai, stay hydrated, every one of you. Zyada se zyada pani piye, liquids le. अपना ख्याल रखें, अपने लिए वक्त निकालें। आज के शो में हम बात कर रहे हैं हमारे मी टाइम के हवाले से। हम अपने लिए दिन में कौन सा, कैसा, कब का वक्त निकालते हैं और क्या करते हैं, उस वक्त में क्या करना पसंद है हमें जाती तौर पे। यकीन करें, जब हम फ्री होते हैं, जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं, बैठते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, सैर करते हैं, सोचते हैं, तो इतना स्ट्रेंज फील आ रही होती है। खुद से मिलकर ही अजीब लग रहा होता है। एक खुशगवार हैरत भी हो रही होती है कि ओ दिस इज मी, कितने दिन हो गए थे खुद से मिले हुए। खुद के बारे में सोचने का मौका मिलता है, खाली जहन होता है तो और भी सोचें पॉजिटिव कहने के साथ हमारे सामने आती हैं। हमें एक ओवरव्यू लेने का मौका मिलता है। साजिदा हमारे साथ थी ऑफ एयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के कामों के अलावा, सोने के अलावा रेडियो सुनती हूँ और यही मेरा मी टाइम है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश ही होती है, जब मैं जाग रही हूँ और मेरे पास वक्त है तो मैं शो मिस ना करूँ, और उसके लिए मैं कहीं जा रही हूँ, बाहर भी मूव कर रही हूँ, तब भी मैं शो सुन रही होती हूँ। क्या कहने जनाब, डेडिकेशन है अपने लिए। एंड दिस इज ब्यूटीफुल कि हमारा टॉपिक हमारे रेडियो के साथ इतने अच्छे से जुड़ गया है। दिस इज द बेस्ट मी टाइम टू मी एंड टू ऑल ऑफ यू आई नो। मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ थे और सभी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि जनाब ऑन एयर आएंगे और ऑन एयर बात करेंगे इंशाल्लाह। सो जनाब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल। तारिक साहब ने बहुत खूबसूरत बात की आज के टॉपिक के हवाले से। इन्होंने कहा कि मेरा जो मी टाइम है अपने लिए, जो मैं वक्त निकालता हूँ, वो सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का एक घंटा होता है, जब मैं सूरज को उगते हुए, सूरज को नमूदार होते हुए देखता हूँ, फितरत के, कुदरत के नज़ारे देखता हूँ और साथ ही साथ सोचता हूँ, गौर करता हूँ कि क्या किया मैंने पिछले 24 घंटों में, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। एंड दिस वन इज ब्यूटीफुल फॉर मी। जो लोग सुबह जल्द बेदार होने के आदि हैं, उनको आइडिया होगा कि ये एक मैजिकल टाइम होता है सुबह का। इसके अंदर एक सहर है। जिन लोगों को आदत नहीं रही सुबह सवेरे उठने की, मैं उनसे ये कहूँगी, कोशिश क्या करें, उठ के देखें। सीरियसली, वो वाला जो वक्त है सुबह का, वैसी फील दिन के किसी लम्हे में नहीं है। सीरियसली एंजॉय अ लॉट। आप कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ। शहरों में रहते हुए, पक्के घरों में रहते हुए, कंक्रीट में रहते हुए, टाइल पत्थर में रहते हुए भी, यू फील दैट नेचर। आप अपने सरों के ऊपर से जब परिंदों को गुजरते हुए देखेंगे, यू विल एंजॉय सीरियसली। देखा, मैंने आइडिया दिया आपको। और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, आप अपने लिए वक्त निकालें तो सही। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वॉक करना ज़ाती तौर पे, नेचर में, गार्डन में, पार्क में बहुत पसंद है। खाली जहन आप वॉक करते जाएं, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन को क्रॉस करती हैं उस टाइम पे, एंड सीरियसली यू एंजॉय। ले जनाब, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने लगी हूँ और इस सॉन्ग को सुनने के बाद हम लौट कर आएंगे आपके साथ एक बार फिर से। आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे शो में।
keep dialing 042-111-0101. आपका मी टाइम कब होता है, कैसे गुजरता है, आज आप मुझे बता रहे हैं।

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: All right, listeners, we're back again. लौट कर आ चुके हैं आपके साथ एक बार फिर से FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज और मुझे कहते हैं सातिया रफीक। इट्स 12:12 ऑन द डायल राइट नाउ। बात करें आज हम मी टाइम के हवाले से। दिन का वो कौन सा वक्त है, कौन सा ऐसा पहर है जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं और क्या करते हैं? हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आपके जी क्या हाल है? ठीक हो
0: जी? मैं ठीक। कौन हमारे साथ?
1: बहुत ही जट गाल कर रहे हैं आपके जी, रावी के कंडे तो।
0: जी जी जी, कैसे हालात है रावी के?
1: रावी के जबरदस्त हालात है आपके जी,
0: रौनक आ गई है।
1: हाँ जी जी, आप ही जी अपना पानी आया रावी दे विचार नाते हैं और उनके कंडे दे बैठे हैं तो अड़ा शो सोर ले आप ही जी।
0: बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के वाले से?
1: आज के टॉपिक के वाले से ये कहेंगे आप ही जी, असी तो जो फारग ले रहा यकील बदले एक तो ऐसा सुनने हैं दूसरा या घर आके तो बच्चिया टाइम दे दे बस।
0: बिल्कुल सही। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
1: आप जी। सदा सलामत रहो, अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे।
0: कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं मतलब उनके आने से एक पूरा मंजर क्रिएट हो जाता है ना। देखें दरिया पे ले गए हमें बैठे बिठाए स्टूडियोज में। जैसे बिस्मा आती हैं तो किचन याद आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
2: कैसी आप?
0: मैं ठीक ठाक, मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी कॉल मिल गई आपके प्रोग्राम में।
2: बहुत थैंक यू, थैंक यू आपने मुझे कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपने।
0: अच्छा अच्छा,
2: क्या सोच के आपने मुझे कॉल की?
0: यही सोच के कि आप जब तक अपनी आरा से हमें आगाह नहीं करेंगे, आपकी कीमती राय हम नहीं सुनेंगे वो भी अपने कानों से, तो कैसे मजा आएगा।
2: बहुत शुक्रिया आपने इतनी तारीफ कर दी मुझे मेरी, तो मैं हमारा देख बात कर रही हूँ शादा से।
0: जी जी बिल्कुल, मैं हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। क्या कहना चाहेंगी, जल्दी से बताएं टॉपिक के वाले से।
2: बहुत अच्छा जो आपका और बहुत जबरदस्त, मैं फारिग टाइम में रेडियो सुनती हूँ और रेडियो से हमेशा सीखने का मौका हासिल करती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखती हूँ जिंदगी में जो मेरे आगे काम आए। तो जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज जा रही है, बॉबी भाई आते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी फौजी की कॉल आ गई, सलूट बहुत मारते हैं। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और तमाम सुनने वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज अर्जनाब। हमारा हमारे साथी हर एक अपना एक औरा होता है, अपनी वाइब्स होती हैं। हर इंसान यूनिक है अपनी साथ में और हमें इस चीज का इदराक होना चाहिए कि हम एक ही हैं। और जैसे मैंने शो के स्टार्ट में कहा था ना कि सारे रंग जिंदगी के हमारे होने से होते हैं, लोगों के होने से नहीं होते। सो अपने आप पे फोकस किया कीजिए, हम हैं तो दुनिया है ना जी, हमारे बाद दुनिया हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, किसे फर्क पड़ता है। हमसे पहले दुनिया थी तो दुनिया ने क्या किया, किसे फर्क पड़ता है। ले जनाब एक अपबीट ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, एंजॉय कीजिएगा। लौट कर आते हैं फिर से बात करते हैं आप लोगों के साथ लाइव। आपका मी टाइम कौन सा है, क्या करते हैं आप अपने मी टाइम में? दिस वन इज MFAK ग्रेट खान फ्रॉम पाकिस्तान, नुसरत फतेह अली खान। एक दौर है, एक अहद है जो खत्म होने को नहीं आ रहा और होगा भी नहीं। ये वो स्टार है, ये वो फनकार है जिसके लिसनर्स

0: FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लेडीज लाउंज, मुझे कहते हैं सातिया रफीक। आपको क्या कहते हैं आप हमें बता रहे हैं 04221100101 पर। साथ ही साथ आप हमें बता रहे हैं अपनी मी टाइम रूटीन। दिन का कौन सा पहर आपका जाती पहर है और आप क्या करते हैं उसमें। Well, जनाब चाय इज समथिंग जिस पे अक्सर लोगों को फरागत मिल जाती है। So, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाय का एक कप लेते हैं और एक कोना चूज करते हैं कि जनाब यहां बैठा जाए, आराम से खामोशी से इंजॉय किया जाए चाय को। आई नो चाय गॉसिप्स के साथ भी बहुत मजे की लगती है और बहुत सारे लोगों के लिए चाय जो है वो गॉसिप्स का टाइम होता है। लेकिन चाय कॉफी व्हाटएवर यू लाइक, कभी उसको लेकर एक कोने में बैठ के आराम से सिप बाय सिप एंजॉय कीजिएगा। ये एक नेक्स्ट लेवल की एंजॉयमेंट होती है। Alright, जनाब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसी हैं आप? मैं बिस्मा बात कर रही हूँ।
0: बिस्मा आ गए, किचन आ गया।
1: किचन आ गया। मैं तोड़ियाँ बना रही थी आज, घिया तोड़ियाँ होती है ना लंबी लंबी सी,
0: हाँ।
1: तो मैं काट रही थी तो मैंने स्पीड इतनी तेज कर दी, जब आपने मेरा नाम लिया मैंने कहा मुझे तो कॉल करनी करनी है। मुझे ना इतना वो होता है कि कॉल करो सुस्ती पड़ती है कि इतना मतलब टाइम लग जाता है ना, और टाइम भी इतना डेंजरस होता है कि इस टाइम हम कुकिंग कर रहे होते हैं, हम बिजी होते हैं और आपका शो होता है, वो भी सुनने है, काम भी करने है, फिर जब दिल किया बात करने को भी दिल कर रहा होता है तो फिर बात भी करनी, फिर कॉल भी मिलानी, इतना प्रेशर होता है हमारे।
0: ओए होए होए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्रूशियल टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, खवातीन के लिए बहुत बिजी टाइम होता है।
1: बताना था मैंने कहा जब नेक्स्ट टाइम बात करूंगी फिर बताऊंगी कि आपसे बात करने के बाद मेरी क्या कंडीशन हो गई थी। जब आपने मेरी तारीफ की खून में खून आ गया, मैं जब नीचे आई हूँ मेरा सारा बॉडी हीटअप, इतनी गर्म, हो जाते हैं ना। मम्मा कहती इसे क्या हो गया, ऊपर गई है, ऊपर से नीचे आई है, इसकी हालत क्या हो गई,
0: गर्मी लग गई, गर्मी बच्चे की
1: गर्मी नहीं लगी, मेरा सारा जिस्म ऐसे गर्म हो गया था। और इतना मुझे अच्छा लगा बात करके जब आपने मेरी तारीफ की। तो आज का टॉपिक के हवाले से भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी। देखे जो जिन लोगों को ना, कई लोग होते हैं अपने साथ मोहब्बत नहीं करते, उनको खुद से मोहब्बत ही नहीं होती, तो वो उनके पास टाइम हो भी ना तो वो कैसे खुद के साथ एंजॉय करें जब उनको अपने साथ मोहब्बत ही नहीं है। वो अपने आप को इतना डिग्रेड करते हैं कि मैं ऐसा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं ये, मैं वो, तो उनको क्या मजा आएगा खुद के साथ एंजॉय करने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि खुद के साथ आपको मोहब्बत होगी तो फिर आप एंजॉय करोगे ना। मैं तो बर्तन धोते धोते एंजॉय कर लेती हूँ, पर हाँ रोज ही बर्तन धोने पड़े और तीन टाइम फिर मुझे गुस्सा आता है कि ये इसका आपके लिए पैदा हुई हूँ, बर्तन ही धोए जाओ। तो
0: ये अच्छा, क्या करती हैं आप, क्या करती हैं अपने फारिग वक्त में जब आपके पास कोई और काम नहीं होता?
1: मैं मेरी फील्ड मेडिकल की है, तो मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ। घर का काम यानी कि कुकिंग का बस काम करती हूँ, बाकी काम नहीं, वो तो काम हेल्पर है। तो कुकिंग का काम मुझे करना मुझे पसंद है। दूसरा फिर मैं जाती हूँ, स्टडी करती हूँ, पेशेंट्स वगैरह वो अटेंड करना ये वो। तो फ्री टाइम में मैं म्यूजिक सुन लिया, किसी अच्छी दोस्त को कॉल कर ली, उसके साथ खुश गपियां लगाई, उससे ये होता है कि आपके खून में इजाफा होता है, आप खुश होते हो, जैसे मैं आपसे बात करके खुश हुई थी और ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे से बात करके। तो इंसान फ्रेश हो जाता है और फिर अपने दोस्तों को टाइम जब देता है या, तो उससे ये होता है कि इंसान जवान रहता है।
0: बिल्कुल सही,
1: तो ये बड़ा मजा आता है। तो ये सीन है कि खुद के तो आप टाइम दे रहे हो तो, पर जरूरत ये भी होती है कि आप खुद से मोहब्बत भी करें।
0: बिल्कुल,
1: तो फिर ज्यादा मजा आता है अपने साथ भी टाइम स्पेंड करने का। और हाँ, किसी की अगर आप मतलब कमी बयान करने के बजाय या इस तरह, तो आप किसी की खूबी बयान करें, मींस के जो उसके अंदर खूबी है ना वो आप उसके सामने रखें कि जब आप किसी से बात करें उसकी तारीफ करें उसकी खूबी उसको बताएं। इससे ये फायदा होता है कि इंसान को खुद से मोहब्बत होती है, वो अपनी तरफ मतलब मतवज्जा होता है कि अच्छा मेरे अंदर ये खूबी है।
0: बिल्कुल सही, अप्रिशिएट

0: तो फिर उसको मजा आता है।
1: बिल्कुल सही हो गया बिस्मा, बहुत शुक्रिया बिस्मा आप शामिल हुई शो में।
0: थैंक यू सो मच, आपने अच्छा सा प्यारा सा वो मुझे डेडिकेट कर
1: दिया। ओके डेफिनेटली
0: पुरजोश हो के वो किचन में जैसे काम कर रही हूँ तो वो, और फिर मैंने तोरियों के हवाले से बताना था आप ये किस तरह बनाती हैं, आप कुकिंग करती हैं तो इसमें क्या ऐसा मसाला डालती है कि अच्छी बने, जब मैं बना रही होती हूँ मुझे बड़ी उलझन होती है खाने को किसी
1: नहीं। जनाब मैं आपको बताती हूँ, ऑनियर बताती हूँ बिस्मा मैं क्या करती हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बिस्मा हमारे साथ मौजूद थी और तोरियां बना रही है जनाब। बहुत सारे लोगों को मुझे पता नहीं पसंद होंगी लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद भी होंगी। सब्जियां ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जो रिफ़्रेश कर देती हैं हमारी बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को, हर चीज़ को, लाइट वेट होती हैं, आपके आसाब पे भी सवार नहीं होती और स्टमक पे भी भारी नहीं होती सब्जियां, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी खुराक से निकलती जा रही हैं। सो मी टाइम की बात हो रही है, ख़ुद से मोहब्बत करें ये बहुत ज़रूरी है, और मी टाइम का मकसद ये होता है जनाब कि आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करें, आप अपने आप को जांचें परखें, अपने बारे में कुछ सोचें, महसूस करें आप कौन हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं और किधर को जा रहे हैं, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ को जा रही है, क्या कर रही है, ज़िंदगी कर रही है या आप भी कुछ कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है ना हम रूटीन के इतने आदि हो जाते हैं के खुद की सोच, खुद का इरादा सब बहुत पीछे रह जाता है। सो खुद को हालात के धारों पे नहीं छोड़िए, अपने बारे में सोचिए, जिंदगी को जिए, जी लीजिए छोटी सी जिंदगी और काम ढेर सारे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। आप नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा आपकी जगह लेने।

0: All right, listeners, we're back again. Nere nere vasve dhola. So, आप भी नेड़े नेड़े बस लीजिए अपने और अपने आप से दूर मत जाइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए. और जो मी टाइम होता है उसका मकसद यही होता है कि हम अपनी ज़ात से जुड़े रहें, हम क्या हैं हमें अपनी शनाख्त रहे. जिंदगी इसी का नाम है, काम करें, जिम्मेदारियां भी निभाएं, लेकिन खुद को भूल ना जाएं. आप कौन हैं, आप क्या हैं और कैसे अपनी जिंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं, इस पे काम करना बहुत जरूरी है जनाब. ऑलराइट, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम. कैसी हो सादिया जी?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक. शमी वापी, आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आपका शो सुन रही हूँ. आप अपना नेम जो ना, ये बहुत कम कम प्रोग्राम में बता रही हो.
0: अच्छा.
1: हाँ जी, ज्यादा ज्यादा बताया करें. और ये है कि 3 कॉलर लिया करें आप और 1 गाना प्ले किया करें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो ना लोग आ जाए, सबका दिल करता है आपके साथ बात करने.
0: जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. लेकिन जब कोई कॉल थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, तो फिर ये कोशिश होती है कि म्यूजिक में ज्यादा ब्रेक ना आए.
1: तो सादिया जी, मैंने ना एक लिस्ट बना के रखी है घर में कि ये काम आज मैंने करना है, इस वक्त करना. सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह के फजर की नमाज ना मिस हो. नमाज के बाद जो है ना, मैं तकरीबन फिर जब सुबह होती है तो मैं वॉक के लिए चली जाती हूँ. वॉक के आने के बाद जो है ना, बस मैं और रेडियो, और कोई काम नहीं. उस वक्त तो प्रोग्राम भी शुरू हो जाते हैं ना.
0: बिल्कुल,
1: तकरीबन 8 बजे तो फिर मैं और रेडियो होता है. रेडियो मैं बहुत, एक रेडियो की ना पुरानी कॉलर हूँ, तो आप समझ लें कि 27 साल.
0: जी जी, आई नो दैट.
1: हाँ, तो बस ये ही काम है. तो बाकी जो काम होते हैं वो मैंने लिस्ट बनाई हुई है. कोशिश ये होती है कि सब बच्चे, आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के बच्चे भी आ जाएं, बच्चों के वालिद साहब भी आ जाएं, मिल के बैठ कर खाना खाएं सब. ये खाएं तो फिर अच्छा लगेगा. हाँ जी,
0: बिल्कुल सही. चलें, बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल हुई.
1: हाँ, अगर हो सके ना, जहाँ जेब का गाना है, तेरा मेरा प्यार है मिलन.
0: जी ठीक है,
1: पता चल गया ना आपको?
0: जी जी, बिल्कुल पता चल गया.
1: हाँ जी, बाकी जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज़ आ रही है, हाँ, तारिक भाई, ननीब भाई भी सुन रहे हैं. तारिक भाई कोयत वाले हैं, और फरी भी कोशिश कर रही होंगी, और अनिला को भी, और रुबीना जट्टी को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़. और जनाब शमीमा भी हमारे साथ मौजूद थी. और मी टाइम की बात हो रही है. अच्छा जनाब, खाना कोई भी हो, अभी बिस्मा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्या डालती है आप तोरियों में. जो मैंने अपने छोटे से थोड़े बहुत से एक्सपीरियंस से सीखा है ना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग ज़िंदगी में की नहीं है, करती हूँ, बहुत रेगुलर नहीं करती, जिस दिन मूड अच्छा हो उस दिन करती हूँ. और इस सब के पीछे जो मेरा मकसद है वो यही है कि जब हम दिल से काम करते हैं ना, जब दिल कर रहा हो कि कुछ बनाए, तो वो जो दिल से उठने वाली एक बात होती है ना, उसके साथ जब आप काम करते हैं तो फिर आप बहुत ही पैशनेटली काम करते हैं, और उस चीज़ का जायका ऑल द वे डिफरेंट होता है उस चीज़ से जो आपने मारे बंदे मजबूरी में खड़े हो के गर्मी में बनाई हो कि यार बनाना है, कुछ तो बनाना है, सबने खाना है. और आई नो सो मैनी वेमेन इन माई लाइफ कि जिनको शौक है, जिनको क्रेज होता है कुकिंग का, और वो जब भी खाना बनाएंगी बहुत शौक से बनाएंगी, मेहनत से बनाएंगी, और उन्हीं लोगों के हाथों में जायका भी ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टिप. खाना जब आप नियत से, खुलूस से, प्यार से, मोहब्बत से बनाएं, तो खाने का जायका खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाता है. और जहाँ तक बात है तोरी की, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होगी, बट दिस इज माय फेवरेट, आई लव इट. बहुत सारी सब्जियां ऐसी जो मैं बहुत शौक से खा लेती हूँ, और शायद मुझे लगता है कि हम वो आखिरी जनरेशन है जो सब्जियां खा लेते हैं. सो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ. इट्स अ सिंपल सब्जी बेसिकली, जिसके बनाने पे बहुत टाइम लगता है ना मेहनत लगती है. हाँ, एंड में अगर आप 2-3 अंडे शामिल कर देना अंदर, तो इसका जायका और भी बहुत मज़े का हो जाता है. लेकिन अब आज के लिए इतनी कुकिंग टिप्स आई गेस काफ़ी हैं. सब कह रहे होंगे कि ये आरजे के अंदर से आज कौन सा वर्जन निकल के हमारे सामने आया. मैंने कभी ऑनर इस तरह की बातें नहीं की, आई नो. लेकिन ना आफ्टर ऑल मैं भी एक खातून हूँ, और खातून कोई भी हो सबका पाला किचन से पड़ता है. और मैं तो ये कहती हूँ कि खातून हो या मर्द हो, सबका पाला किचन से पड़ना चाहिए, और सबको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा काम, कुछ ना कुछ कुकिंग जो है वो सीखनी चाहिए. ले जनाब, नेक्स्ट ट्रैक नहीं प्ले कर रही, एक और कॉलर को मौका देते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: जी बहुत शुक्रिया, अगर आप एक और मौका दे देंगे किसी को. वालेकुम अस्सलाम.
0: हम तो देते रहते हैं, देखें ये ना कहें आप कि हम मौका नहीं देते.
2: नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने बात की ना, हमने भी सेम टू यू की बात है.
0: जी क्या कहना चाहेंगे? जी जी उस्मान, क्या कहना चाहेंगे?
2: शादरा से. जी जो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 4-7 बजे वाला, ये तो हमारा डेली बेस पे टाइम है ना. ये हमारे इधर ना, मेरे घर के फ्रंट में मकबरा है आसम चंगीर का, यहाँ सुबह के टाइम पे ना डेली बेस पे होती है योगा की क्लासेस. ठीक है, मैं लेता तो नहीं हूँ, यानी कि ना मैं करता हूँ योगा, लेकिन वहाँ जाके हम बैठते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ बैठ के हम. ठीक है, बाकी जो उधर हम वो 3 गेट है उसके, एक गेट से निकलना है, तीसरे से बाहर है, फिर घर है.
0: गुड,
2: ये तो डेली बेस है ना. जो इसके अलावा मंथली जो मेरा मी टाइम है वो सैर है.
0: वो सैर
2: वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस जिले पे जाना है, या किस तफरी वाले यानी के मुकाम पे जाना है, कहाँ पे जाना है. फिर वो सारा दिन, अगर दिन को जाना फिर सारा दिन बुक है, अगर नाइट पे जाना सारी नाइट बुक है.
0: बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उस्मान.
2: जी बहुत शुक्रिया मैडम खदीजा मुराद साहबा, और मैडम नगमाना जी को, मैडम किंजा, और हमारी जान सर डॉग्स, मैडम सर डॉग्स, उनको हमारा सलूट. तो पाकिस्तान जिंदाबाद,
0: पाकिस्तान जिंदाबाद. और जनाब उस्मान हमारे साथ मौजूद थे. ले जनाब, नेक्स्ट ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, इसके बाद कुछ और कॉलर से बात करेंगे. टाइम हमारे पास कम रहता जा रहा है. 12:42 ऑन द डायल राइट नाउ.

0: Linda, now we're back, and without wasting any time, we're heading towards the next caller. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam. Badi kya hal hai?
0: Ji, main theek. Kaun hamare saath?
1: Hamare saath Muhammad Malook Shah baat kar raha hu, Khanewal Darbar Allahud se.
0: Kaise hain aap? Khairiyat se hain Malook?
1: Ji, shukr hai Allah ka, theek thaak hu. Program mein kal bhi maine call ki thi, lekin aap nahi thi. तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे.
0: आमीन, बहुत अच्छा. टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे? जल्दी से बात कीजिएगा, कुछ और कॉलर्स भी लाइन में मौजूद हैं.
1: अभी मैंने टॉपिक तो नहीं सुना, तो ऐसे ही कॉल की है.
0: जी जी.
1: तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, तमाम सुनने वालों को सलाम, तमाम दोस्तों को सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब. ऑलराइट, ऐसा भी होता है, नॉट एवरीवन इज प्रिपेयर्ड. अस्सलाम वालेकुम.
2: जी बिस्मिल्लाह. वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक जी आप?
0: जी जी, मैं खैरियत से.
2: ये मोहम्मद शहजाद बोरा जी उर्फ मौला जट.
0: कैसे हैं शहजाद साहब?
2: ठीक है जी, आप बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका सिफत है. तो काले तो काफी देर का मिला रहा हूँ, लेकिन शुक्र है अब आपने
0: सुन लिया आपकी. जी बिल्कुल, सुनी गई है आपकी. क्या कहेंगे?
2: सुनी गई है.
0: हाँ, क्या कहेंगे?
2: कहना क्या है जी, देखो जब फारग होते हैं ना हम घर में, तो हमें घर वाले नहीं रहने देते.
0: ओए,
2: कभी कहते कपड़े धो लो, कभी कहते बर्तन धो लो, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी आंटी ये जो आपने जो पकाना है ये मेरी ड्यूटी लगा लेते. तो जब जब फारग होता हूँ जब मतलब काम पे सारे, तो फिर मैं गाना वो जो ना आप गाना बिलावर आख का नहीं, ऐडी सोनी कुड़ी तो मोटी मोटी आख
0: ऐसे रख
2: वो लगा के फिर मैं सुनता हूँ, वो मुझे पता लगता है मैं सब वापस आ गया हूँ.
0: सही, बिल्कुल सही.
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका शो. अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे. बहुत बहुत दुआएं. और वसीम साहब आएंगे ना तो आप कभी सुने मुझे, मैं उनके प्रोग्राम में मौला जट आता हूँ.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
2: बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे जी सबको, मेरा सलाम.
0: आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया. ऑलराइट जनाब, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे. और जनाब, क्या करते हैं आप लोग अपने मी टाइम में, और दिन में कौन सा ऐसा वक्त है जो सिर्फ आप अपने लिए मुख्तस रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम. जी जी जी, तारिक भाई कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे?
3: कहना ये चाहता हूँ अपने लिए वक्त निकालना चाहिए. वक्त होता है नहीं, वक्त निकालना पड़ता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
3: हाँ, तो मैं तो अपने लिए ना सुबह का वक्त निकालता हूँ. जब सुबह नमोदार होती है ना, रात दिन में ढल रही होती, तो फिर उस घंटे में किसी किस्म का समझौता नहीं सादिया पे. तो जिंदगी में समझौते होते हैं, जिंदगी में असूलों से समझौते नहीं होते.
0: बिल्कुल.
3: जैसे औलाद के लिए वालदैन की फर्मा बरदारी, बीवी के लिए खामन की ताबेदारी, और एक प्रेजेंटर के लिए कमर्शियल प्यारी. वालदैन की फर्मा बरदारी औलाद की आखिरत बनाती है, और खान की ताबेदारी बीवी को जन्नत का मालिक बनाती. और कमर्शियल बहुत सारे घरों के शादियां पे चूल्हे जलाती.
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है.
3: अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे. जिंदगी में वक्त निकलता नहीं, वक्त को निकालना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है.
0: जी बिल्कुल.
3: और अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की जात पाक महबूद है, उसके अलावा कोई महबूद नहीं. और इंसान तज़ीन के काबिल है, हमें अपने आप से इतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम अल्लाह की ज़ात पाक से करते हैं. हम भी हजरत इंसान हैं.
0: जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई.
3: अल्लाह निगेबान से सदा जीवे सोना पाकिस्तान.
0: आमीन. और जनाब, सदा जीवे सोना पाकिस्तान, और पाकिस्तानी भी इसके सारे के सारे आबाद रहें, शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने लिए वक्त निकालना मत भूलें. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तारिक भाई ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की कि एक घंटा मैं अपने लिए सुबह के औकात में निकालता हूँ और उस पर कोई समझौता नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। अपनी ज़िंदगी में भी अपने रूल्स खुद बनाइए, खुद सेट कीजिए और उन पर कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अपने लिए वक्त निकालना मत भूलिए।

0: वेल जनाब, इसको कहते हैं मूड बदल देने वाला प्रोग्राम।
1: चिट्टा तक सुख लक दिखा तक
0: एथे रख

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: मूसलाधार बारिश और شدید ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں بلتا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودھا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101। दिस इज FM 101।
1: आइए सामेईन अब समाअत फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
2: आज हम बयान करेंगे पारा है 23वां और सूरत सफात और आयत मुबारक है 133 से 138। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वइन्ना लूतम लिमन अल-मुरसलीन इज नजैनाहु वअहलहु अजमईन इल्ला अजूज़म फिल गाबरीन सुम्मा दमरन आखरीन व इन्नकुम लता मुरून अलैहिम मुस्बहीन व बिल्लैल अफला ताकिलून व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन इज अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहामा फकाना मिनल मुदहदीन। सदक अल्लाह अज़ीम। तर्जुमा पेशे खिदमत है। और बेशक लूत पैगम्बरों में है, मुरसलीन में से है। इज़्मत जैनाओ जब हमने उसे और उसके सब घर वालों को नजात बख्शी, मगर एक बुढ़िया के रह जाने वालों में हुई और फिर दूसरों को हमने हलाक फरमा दिया। वाइन्नाकुम और बेशक तुम उन पर गुजरते हो सुबह को, मुस्बहीन सुबह को, वबिल्लैल और रात में, अफला ताकिलून तो क्या तुम्हें अकल नहीं। व इन्ना यूनुसा और बेशक यूनुस लमिनल मुरसलीन वो भी पैगम्बरों में से है, रसूलों में से है। इज अबका इलल फुल्किल मशहून जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया, फसाया हमा तो कुरा डाला, फकाना मिनल मुदहदीन तो ढकेले हुए में से हुआ वो, फल तकमहू तो फिर उसे मछली ने निगल लिया, वह मुलीम और वो अपने आप को मलामत करता था। फलौला इन अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता तो लाला बेसा फी बतने ही इला योम युबसून, जरूर उसके पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे, यानी रोज़े क़यामत तक। हजरत इब्ने अब्बास और वहब का कौल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा किया था, इसमें ताखीर हुई तो आप उनसे छुप कर निकल गए और आपने दरियाई सफ़र का कसद किया, कश्ती पर सवार हुए और दरिया के दरमियान में कश्ती ठहर गई और उसके ठहरने का कोई सबब ज़ाहिर मौजूद ना होता था। मल्लाहों ने कहा इस कश्ती में अपने मौला से भागा हुआ कोई ग़ुलाम है, कुरा डालने से ज़ाहिर हो जाएगा। कुरा डाला गया तो आप ही के नाम निकला, तो आपने फरमाया मैं ही वो ग़ुलाम हूँ और आप पानी में डाल दिए गए, क्योंकि दस्तूर यही था कि जब तक भागा हुआ ग़ुलाम दरिया में गर्क ना कर दिया जाए उस वक्त तक कश्ती, तो आपको मछली ने कर लिया। हाँ, यानी आप ज़िक्र इलाही करते रहे, कसरत से करते रहे मछली के पेट में, ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना किन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अब ये लूत अलैहिस्सलाम का जो इन्ना लूतम लमिनल मुरसलीन का जिक्र आया है, जबकि हमने यानी अजाब, जबकि इस नजैना वालों और जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके घर वालों को निजात बख्शी, और इधर एक बुढ़िया का जिक्र है ना कि हमने उसको, जो बुढ़िया थी उसको नहीं छोड़ा, हाँ उसको उनके साथ मिला दिया क्योंकि उसका जहन उनके साथ मिलता था, हाँ ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, यानी अपने सफ़रों में रोज़ो शब तुम उनके आसार मनाजिल पर से गुजरते हो, जब सफ़र करते थे तो वो करीब ही था, दूर तो नहीं था, सब देखते थे कि ये बस्ती ढाई पड़ी है, तबाह बर्बाद हुई हुई है, इसलिए इशारा दिया कि तुम माइन नकुम लाता मुरून अलैहिम मुस्बहीन, कि तुम बेशक उनके ऊपर से सुबह गुजरते हो व बिल्लैल और रात में भी, अफला ताकिलून अब भी तुम्हें अकल नहीं आती उनको देख के कि हमने उनका क्या आश्र किया और जिन्हें आसमान से बारिश की उनके ऊपर संग्रेज़ों की। वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। والصلاة والسلام لك يا خاتم. صدق الله.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاء اللہ تعالی.
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: Smile and dial 111-111 FM.
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: आप सुन रहे हैं FM 101। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम FM 101 PBC। फॉलो अस ऑन फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान। FM 101 हिट्स FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: दिस इज FM 101।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहार, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: Hi, this is.
1: Keep smiling and drive carefully, okay?
2: Okay.

All right. Welcome back once again. Radio Pakistan FM 101 के live on Lahore studio से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को मेरा आपका साथ रहेगा. ठीक जी 8 बजे तक 6:12 हुए हैं और मैं बात कर रही थी लाहौर के मौसम की. सो लाहौर का मौसम जी हमसे रूठ गया. कहीं ना कहीं हम मानसून इन्जॉय कर रहे थे बट अब समझ नहीं आ रही. मेरे लास्ट शो में भी आप लोगों ने मुझे कहा कि बारिश हो रही है. मुझसे बारिश वाले गाने भी चलवा दिए बट जब मैं स्टूडियो से बाहर निकली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा बाहर बारिश हो रही होगी, अच्छा मौसम होगा. यकीन माने इस पूरे एरिया में जो है ना बारिश का नामो निशान नहीं था. सो अभी भी अगर मैं वेदर चेक करती हूँ ना तो वेदर जो है वो लाहौर का कुछ इस तरह से कि जी 34 डिग्री है इस टाइम और लाइट रेन जो है ना मुझे कह रहे हैं लेकिन पता नहीं किस एरिया में. बट एनीवेज जी बारिश का कोई इम्कान नहीं है. इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और देयर वाज अ टाइम जब हम देखते थे कि अच्छा इस्लामाबाद पिंडी में बारिश हो रही है, उसके बाद जी बारिश वो ट्रैवल करेगी पंजाब के इन हिस्सों में और फिर जब हमें पता चलता था ना गुजरांवाला में बारिश हो रही है, बस फिर अब जी अब आधे पौने घंटे में या घंटे तक जो है ना देखना लाहौर में भी आंधी और बारिश हो जा रही है. तो अब पता नहीं क्या हो गया, अब समझ नहीं आ रही. मैं कहती हूँ कि मई जून की गर्मी हमने गुजार ली, अब तो हम अच्छा वेदर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है ना लाहौर के इर्द गिर्द घूम ही जा रहा है. क्या हो रहा है कैसे मतलब अभी देखते हैं. लेट्स सी अगर आप लोग मुझे बता सकें अगर आप में से किसी के एरिया में आपको लगता है बादल आए हैं बारिश हो रही है. जो प्रेडिक्शन अभी आ रही है वो ये आ रही है कि जी इस पूरे हफ्ते में बारिश नहीं है. और राइट जी एक्सपेक्ट करते हैं कि सितंबर में जो है वो मौसम अच्छा हो जाएगा और सितंबर वैसे भी आ चुका है, आने वाला है. आज आखिरी दिन है अगस्त का और अगस्त की कुछ घड़ियां रह गई हैं जिसे कहते हैं ना कुछ ही टाइम रह गया अगस्त ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद जी हम सितंबर में ऑफिशियली एंटर हो जाएंगे. और एक तरह से अगर देखें तो 2026 जो है उसके आखिरी महीने रह गए हैं और वो कहते हैं ना कि बस अब अगर कुछ करना है ना कुछ रह गया था सो नाउ डू इट. सो मेरे पास भी आप लोग के लिए जी सितंबर को बेहतर करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए, अपनी रूटीन्स को बेहतर करने के लिए और एक तरह से कह लें कि जी अपनी पूरी लाइफ को बेहतर करने के लिए शायद मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो चेंज हो और सितंबर से जो है ना आपने कोशिश करनी स्टार्ट कर देना है. वैसे तो हम ऑफिशियली हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मंडे रखते हैं लेकिन कोई बात नहीं जी ये वाला मंडे स्किप करते हैं. ये वाला मंडे आपने छोड़ देना है और आपने समझना है कि जी ठीक है मंथ एंड हो रहा था, हम नए मंथ से जी स्टार्ट करेंगे, हम 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द ट्यूज़डे, आप नोट डाउन कर लें चीज़ों को. और राइट जी सितंबर से अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में चेंजेस हों, आपके रूटीन में चेंजेस हों, आप अच्छा खाएं पिएं, आप फिट हों, आप हेल्दी हों, आप ज़्यादा जो हैं वो एक्टिव हों, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पानी पीना है. किसी किस्म की कोई सोडास, कोई जूस या जो कॉफ़ीज़ वगैरह होती है ना वो आपने अवॉइड करनी है और आपने सिर्फ पानी पीना है. लेकिन वो लोग कहाँ जाएँ जो कॉफ़ी भी पीते हैं या जो चाय भी पीते हैं, तो वो कोशिश करें कि उसमें भी स्वीटनर्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें. और जी इसके अलावा आपने प्रोटीन जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करनी है. अगर ब्रेकफास्ट में नहीं कर पा रहे तो आप शाम को जो है वो थोड़ा बहुत प्रोटीन जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें. अच्छा जी इसके साथ साथ आपने डेली जो है ना वॉक करनी है और वो है जी 10,000 steps. वैसे मैं अभी चेक करके बताऊंगी कि 10,000 steps जो है ना वो कितने किलोमीटर्स बनते हैं, बट आपने जी 10,000 steps जो है वो डेली की वॉक करनी है. और हर खाने के बाद भी ये 10,000 steps तो अलग है ना, ये तो आप कंटिन्यूस करेंगे. ऑफकोर्स अगर आप किसी ट्रैक पे हैं तो आप काउंट करेंगे अपने स्टेप्स को या किलोमीटर्स को, लेकिन इसके अलावा भी हर खाने के बाद भी 10 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है.

और एडजी, इसके अलावा अगर आपको वेट लिफ्टिंग पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं और उसकी एक रूटीन आपने बना लेनी है। बोरिंग लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मसल्स जो है ना वो आपके बिल्डअप होंगे। और इसके अलावा जी, आपने जो है वो 3 मील्स जो है ना रिपीट करने हैं, मतलब सेम चीज़ें खानी है। ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना, मुंह नहीं चढ़ाना, ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने, यू हैव टू ईट इट। मतलब आपको जो है ना वो सेम 3 मील्स जो है ना वो रिपीट पे खाने चाहिए। और प्रोटीन्स की हमने बात कर ली, और उसके अलावा स्नैकिंग की बात होती है, बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को स्नैकिंग करवा रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं करना कि आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ स्नैक्स खिलाए। वो कहते हैं कि अगर आपने स्नैकिंग करनी है ना, लाइक अगर आपने चिप्स भी खाने हैं, तो फिर आपका एक पूरा मील जो है ना वो वही होना चाहिए। मतलब आप फिर जिसे कहते हैं ना राज्य के खा लो, राज्य के खा लो, लेकिन फिर ये है कि वो दिन का एक ही पार्ट होगा, या वीक में एक दिन एक टाइम का मील जो है ना वो आपका वो होगा। सो अगर आपने स्नैकिंग करनी है तो बिल्कुल लाइट से स्नैकिंग करें और पूरा दिन जो है ना वो स्नैक्स पे ना गुजारें। और जी, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अम्मियाँ बड़ी ख़ास तौर पर ध्यान रखती हैं, वो ये है कि डिनर के बाद ना आपने किचन को बंद कर देना, किचन को जी ताला लगा देना, लाइटें बंद कर देनी है, दरवाजे बंद कर देने। और इसके अलावा जी, आपने कोशिश करनी है कि 7 से 9 घंटे जो है ना वो सोना है, और अच्छा जैसा कहते हैं ना अच्छा खासा अंधेरा करके सोना है। सो जी, एक अच्छी नींद लेनी है। इसका मतलब ये होता है कि एक अच्छी नींद आपने जो है ना वो लेनी है 7 से 9 घंटे, और फ़ोन को जो है ना वो आपने कोशिश करनी कमरे से बाहर फेंक छोड़ें, बाहर रखा है जी फ़ोन को। फ़ोन जितना दूर होगा उतनी अच्छी आपकी नींद होगी, क्योंकि फ़ोन जो है वो डिस्टर्बेंस है और डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको नींद नहीं आती तो हम बार बार यही करते हैं ना, फ़ोन उठा के देखते हैं, फ़ोन पे कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है, जिससे हमारा वो जो नींद ना आने का स्पैन होता है ना वो भी गुजर जाता है। और राइट जी, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी जी एक हमने कमर्शियल ब्रेक के जाने भी बढ़ना है और एक खूबसूरत ट्रैक के जाने भी बढ़ते हैं। लेट्स सी जी अगर हम ये ट्रैक प्ले कर पाए। ओके जी, ये एक लेटेस्ट ट्रैक था जी आसिम अज़हर की आवाज़ में, इस ट्रैक को इन्जॉय करते हैं। और इस ट्रैक के बाद जब हम लौट कराएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि और क्या क्या आप कर सकते हैं। सिर्फ पानी पीना है, जूसेस को, स्वीटनर्स को अवॉइड करना है, वॉक करनी है 10,000 स्टेप्स कितने होते हैं, प्रोटीन्स ऐड करनी है, वेट लिफ्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इसके अलावा जी, आपने फ़ोन्स को जो है वो अपने कमरों से बाहर छोड़कर आना है, 7 से 9 घंटे आपने सोना है।

की मोहब्बत में हार के वो जा रहा है वे कोई शब्द गुजार के वीरा है मैं कदा खुम सावर उदासी।

0: drive carefully, okay?
1: Okay.
2: Good evening. This is FM 101.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आतिफ असलम की खूबसूरत सी आवाज़ आप इन्जॉय कर रहे थे और इसके साथ साथ मेरी भी आवाज़ थोड़ी बैठ गई। अभी हम यही बात कर रहे थे और फिर हमारे साथ मौजूद थे उस्मान साहब और ख़ुद भी, क्योंकि वो नात खुआ तो उन्होंने बड़ी जल्दी पहचान ली। उन्होंने कहा आपके गले को कुछ हुआ। मैंने कहा एकदम से पता नहीं, मेरा गला इतना शदीद ड्राई हो गया बोलते बोलते कि मुझे माइक बंद करके जो है ना थोड़ा सा जैसे कहते ना गले को बेहतर करना पड़ा। सो उन्होंने जी बड़ा अच्छा टोटका मुझे बताया। उन्होंने बताया कि आप अपने पास जो है ना सौंफ रखें और वो खाएं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना वो हम ट्राई करेंगे। बट एनीवेज जी, हम बात कर रहे थे कि जी सितंबर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई जो कि आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये कहा कि कोई सोडास, कोई स्वीटनर्स या कोई भी इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं इनको अवॉइड करें। सिर्फ पानी जो है ना वो उसकी इंटेक जो है वो बढ़ाएं। उसके अलावा प्रोटीन्स की बात की, एक्सरसाइज की बात की, 10,000 स्टेप्स की बात की, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि ठीक है हमें हर जगह पे लिफ्ट्स वगैरह मिल जाती हैं, बट आप कोशिश ये करें कि आप स्टेयर्स का इस्तेमाल जो है वो करें और ना आप जो है वो लिफ्ट की तरफ ज़्यादा जाएं। कोशिश किया करें कि या तो फिर एक तरफ जो है ना, या तो ऊपर जाते हुए जो है वो आप देख लें, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है वैसे तो वो ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है कि अगर आप स्टेयर्स यूज़ करें और वापस आते हुए जो है ना आप लिफ्ट यूज़ कर लें। वैसे अब सब मुझे कहेंगे कि नीचे आना तो आसान होता है, वो हम स्टेयर से कर लेंगे, लेकिन ऊपर जाना जो है ना वो लिफ्ट से ठीक है। ऑलराइट जी, जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, हम सब की कोशिश होती है ना हम करीब करीब करीब करीब पार्क करें, ताकि जब वापस आए तो हमें सबसे करीब जो है ना वो अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी जो है वो मिल जाए। लेकिन मैं कहूँगी कि दूर पार्क करें। ऑलराइट जी, इसके साथ साथ अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स का दौर है, कभी एक PTCL का दौर होता था, कभी एक लैंडलाइन का दौर होता था, और तब आपने रिसीवर पकड़ के वहीं बैठ के जो है ना फ़ोन पे बात करनी होती थी। अब चाहे घंटे की गॉसिप्स हो रही है, चाहे डेढ़ घंटे की हो रही है, बट द थिंग इज़ कि आप एक ही जगह पे जो है ना बैठे रहते थे। लेकिन अब जब फ़ोन कॉल्स जो है वो सारी आपके हैंडसेट पे हैं, आपके मोबाइल में हैं, आपका फ़ोन जो है वो फ्री है, आप वॉक कर सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जब भी आप कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ना चल लिया करें, थोड़ा सा वॉक करते हुए जो है ना कॉल्स को इंजॉय किया करें। अगर आपकी लंबी कॉल्स हैं तो कोशिश करें कि एक तरफ बैठने के बजाय जो है ना एक साइड पे बैठे रहने के बजाय आप थोड़ा सा चल के जो है ना वो कॉल्स को इंजॉय करें, कॉल्स को आंसर दें। और जी, इसके साथ साथ जो है जो हम बात कर रहे थे ना कि मंडे ही क्यों, मतलब मंडे ही से स्टार्ट करने, तो आप जो है वो अपने अगले मील को अभी से बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ नेक्स्ट वीक का या किसी मंडे का जो है ना इंतज़ार ना करें। और दिस वन द नेक्स्ट वन इज़ के जी आप एक बार पकाएं और एटलीस्ट उसको दो दफ़ा तो खाएं ना। अब बच्चे कहते हैं ना एक बार खा लिया अब दोबारा क्यों दे रहे हैं, तो ये फिर अब आपका और आपकी अम्मियों का मसला है। या तो अम्मी की तरफ से कुछ पड़ जाएगा आपको, या फिर ये है कि चुप करके जो है ना आप दूसरे टाइम भी वही खाएंगे। खैर हम तो ऐसे ही करते हैं ना, हमारे तो यही है कि जी एक दिन पका लिया तो अगले दिन भी खा रहे हैं। तो जी ये अच्छी आदत है जी, एक बार पकाएं और दो बार जो है ना वो ज़रूर खाएं।

एनर्जीज के साथ साथ जो है आपने कोई भी ऐसे स्नैक्स जो है ना वो नहीं ख़रीदने जिनको खाने से आप रुक नहीं पाते, जैसे कहते हैं ना हाथ रोका नहीं जाता, तो अगर आपके घर में वो चीज़ पड़ी नहीं होगी, आपके सामने वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब है कि रोला ही ख़त्म हो जाएगा, ना ख़रीदें वो स्नैक्स, ना आपको खाने का दिल करेगा और ना ही आपके पास वो स्नैक्स जो है वो अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से जो है ना काइंड ऑफ आप स्नैक्स से जो है ना बच जाएंगे। और इसके साथ साथ जी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये अब आपने ये नहीं कहना कि एक दिन कर लिया या एक हफ़्ता कर लिया और उसके बाद आप तंग आ गए और आपने कहना कि जी अब कुछ हो नहीं रहा, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कुछ बेहतर नहीं हो रही रूटीन, तो इसको जो है वो फॉलो करने तकरीबन जी आपने 12 हफ्ते तक, और जी 12 हफ्तों के बाद जो है ना फिर मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह का जो है ना आपको रिस्पांस रहा और आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आया और कितनी अच्छी हेल्थ आपकी जो है वो हो गई। और जी एक और कमर्शियल ब्रेक की जानी बढ़ना है, कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो मजीद आप लोग के ऑफर कॉल्स भी शामिल करें 04211111 पर। इसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, fizz.com/FM11 और के पेज पे आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वापस आते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।

0: ड्राइव केयरफुली, ओके?
1: ओके।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: 오케이?
1: 오케이.
2: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan F101 के live on Lahore Studio से. जी हाँ जनाब, लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं जमना खान को, मेरा आपका साथ रहेगा. ठीक जी, 8 बजे तक 6:41 PM ऑन द टाइल. और मैं बात कर रही थी आप लोग से कि सितंबर में हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी रूटीन्स कैसे ठीक कर सकते हैं. सो मैंने एक बात कही जो कि मुझे पता था कि दिस इज़ समथिंग जो कि हम अक्सर नहीं चाहते. अक्सर क्या मतलब, मजबूरी हो तो हम कहेंगे कि हम पार्किंग लॉट में जो है ना गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो दूर लगाएं, लेकिन अगर हमें स्पेस खाली मिलेगी तो हमारी कोशिश होगी कि हम जितना नज़दीक लगा सकते हैं ना उतना नज़दीक तक लगाएं. लेकिन जी मैंने ऐसा क्यों कहा, अभी हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑफ द एयर और उन्होंने कहा कि खैर है, मतलब आप क्यों गाड़ियां जो है ना वो दूर दूर लगवा रही हैं, लोग तो कहते हैं कि बस

गेट के आगे गाड़ी और बस, हम गाड़ी में बैठे और हमें बिल्कुल चलना ना पड़े। तो मैंने कहा इसका पर्पज़ ही यही है कि देखें अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ आप काफ़ी देर बैठ बैठ कर आए हैं और गाड़ी दूर लगी होगी, मोटरसाइकिल दूर लगी होगी, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और क्या है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए जो है वो थोड़ी बहुत वॉक किस तरह से हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना हमारी रूटीन्स बहुत टफ हैं और हमें टाइम नहीं मिलता, तो हम छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, जैसे मैंने कहा कि लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें और स्टेयर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फिर हर जो फ़ोन कॉल आप अटेंड कर रहे हैं अगर वो थोड़ी लंबी फ़ोन कॉल है तो कोशिश करें कि अपनी जगह से उठ जाएं और थोड़ा सा चलते हुए जो है ना बात कर लें, इस तरह से भी आपकी थोड़ी बहुत वॉक हो जाएगी। फिर जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है वो आप 10 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है ना आपकी जिसे कहते हैं ना पूरी दिन की रूटीन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो वॉक ऐड होती रहेगी। सो थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि हर इंसान का जो पेशा है वो अलग है, किसी की जॉब बैठने वाली है, किसी की ज़्यादा हैक्टिक जॉब है, फील्ड जॉब्स हैं, किसी का काम इस तरह का है कि उसका सारा दिन जो है ना वो एक स्टिक टू द कंप्यूटर काम है। सो इस लिहाज से जो है ना आपको अपनी रूटीन में ये कुछ पॉइंट्स जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरा हर किस जो है ना मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है, ख़ासतौर पे अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी के टाइम में जो है ना वो कोशिश होती है हर किसी की कि हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल जो है ना हमारी सवारी जो है वो बिल्कुल करीब तर हो और हमें चलना भी ना पड़े।

ऑलराइट जी, आप लोग भी इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी तो उस पर भी बता सकते हैं 0420111 पर। हम ऑफ़ कॉल्स का सिलसिला जारी है जी। इसके अलावा जी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/FM111Lahore के पेज पे जाना, आपने पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सितंबर के लिए आप इसमें से क्या चूज़ करेंगे, कौन सी रूटीन आप फॉलो करेंगे। अच्छा, वैसे मैंने एक सवाल भी सोचा था, मैंने सोचा था कि जब हम लाहौर के वेदर पे बात कर रहे हैं और लाहौरियों की बात कर रहे हैं तो आई नो कि लाहौर में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर बसे भी हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि आप लाहौर में कब से रहते हैं, कब से रहते हैं जी लाहौर में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट सिटीज से आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे कॉलर्स हैं, लिसनर्स हैं जो कि लाहौर आकर शिफ्ट हुए हैं, लाहौर के रहने वाले बने हैं। सो बहुत कम लोग हैं लाहौर के, वो हम कहते हैं ना ईद पे लाहौर की सड़कें खाली हो जाती हैं, लेकिन जो लाहौर जैसा शहर भी कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी भी और शहर में जाते हैं ना, आप जब लाहौर वापस आते हैं आप लाहौर को मिस करते हैं। सो लाहौरी होने का जो है ना एक अलग ही जैसे कहते हैं ना चस्का है, अलग ही मज़ा है। सो लाहौर में आप कब से रहते हैं इस पर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी तरह खुशकिस्मत हैं कि जो शुरू से ही लाहौरी थे और जिनके पेरेंट्स भी लाहौर ही रहते थे, सो आप कहीं से माइग्रेट होकर इधर नहीं आए लेकिन आप लाहौरी हैं, सो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लाहौर शिफ्ट हुए हैं तो कब से आप लाहौर में रहते हैं। और जी कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नज़ीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जी बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। मोहम्मद सुमेर हैं जी, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, क्या हाल है मैं इसमें बिल्कुल ठीक ठाक। फरहद मेमन है हमारे साथ, कहते हैं जी खुश हो, मैं खुश हूँ जी सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं खुश हूँ जी, आप खुश हैं

और जी, जो मैंने आपसे बात की ना, जो मैंने अभी आपके साथ एक पूरी रूटीन शेयर की जो हम फॉलो कर सकते हैं, और यकीनन मैं भी उसको फॉलो करूंगी, आप लोग भी फॉलो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एंड पे मैंने एक पॉइंट शेयर किया, और ये है कि आपने अब करने के साथ जो है ना, अगले दिन ही नहीं कहना कि जी उन तक कुछ हो नहीं रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अभी आपने थोड़ा वेट करना है, और उसके लिए मैक्सिमम जो है ना आपने

रिजल्ट्स देखने इन सारी चीज़ों के जिनको आप फॉलो करेंगे। सो आपने कम से कम जो है ना 12 हफ्ते देने हैं। 12 हफ्ते का मतलब ये कि अगर आप सितंबर से भी स्टार्ट करते हैं तो टिल नवंबर जो है वो आपको ये सब रूटीन का पार्ट रखना है और इसको फॉलो करना है। अब बीच में कुछ दिन होते हैं चीट डेज होते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और इसी बात से रेलेवेंट जो है ना मनाजर का एक कमेंट है जो कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ और जो कि मुझे बड़ा रेलेवेंट लग रहा है। वो ये है कि जी किसान बीज बोते ही अगले दिन ज़मीन खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वो पानी देता है और इंतज़ार करता है आपकी मेहनत को भी कभी कभी नतीजा देने के लिए। खामोश वक्त दरकार होता है, जो बिल्कुल जी खामोश वक्त जो है वो दरकार होता है। मतलब आपने जो है वो पेशेंस का जो है ना पेशेंस का मुजाहिरा करना है, आपने थोड़ा सा सब्र और तहमुल से काम लेना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ये नहीं कि एक दिन कर लिया और एक दिन नहीं किया, फिर हफ्ते बाद कर लिया, फिर कभी याद आई, कभी दिल किया, कभी मूड हुआ तो कर लिया।

और जी ये जो मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको थोड़ी देर में सर्च करके बताती हूँ कि जी 10,000 स्टेप्स जो है वो कितने होते हैं, तो ये तकरीबन जो है वो 7 से 8 किलोमीटर होते हैं, और 7 से 8 किलोमीटर शुरू में ज़्यादा होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक बार रूटीन बन जाती है ना वॉक करने की, तो फिर जो है ना मज़ा आता है, फिर आप मिस करते हैं, आपकी रूटीन में जब चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना तो फिर आप उन चीज़ों को मिस करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं आज वॉक नहीं किया, आज अच्छा नहीं लग रहा। सो अगर आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके रूटीन सेट करेंगे तो आई होप कि 12 हफ्तों के बाद जो है ना आप खुद कहेंगे कि नहीं अब जो है ना ये चीज़ मिस आउट फील हो रही है, अब आज हमने ये नहीं किया, आज हम जो है वो इस टाइम पर उठे नहीं, आज हमने जो है ना वॉक नहीं की। सो ये चीज़ें आपको खुद फील होंगी, और जब आप रूटीन्स नहीं लेंगे, आप कुछ और इस तरह की फिजी ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे, तो आपको खुद फील होगा कि आपकी रूटीन में कुछ ना खराबी हुई है।

अच्छा जी, मैंने आपके साथ रूटीन तो शेयर की है, अभी हमारे कॉलर भी हमारे से ये बात कर रहे थे कि रमज़ान में भी जैसे हम जो है ना वो नमाज़ें पढ़ते हैं और हमारी एक रूटीन सेट हो जाती है, और फिर जब रमज़ान ख़त्म होता है तो वो रूटीन हमारे साथ चल रही होती है और हम मिस आउट करते हैं कि हमारी एक भी नमाज़ जो है अगर रह जाए तो हमें अजीब सी कमी फील हो रही होती है। लेकिन ये जो रूटीन्स है ना, इसके लिए हम बड़े बहाने बनाते हैं। हम तो खैर ऑल द टाइम जो है ना बहाने बना रहे होते हैं। तो मेरा एक और सवाल भी आपसे, ये वाला सवाल तो लाहौरियों से था ना कि आप जी लाहौर में कब से रहते हैं और कितना टाइम हो गया आपको लाहौर में रहते हुए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लाहौर आकर बसे हैं, जो स्पेशली दूसरे सिटीज से लाहौर आए हैं। तो आप, क्योंकि हमारे बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो मुझे पता है कि लाहौर आए हैं काम के सिलसिले में, कुछ शिफ्ट हुए हैं, कुछ रहने के लिए आए हैं, कुछ पढ़ाई के सिलसिले में आए हैं। सो लाहौर एक बड़ा शहर है, और वैसे भी कहते हैं ना, जिसने लाहौर नहीं देखे वो जमे ही नहीं। सो लाहौर जी, लाहौर की क्या बात है, लाहौर की क्या खूबसूरती है, और लाहौर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि आप लोग कितने के बहाने बना लेते हैं। मतलब मैंने अभी रूटीन शेयर की है और मुझे जितने भी कॉल्स आई हैं उनमें जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आया है। लेकिन खैर, बात यह है कि आप कितने बहाने बना लेते हैं, और कितने बहाने जो है ना वो बहाने बनाना भी एक टैलेंट है ना। मतलब कभी इनकार करना है, कभी कोई काम करवाना है, तो हर चीज़ के लिए आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। तो कितने बहाने आप बना लेते हैं, इस पर हम बात करेंगे 04444-0011 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक 7 बजे के बाद जी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। अभी आप ऑफ एयर कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप कितने बहाने बनाते हैं।

और अर्ज जी, हमारे एक जो हैं वो लिसनर हैं जो कि अभी कमेंट कर रहे हैं टॉपिक के हवाले से. उन्होंने कहा कि जी लाहौर जैसा शहर जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है. जी बिल्कुल बात ठीक है जी. पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत शहर हैं लेकिन जो लाहौर से मोहब्बत है ना वो लाहौर से ही है. और ये जो है वो लाहौर आए थे 1996 में, पहली बार लाहौर आए थे. और कहते हैं कि जी लाहौर शहर जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है. बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल. आप कहीं भी चले जाएं आप लाहौर को मिस करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप लाहौर को मिस नहीं करेंगे. आप किसी भी और शहर में चले जाएं आप लाहौर को मिस करेंगे. आप किसी और मुल्क भी चले जाएं तो भी आप लाहौर को मिस करेंगे.

ऑलराइट जी, ज़रा मुझे सोच कर बताएं कि आपको लाहौर में रहते हुए जो है वो कितना टाइम हो गया, आप कब लाहौर आए थे और लाहौर में कब से रह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि आप कितने के बहाने बना लेते हैं क्योंकि जी मैंने आपके साथ एक रूटीन शेयर की है और लेट्स सी कि जी आप लोग कितने के बहाने बना लेते हैं और कितना के टाल सकते हैं। सो इस पर भी बात करेंगे। अभी एक खूबसूरत ट्रैक और ऐड करते हैं, उस ट्रैक के बाद हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब। न्यूज़ ब्रेक के बाद लौट करेंगे तो लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन जी लाइव कॉल्स के हवाले से मैं अगेन यही कहूँगी कि आप लोग आएँ, छोटी बात करें, टॉपिक पे स्टिक रहें, कोई इधर उधर की बात ना करें और प्लीज़ बाकियों को भी मौका दें। ट्रैक के बाद लौट कर आते हैं, स्टे ट्यून्ड।

0: Drive carefully, okay?
1: Okay.
2: Good evening.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। ईमान वाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई तआवुन तंजीम की सरबराहानी मुमलिकत काउंसिल के इजलास और SCO प्लस सरबला इजलास में शिरकत के लिए बश्कीक में हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने खत्ते में मुश्तरका दिफाई तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी शहीद की बरसी मनाएंगे। और खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान मैच कल दुबई में खेला जाएगा।
1: This is 101% pure.

0: से मैं के
1: मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की,

0: Alright, welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के live on Lahore Studio. आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा. ठीक ठीक ठीक जी, 8 बजे तक. 7:17 हुए हैं जी. मैं पूछ रही हूँ कि लाहौर में रहते हुए कितना टाइम हो गया है, लाहौर में कब से हैं जी. और इसके साथ साथ एक सवाल और है आप सबसे, वो ये है कि आप लोग बहाने कितने बनाते हैं. अच्छा वैसे वाकई साजिदा ठीक कह रही है, बहाने बनाना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है. मुझे लगता है ये भी एक स्किल है जो सीखना पड़ता है. और कुछ इतने प्रो होते हैं ना बहाने बनाने के लिए कि वो जो है बस जैसे कहते हैं ना हर मोमेंट पे बड़ा एक बड़ा अच्छे वे में, प्रोफेशनल वे में, मतलब फील ही ना हो कि बहाना बनाया. इतनी ऑनेस्टी के साथ, इतनी अच्छे तरीके से जो है ना आप बहाना बनाए कि सामने वाले को पता ही ना चले, साजिदा की तरह ना हो कि सामने वाले को पता कि अच्छा जी बहाना ही कर रही है. और जी एक और कॉलर है हमारे साथ, लेट सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं. 0421-111-0011 पर हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सलीम टेलर, इछरे बाजार से.
0: जी सलीम साहब, कैसे हैं आप?
1: मैं बड़ा हंस रहा था आज आपके टॉपिक
0: बहानों पे. तो नहीं हंस रहे हैं आप कहीं? देखे मैंने कहाँ से पकड़ा. कितने बहाने बनाते हैं आप?
1: अरे हम तो सूट दे जब देने होते हैं तो हाँ. बड़ा ही तंग करते हैं ये बहाने, बड़ा डर लगता है.
0: ओए ओए. अच्छा आप वाहिद ऐसे टेलर हैं जो कि खुद ये कह रहे हैं कि हम वाकई तंग करते हैं.
1: ना फिर झूठ तो झूठ ही होता है ना,
0: झूठ तो झूठ ही है. ठीक है जी, ठीक है. तो क्या क्या बहाने होते हैं
1: उससे बचने के लिए? एक फार्मूला किया हुआ.
0: अच्छा वो क्या है मुझे बता दे.
1: जब टाइम देखते हैं ना कि नहीं बनना, फिर साथ जवाब देते हैं, लालच नहीं करते. जब अच्छा। लालच में आ जाते हैं ना तो फंस जाते हैं,
0: मतलब सूट पकड़ते ही नहीं है फिर. हाँ, हामी नहीं भरते. ठीक है चलिए, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी ईमानदारी वाली बात है.
1: ये शुरू किया ना परेशानी नहीं आई अल्लाह का.
0: चलिए ये अच्छी बात है, ये जो लालच ना करना है ना ईमानदारी के साथ कह देना कि नहीं हो ही नहीं सकता.
1: कल मैं बच्चे इधर लेके आया था रेडियो पाकिस्तान जुगनू तारे शो.
0: ठीक है.
1: मेरे बच्चे बड़ा खुश हुए माशाल्लाह, माइक पे उन्होंने तलावत की, नाते पढ़ी.
0: अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह.
1: रेडियो पाकिस्तान जिंदाबाद.
0: जिंदाबाद जी.
1: अच्छा लगा, बच्चों का टैलेंट बड़ा माशाल्लाह, बच्चे खुश हुए, बड़ा मजा आया.
0: चले अच्छी बात है, अच्छी बात है जी.
1: और बड़ी दुआ की रेडियो पाकिस्तान के लिए, जो आपकी पूरी मैनेजमेंट को सलूट पेश करते हैं. इतने अच्छे यहाँ पे आर्जे आते हैं और शो करके जाते हैं, मजा आ जाता है माशाल्लाह.
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत
1: अभी
0: शुक्रिया.
1: भी आपका इंतजार था कि कब 6 बजे और ना उसमें आपका शो सुनना लाजमी.
0: बहुत शुक्रिया जी, मुझे पता आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं
1: जी लाजमी. अच्छा आपने दूसरा टॉपिक की तरफ आ जाए
0: जी, जी
1: जो बड़ा अहम है
0: जी.
1: हम
0: जी
1: तो पक्के लाहौरी हैं.
0: आप भी पक्के लाहौरी हैं?
1: पक्के लाहौरी हैं.
0: ये लाहौर से बाहर वाले मुझे कॉल नहीं कर रहे जो लाहौर आके बसे हैं. अभी तक जितनी कॉल्स आई हैं सब कह रहे हैं हम पक्के लाहौरी हैं. ये ऐसा तो नहीं कि सबने अपने साथ लगा लिया टैग हुदी से पक्के लाहौरी.
1: दादाजी जो है ना वो थे अमृतसर के.
0: अच्छा ठीक है.
1: जब पाकिस्तान बनने से पहले उधर से हिजरत करके आए तो फिर दादाजी ने भी मीनार पाकिस्तान में जद्दोजहद की और मेहनत की मीनारे पाकिस्तान बनाने के लिए.
0: ठीक है, मतलब आप भी जो है
1: बस बड़ा जज्बा लगा.
0: आपके वालिद साहब, दादा सब जो है वो लाहौरी हैं और आप भी लाहौरी हैं, पक्के लाहौरी
1: जी. अल्हम्दुलिल्लाह.
0: ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी.
1: आपके लिए ढेर सारी दुआएं, आप ऐसे हंसते मुस्कुराते शो करते रहे, अच्छा बोलती हैं और थैंक यू. आप इतना कीमती टाइम हमें देते हैं
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, बहुत शुक्रिया. ख्याल रखिएगा.
1: गर्मी जितनी पड़ रही है हम तो ठंडे मशरूबात पी रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उससे गर्मी से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें जैसे आपने बोला था.
0: जी जी, मशरूबात का नहीं पानी का बोला था मैंने.
1: पानी का
0: मशरूबात का नहीं.
1: तो जहाँ तक आपकी हमारी आवाज जा रही है, सलामती की दुआ. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद.
0: राइट जी है. अल्लाह हाफिज़. सलीम साहब ऐसा मौजूद थे इश्रा बाजार से. और ये अच्छी बात है कि ये अपने पेशे को इतना ऑन करते हैं कि मुझे साफ कहते हैं कि जी मैंने जो है ना वो अगर बहाने हम बहुत बनाते हैं, जो कि हमें पता है कि ऐसा होता है. और फिर उसमें एक अच्छी बात ये है जो इन्होंने अडॉप्ट किया, वो ईमानदारी है कि आप जो है वो ना इस तरह का कोई सूट पकड़े जो आपको पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, टाइम शॉर्ट है, और ऐसी कोई कमिटमेंट ना करें. और जी एक और खूबसूरत ट्रैक है और ये ट्रैक इंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं और मज़ीद कॉल्स जो है वो शामिल करेंगे इस ट्रैक के बाद.

को मैं पूछता हर शख्स से, मैं पूछता हर फर्द को कि सीना की दुखता ये सांस की सर्द तो लौट के मैं जाऊँ किस मुँह से अपने घर को। बोल के गया था कि मैं कुछ दिन में वापस, और पांच माह गुजर गए इस एल्बम की खातिर। फैन सारे पूछे कि सनी भाई कहाँ गए, सकून ढूंढू हाथों की मैं मैल लुटा के। चीर दू नकाब किसे एतबार कितना, वो मांगे हिसाब मेरी जेबों में फितना। और खो दिया मकान अब सुकून कहाँ है, मुझे जो मिला जहान में वो टूट चुका है। किसे दोगे अब पैगाम, वो तो रूठ चुका है। मेरा मत लेना नाम मैंने छूका है, जैसे मसले पसंद ऐसे आफतों के पास चला। धुंधले है रंग, मैं तो सादत को पुकार रहा, हार रहा जब से सारे कर रहे है मांगते। रोजमर्रा पे ये मेरी जांच थे शराफतें, खामोश बेजुबानी शायद भूल रहा।

0: हाँ
1: ठीक है जी, ठीक है।
2: लहरिया
1: ने आपका दिल लगाया हुआ है।
0: हाँ लहरी देखो हर हर शहर के लाहौर नु गाड़ी आंदी है। लाहौर लाहौर लाहौर लाहौर है, वो पिपला दे होवे आवे चंग होवे किधर गड्डी हर शहर लाहौर नु ही आंदी,
1: लाहौर को आती है जी।
0: हाँ क्योंकि लाहौर एक मरकज है बहुत अच्छा, जिंदा दिल है लाहौर ये जड़े ना। माशाल्लाह सलीम ने ना अच्छी गल कही है, बहाना बहाना नहीं लाना चाहिदा
1: जी जी।
0: बस बहाने कई कई लोग बहाने का बड़ा टैक्ट होता है बहाना लाना।
1: आपको आता है, आपको आता है ये टैक्ट?
0: नहीं नहीं मैं वैसे ना तुम दसिया सच्ची गल भी रूटीन एक बनाई रोजे जो आंदे ना, मेरी ऑफर कॉल हुई जी तुम आना नहीं दसिया
1: बिलकुल ठीक है।
0: इंशाल्लाह नमाज पढ़ी फिर तड़को आए
1: कल। चलो जी बहुत शुक्रिया हमीद साहब,
0: बहुत सारिया दुआ जिन्हें भी साडे भैणा भरा ने लोहड़िया लोहड़िया बाद तुसी दुआ फिर रब रखा दे लग।
1: ओके जी हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, लाहौरियों के लिए जो है ना लाहौरी वाकई मोहब्बत करते हैं, लाहौर बड़े मेहमान नवाज लोग हैं लाहौरी है, और लाहौरियों के पास बहुत बड़ा दिल है जी। लाहौर में लाहौरियों ने बहुत सारे लोगों को समाया हुआ है जो दूसरे शहरों से यहाँ आए किसी भी सिलसिले में, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, कोई वैसे शिफ्ट हो गए यहाँ पे, सो लाहौर का दिल जो है वो बहुत बड़ा है। और जी कुछ कमेंट शामिल कर लेते। कंवल नवाज हमारे साथ मौजूद है जी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, सलाम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद है, सलाम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, शो को पसंद करें बहुत शुक्रिया जी। बहावल नगर से हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा जी और कौन कौन हमारे साथ मौजूद है लेट्स सी जी। सनी हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रेजेंट। ओके जी प्रेजेंट।

0: दुबके से पास किसको लेके जा रहा था मैं, तो मेरी मालदी ने मुझे टेलीफोन किया, कहती आप किधर हो इस टाइम। मैं उनको बता के गया मैं दाता साहब ना सलाम करने जा रहा हूँ उस पर, और वाकई में गया भी था।
1: अच्छा।
0: तो कहती है आप दाता साहब गए थे तो आप किधर है। तो मेरे सबसे छोटे बच्चे ने मुझे बाजार में देख लिया था, तो मैंने मेरे पैरों थोड़े जमीन निकल गई। मैं दाता साहब गया था, ऐ इस टाइम किधर है, मैं इस टाइम आ रहा हूँ, ऐ आ नहीं रहा, आपको बच्चे ने देख लिया, आप जरा गल तक देख लेके आए, आपकी खातर सुवादा खूब की जाती है। तो फिर मेरी चौधरानी साहबा ने ऐसा डंडा फेरिया, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ मैडम, अगर कोई बोल दू तो वो मेरे पर पुट्ठा पड़ जाता है, वो मुझे ना फिर उसको डिफेंड करना भी नहीं आता।
1: चले अच्छी बात है, बहाने बनाने भी नहीं चाहिए।
0: मैं इसलिए बोलता ही नहीं, अब मैं झूठ बोलता ही नहीं, इससे एक तो बंदे का वकार खत्म होता है और दूसरा सच भी बोल दे तो अगला कहता झूठ ही बोल रहे।
1: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी।
0: अल्लाह पाक आपका वकार बुलंद करे। आप आई बाहर आई और आपका इंतजार होता है शो का, लास्ट शो में आप मीटिंग की वजह से यकीन नहीं आई होगी, और इंशाल्लाह आप आती हैं हमारे वन वन पर रौनक आ जाती है। अल्लाह पाक आपको इज्जतों और अजतों से नवाजे। अल्लाह पाक वन वन की हमेशा ख्याल रखे, इसकी मैनेजमेंट, इसकी इंतजामिया को सलूट। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान
1: और राइट जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। धर्मतान में गुजर हमारे साथ मौजूद थे। और राइट जी, कमेंट किया हमें फिरोज आलम जान ने, और ये कहते कि बहाने बनाने में मैंने PhD की हुई है। और राइट जी, मैंने कहा है ना कि ये एक स्किल है और ये एक टैलेंट है, और जिन लोगों को पता है बहाने बनाने का, और वो इतनी इतनी इतनी इतनी परफेक्टली बहाने बनाते हैं ना कि आप जज भी नहीं कर सकते, आप बता भी नहीं सकते कि इन्होंने बहाना बनाया। आपको लगेगा वाकई नहीं, वाकई कुछ हुआ है, कोई मजबूरी है, इनकार किया है, मतलब या शायद इन्होंने बात ही ऐसे की है, वाकई ये ठीक कह रहे हैं। किसी का काम होता है ना, समटाइम्स नहीं करना होता, टालना होता है। तो मैं कहती हूँ ये भी एक प्रोफेशनलिज्म है, शायद ये भी एक स्किल है जो सीखना चाहिए। सो लेकिन जी हाँ, जहाँ पे गलत और झूठे बहाने हैं, जहाँ पे इस तरह से फैमिली को डॉज देना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एथिकली अच्छी नहीं है, इससे मुआशरे ख़राब होते हैं, और इस तरह के जो काम है वो नहीं करने चाहिए। इस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरह की बातें ना प्रमोट करनी चाहिए और ना ही इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए।

0: right, जी एक और कॉलर लेते हैं. लेट्स सी जी 4211111 पर कौन है हमारे साथ. तो इसके साथ ही हम जो है नेक्स्ट ट्रैक की जाने भी बढ़ेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम खुश आमदी जी आयानु अहलन व सहलन मरहबा बली करी आयानु ते एंड पखैर अगले कैसी हैं हम.
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपकी एनर्जी इतनी लो क्यों है आज.
1: मेरी एनर्जी लो इसलिए है कि मुझे याद भूल गया था कि आज आपका शो है.
0: अच्छा फिर क्या हुआ, फिर कैसे याद आया.
1: मुझे 7 बजे अचानक याद आया.
0: बहाना तो नहीं कर रही.
1: हाँ जी
0: बहाना तो नहीं कर रही.
1: नहीं कसम से जैन मार से उठी ना तो एकदम से दिमाग में आया कि और तो हमना का शो था.
0: बस अल्लाह ताला ने आपको याद करा दिया.
1: साथ में मेरा मुंह है ही नहीं बहाने मारने वाला.
0: अच्छा आप भी सीधा मुंह पे कह देती हैं. नहीं तो ना
1: मैं 50% लोगों को इसीलिए बुरी लगती हूँ.
0: कोई गल नहीं. देखिए साफ दिल होना चाहिए इंसान को, ठीक है.
1: और बहानेबाज लोग मुझे पसंद भी नहीं, उनसे मैं दूर हो जाती हूँ. मुझे पता चलता है ना ये झूठे और फ्रॉडिये लोग हैं. मैं उनसे 100 कदम पीछे दूर भागती हूँ. मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय, आपका रास्ता वो और मेरा रास्ता ये.
0: ठीक है जी, राहें जुदा कर लेती हैं आप, ठीक है.
1: हाँ जी बिल्कुल. इसलिए चाहे मेरे ऊपर जो मर्जी अटैक आए, जो मर्जी लगे, मैं टैग लगे, मैं कहती हूँ बस ठीक है, जो हूँ मैं वही हूँ. आप जो समझते हो समझ जाओ, जो मैं हूँ वो मुझे भी पता है और मेरे अल्लाह को भी पता है कि मैं कैसी हूँ.
0: बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको अपने बारे में पता होना चाहिए.
1: तुसी जाओ मरूंदा खाओ.
0: ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं हमारा, आप पक्की लाहौरी हैं.
1: नहीं नहीं मन्ना खान, मैं लाहौर में अभी भी नहीं हूँ और मैं बचपन में लाहौर, मैं जिला शेखपुरे की पैदाइश हूँ.
0: अच्छा.
1: और तहसील सफदराबाद और अब भी मैं तहसील शाहदरा में रहती हूँ.
0: ठीक है.
1: और जिला शेखपुरा. हाँ जी
0: ठीक है. लाहौर पसंद है आपको.
1: लाहौर बहुत पसंद है. जी मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ लाहौर में. मेरी आपियाँ रहती हैं वहाँ.
0: शाहदरा से लाहौर कितना के दूर है.
1: मेरे नानो लोग रहते हैं वहाँ.
0: ठीक है जी ठीक है.
1: लेकिन मैं अड़े अड़े वो नहीं कहती ना कड़ी पकौड़ा.
0: हम भी नहीं कहते जी, हम भी नहीं कहते.
1: नहीं जी लोग ये कहते कड़ी पकौड़ा.
0: चिड़िया चिड़िया. ठीक है.
1: बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, चाहे लेट ही सुना बहुत अच्छा लगा. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी और खुद भी इस चीज की चीज पे अमल करूंगी कि प्लीज हर कॉलर को मौका देना चाहिए.
0: और लाहौर से मोहब्बत तो है इनकी, लाहौरी नहीं है ये. लेकिन ये कि लाहौर अब इतना बड़ा है कि मुझसे पूछे तो मुझे तो ऐसी है शाहदरा तो यही पास ही है. एनीवेज जी एक ट्रैक है जी सराइकी और बहुत खूबसूरत ट्रैक है और ये आजकल बड़ा फेमस हो रहा है और बहुत ही हमारे लेजेंडरी सिंगर सराइके शफाउल्लाह रोखड़ी साहब की आवाज़ में है. तो इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं. चल रे, चल रे।

0: All right. Welcome back once again, Radio Pakistan F101 के Live on Lahore Studio से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को. मेरा आपका साथ रहेगा ठीक जी 8 बजे तक और कुछ मिनट्स बाकी हैं. सो जल्दी से हम जी कॉल्स की जाने बैठते हैं 04111111 पर आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है. लेट्स सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ और इनसे हम जानेंगे कि ये पक्के लाहौरी है या नहीं है और बहाने कितने बनाते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: अस्सलाम. आफिया खान
1: दोबारा से कॉल लग गई.
0: वाह आफिया खान, वाह वाह वाह. आफिया पहले क्या हुआ था?
1: पहले ये हुआ था मेरी आप भी आ गई थी. आप भी कहती ड्रामे बाहर जाके चाय पका लो.
0: मैंने सही गेस किया था. मैंने कहा आफिया को पीछे से किसी ने आवाज दिया और आफिया ने ठक करके फोन रख दिया.
1: वो मेरी आपकी थी बचाई. मैंने कहा यार चलो छोड़ो बचाई.
0: नहीं नहीं अच्छी बात है जी. तो फिर आपने बहाना नहीं बनाया ना?
1: नहीं मैंने कहा बिल्कुल वो बेचारी आती 5-6 दिन के लिए. मैंने कहा कोई बात नहीं. मैं उसकी हर एक बात मानती हूँ. कोई भी बात मैं अपनी मुझसे मानती हूँ बचपन से. और मैं नहीं तो क्या.
0: नहीं वो इख्तलाफ भी होता है ना कभी कभी आपस में कि बस तुमने मेरा वो काम नहीं किया, तुमने उस पर बहाना लगाया था.
1: नहीं, ये नहीं हुआ उसके साथ.
0: अच्छा वाह जी वाह. इसका मतलब आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है अपनी बहन के साथ.
1: और मैं लाहौर में पैदा नहीं हुई. मैं हुई थी गांव में पैदा हुई थी बटेग्राम मानसेरा उधर.
0: अच्छा,
1: हुई थी
0: ठीक है.
1: लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 3 साल गांव में, उसके बाद मैं लाहौर. मैं अब हो गई हूँ लाहौर की.
0: आपके कितनी देर
1: फखर है.
0: कितने साल हो गए?
1: मुझे हो गए है ये 15 साल हो गया.
0: अरे वाह अब तो आप लाहौरी बन गई हैं काफी हद तक है ना. लाहौर रच बस गया है.
1: 15 साल हो गए और 3 साल मैंने गांव में निकाले थे. अब 18 साल क्यों ना मैं.
0: नहीं हमने आपकी उम्र नहीं पूछी थी. चले ठीक है.
1: मैंने कहा था पैदा हुई थी गांव में, 3 साल गांव में निकाले, 15 साल इधर, टोटल 18 हो गए.
0: ठीक है जी.
1: और हम ना आपसे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी ना ऑफ एयर कॉल थोड़ी थोड़ी लिया करें.
0: ठीक है जी.
1: ताकि सबको मौका मिले कॉल.
0: ये आप जरा सबको समझा दे. सबको समझा दे.
1: सारे सफल जाओ. थोड़ी थोड़ी बात क्या करो मेरी तरह. मैं थोड़ी थोड़ी करती हूँ.
0: ठीक है जी ठीक है. आपकी तो कॉल भी दोबारा मिल गई है ना.
1: ठीक है. और आप ही, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी ना कि हमारे 2 RJs बड़े प्यारे वो गायब है.
0: अच्छा जी.
1: आपकी रुबीना वजाहत वो गायब है और दूसरा जो है वो सर सैयद जैरशाह शायद वो, ये दोनों गायब है. आप मुझे बता देंगे?
0: मुझे खुद नहीं आइडिया. मैं आपको पता करके बता दूंगी. ठीक है
1: जी. शुक्रिया.
0: ओके जी. थैंक यू सो मच. आफिया अल्लाह हाफिज. आफिया हमारे साथ मौजूद थी और इनकी जो इनके सिस्टर के साथ बॉन्डिंग है ना उसमें ये बहाने नहीं कर सकती, तो मैंने फिर वो सवाल ही नहीं किया. और उसके अलावा जी 15 साल इनको लाहौर आए हुए हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो लाहौर रच बस गया आपके अंदर और लाहौरी आप बन चुकी है. और जी रजा चौधरी ने हमें ज्वाइन किया फेसबुक पर. सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. ये भी वो लाहौरी हैं जो लाहौर आते हैं काम के सिलसिले में और यकीनन अब ये भी जो है वो लाहौर का एक पार्ट बन गए. सो लाहौर का दिल बहुत बड़ा है. हमारे बहुत सारे कॉलर्स, बहुत सारे लिसनर्स जो हैं ना वो लाहौरी बन चुके हैं. और जी एक ट्रैक की रिक्वेस्ट आई थी, अनदर ट्रैक का, और ये भी जो है वो ट्रैक है जो हम सब ने जो है ना वो बहुत सुना है. और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट आई हुई है काफ़ी देर से. सो इस ट्रैक को प्ले करते हैं, इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को. और ये खूबसूरत सा ट्रैक जी नदीम अब्बास लूने वाला की आवाज़ में, इस ट्रैक को इंजॉय करते हैं जी.

अच्छा पता नहीं, जब जब ये ट्रैक प्ले होता है ना, मुझे कोई शादी का इवेंट, कोई मेहंदी वगैरह याद आ जाती है। आई डोंट नो, शायद इतना ये शादियों पे प्ले हुआ है ना ट्रैक।

चलें जी, आजकल जिन जिन की शादियां हो रही है ना, उन सबको डेडिकेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि शादियों का सीजन जी चल रहा है और बिल्कुल शादियां हो भी रही हैं आजकल काफ़ी सारी, सो आप सबको डेडिकेट कर देते हैं, ठीक है जी। और ये रिक्वेस्ट की थी हमसे जी फरोज आलम ने, आई होप कि आप सुन रहे होंगे।

0: हाँ जी चंगे होवन यार, ये लाइन तो ऐसी थी कि मतलब मेरे ख्याल में हम सबको बड़ी हिट की है। और जी लास्ट कॉल लेते हैं, लेट्स सी जी लास्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ 0421111001 पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, खुश आमदीद, बड़ी गल है सारी काचो की ली 100 दफा मिली का।
0: चलिए जी कॉल उठा ली है और लास्ट कॉलर भी आप ही हैं।
1: बड़ी बड़ी मेहरबानी। वो बाजी के बाद आई थी ना बाजी, पूछी बिना बस याद क्यों नहीं आ रही, तो उसके बाद मेरी बहुत दफा कॉल मिली अपने कान से लाती। मैं क्या साड़ी बारी गाना लग रही है, हर बार जी तो कॉल मिलानी।
0: चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गिले शिकवे ना करें जी।
1: नहीं नहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिस शो में मेरी कॉल ना मिले तो मतलब शो सुपर हिट है।
0: अच्छा ठीक है,
1: ऑफलाइन तो मिली नहीं है, चलो ऑन ईयर एंड पे चला गया। अभी मैं रोटी अपने आगे आगे रखी है खाने लगा, मैं कहा नहीं दफा ट्राई ऑल कर ले।
0: ठीक है
1: दफा ट्राई ऑल कर, ट्राई किया, लोग कह रहे तू पागल तो नहीं है, मैं कहा नहीं यार पागल नहीं, तुझे कॉल कर।
0: अच्छा
1: तो माशाल्लाह अच्छा शो है आपका,
0: बहुत शुक्रिया जी। मुझे बताएं लाहौर आए हुए आपको? लाहौर आए हुए कितना टाइम हो गया?
1: लाहौर आए मुझे 22 साल हो गए।
0: 22 साल हो गए। अच्छा
1: लेकिन लेकिन मैं ना और रिश्तों को लिबास की तरह कभी नहीं बदलता।
0: अच्छा
1: जिनके साथ रिश्ते लगाते हैं ना, क्यों लाहौर ने मुझे बहुत इज्जत दी है, नाम दिया एक एक, मैं अपनी फैमिली के लिए यहाँ रिश्ते लेके जाता हूँ, कारोबार करता हूँ, सारी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजर गई है।
0: ठीक है
1: क्रिकेट भी लाहौर में ही खेली है, कभी बहाना नहीं लगाया मैंने।
0: ठीक है
1: लेकिन कभी किसी के ऊपर क्या कहते हैं ना लफ्जों की बोला बार इसलिए नहीं की कि अच्छे बंदे अच्छे इंसान वही हैं जो किसी चीज को ना साथ लेके चलते हैं।
0: नहीं देखिए ना अब आपको 22 साल हो गए हैं तो इसका मतलब आप भी एक तरह से लाहौरी तो बन ही गए हैं ना, लाहौर रच बस गया है।
1: मेरा घर तो यही है, जब मैं उकाला जाता हूँ मैं 3-4 दिन के लिए जाता हूँ, वहाँ मैं मेहमान होता हूँ।
0: अच्छा
1: प्रदेश से तो ये मेरा घर है।
0: तो फिर वहाँ से जब वापस आते हैं या वहाँ जब रहते हैं थोड़ा लंबा टाइम तो लाहौर मिस करते हैं ना आप?
1: हाँ वो तो वही ऐसी ना, जब अपने गाँव में चले जाते हैं ना तो लोग कहते हैं यार तुम परदेसी हो इधर, मैं क्यों कहते लाहौर घर तो अपना लाहौर ही है ना, यहाँ आप एक में 27 दिन गुजारते हैं, 3 या 4 दिन आप इधर आते हैं तो सही घर तो आपका वही हुआ। लाहौर बड़े जिंदा दिल लाहौर है, लाहौर वाले अच्छे लोग हैं, कहते हैं क्या कहते हैं कि इज्जत करने वाले लोग हैं।
0: अच्छा।
1: लेकिन कभी कभार ना इधर से कान से कान पकड़ के कान से वो धुआं भी निकाल देते हैं, जब कहते हैं ना कि ये हम वो लिबास नहीं बदलते रिश्ते कभी नहीं बदलना चाहिए, इंसान जो इंसान है ना अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छा बनाया है, कि अगर किसी के साथ हम धोखा करते हैं या अपराध करते हैं ये ना समझे तुमने दाल गाल दिया, ये समझो कि आप पे और बंदे को भरोसा कितना है जो धोखा कर रहा है आपसे।
0: ठीक है
1: तो मैंने कभी बहाना नहीं किया।
0: अच्छा।
1: स्कूल में भी बहाना कभी नहीं किया, एक दफा बहाना किया था
0: स्कूल
1: से तो बात किया लेकिन घर में पैटी बड़ी पड़ी थी।
0: अच्छा किस चीज पे बहाना किया था आपने?
1: वो मैंने ना जब ब्रेक हुई ना तो मैंने ऐसी कहा कि हमारे घर में मेहमान आए।
0: अच्छा
1: तो जब घर आ गया क्योंकि दोस्त ने कहा यार कहीं जाना है जो भी था मैच वगैरह था हम चले गए, लेकिन वो टीचर हमारा रिश्तेदार था वो जैसे छुट्टी हुई सीधा हमारे घर।
0: अच्छा उसने कहा मैं जाके देख के आता हूँ, टीचर ने कहा कि मैं भी देख के
1: आऊं क्या शायद पी के आना, तो घर गया तो अल्लाह जन्नत दी करे, मेरी वालिदा को पूछा कि बहन वो किधर है चौधरी साहब, रजा किधर है आज, कहता वो तो अभी क्या है स्कूल से तो आ गया, कहता मेरी छुट्टियां खराब, कहता वो उधर कह गया हमारे घर मेहमान आए, चलिए अच्छा आज फिर आ ही लैंड।
0: ठीक है
1: तो फिर उसके बाद जिंदगी में कभी बहाना नहीं किया।
0: चले अच्छी बात है अच्छी बात है,
1: तो जीते रहे आपके लिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं,
0: बहुत शुक्रिया
1: आपकी पूरी फैमिली के लिए, सभी सुनने वालों के लिए। अगर मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी धार जोड़ के माजरत, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी वालदैन का मेरे ऊपर करम है, मेरे दोस्तों का करम है क्योंकि उन्होंने अच्छा मोटिवेट किया, मेरे टीचर और 101 का सबसे ज्यादा मेरे ऊपर कहता सारा जिन्होंने मुझे बोलने की चज बताया, चज पंजाबी का इसलिए मैंने यूज किया है कि किसी को पता चले चाजी किसे कहते हैं।
0: ठीक है ओके जी ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी रजा चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, 22 साल हो गए इनको, मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे कॉलर्स काम के सिलसिले में लाहौर आए, लाहौर ही रह गए, लाहौर है ही ऐसा जी, लाहौर ही ऐसी हैं, लाहौरी बहुत मोहब्बत देते हैं, लाहौरियों का दिल बहुत बड़ा है और लाहौर शहर ही ऐसा है कि जी आप एक बार लाहौर आएंगे और आप कहेंगे कि नहीं लाहौर ही रहना है, और लाहौरी जब लाहौर से बाहर जाते हैं तो लाहौर को ज़रूर मिस करते हैं। ऑलराइट जी इसी के साथ हमारा टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बहानों की हमने बात की, लेकिन अच्छी बात है कि जी अगर आप लोग बहाने बनाना अवॉइड करते हैं और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या आप कह देते हैं बस ठीक है कोई बहाना करने की जरूरत नहीं है, और यकीन मानिए इससे दिली सुकून भी रहता है, ज़हनी सुकून भी रहता है कि अगर आप बहाने कम करते हैं और आप कह देते हैं कि भाई बस नहीं अब ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा, बहाने एक बनाएंगे फिर दो बनाएंगे फिर तीन बनाएंगे फिर उसको कैरी ऑन करेंगे, वो ही वाला हिसाब है जिससे आप झूठ को कैरी ऑन करते हैं। लेकिन अगेन जी कुछ लोग इतने पक्के बहाने बनाते हैं ना कि जी प्रोफेशनल लगते हैं और पता ही नहीं लगता कि आपको कब उन्होंने जो है ना बहाना लगा दिया। ऑलराइट जी लास्ट ट्रैक

और जस्ट लास्ट ट्रैक को एंजॉय करें इसी के साथ, मुझे अपने आज हमने खान को दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह 6 से 8 आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।

धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

Assalamualaikum, Pakistan. क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फारे बनेंगे. ऑलराइट जी, मैं हूं आपके साथ हसनैन रज़ा, ऑल द वे फ्रॉम हिट हॉट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एफएम 101. और आप इस टाइम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टूडियो से. ऑलराइट जी, हमारी बातें सिर्फ सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई. इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो radio.jui.pk पर. इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त इस टाइम हमें मोबाइल इंटरनेट पे सुन रहे हैं radio.jui.pk/mobile पर. और अगर तो आप अपने रेडियो सिस्टम मोबाइल सिस्टम पे सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ अपने ट्यून के प्योर पाकिस्तानी चैनल FM 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. ओके जी, सबसे पहले डेट चेंज हो चुकी है, साथ साथ मंथ चेंज हो चुके हैं. आज 1st of September 2026 ट्यूजडे स्टार्ट हो चुका है. हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ट्यूजडे का सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, और साथ उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट जाने के मंडे आपको बहुत अच्छा गुजरा होगा जैसा कि आपने सोचा होगा. और जैसा मैं कहता हूं, अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पूरा हफ्ता आपका अच्छा नहीं गुजरेगा. सब डिपेंड करता है आपका माइंड सेट के ऊपर. पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा. सो अच्छा है ना, पॉजिटिव सोच के अपनी लाइफ को आप अच्छा बना लो.

सैयद जी, सबसे पहले बताइए कि पूरा हफ्ता जो है आपका कैसा गुजरा और क्या आप करते रहे, क्या सोचते रहे, क्या घूमते फिरते रहे हैं? और जैसा कि आपको पता है कि मंडे को अमूमन ऐसा होता है, मेरा प्रोग्राम होता है और साथ साथ बारिश जो है उसके चांसेस बन जाते हैं, बारिश हो जाती है। और कल मैं सोच रहा था कि कल बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसकी एक वजह थी कि आपको बताना था कि मंडे के मेरे प्रोग्राम में और बारिश में कुछ ना कुछ जो है कॉम्बिनेशन तो है ना। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो उसके बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जितनी तेज़ बारिश हुई है तो पता चल रहा है कि हाँ, मेरा आज लास्ट शो है FM 101 इंटरनेशनल में।

आइयो के आज हमारे बहुत सारे पुराने लिसनर्स भी हमें सुन रहे हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज। जैसा कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है वो पोस्ट किया था कि आज 31st की रात और 1st सितंबर की जो मिडनाइट है, मैं लास्ट अपना प्रोग्राम करूंगा रेडियो पर, अपने रेडियो कैरियर का, FM 101 इंटरनेशनल।

यकीन माने कि मैं भी सारा दिन जो है ये बात सोचता रहा कि आज के प्रोग्राम में क्या बातें मैं करूं आप लोगों के साथ, और वो सोचने के बाद जो है इस फैसले के ऊपर पहुंचा कि जस्ट मैं जाऊंगा और शो करूंगा। कोई बहुत ज़्यादा कुछ प्लान मैंने नहीं किया हुआ आज के शो में। सो आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, अपने रेडियो कैरियर के हवाले से बहुत सारी बातें करूंगा, उसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स होंगी प्रोग्राम में, आपको भी मौका दूंगा कि आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सको। हमेशा की तरह हमारा नंबर है 051-111-111 and 051-920-2540। इसके अलावा प्रोग्राम में आप SMS मैसेज के थ्रू पार्टिसिपेट करोगे, अपने मोबाइल फ़ोन की SMS के ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर लिखो 101 एक स्पेस, जो कि लोगों को जिंदगी में लाजमी दिया करो, अपना मैसेज दाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर अपने तमाम आप SMS मैसेज हमें सेंड करोगे। इसके अलावा जी फेसबुक पे ऑफिशियल हमारा फैन पेज ज्वाइन कीजिए www.facebook.com/FM101channelPakistan, जहां पर आपको अभी के शो की पोस्ट जो है नजर आएगी कि 12 to 2 AM आपका मेरा साथ रहेगा FM101 इंटरनेशनल में, और साथ उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आज आपका मेरा साथ जो है इस FM101 इंटरनेशनल में मंडे नाइट का जो प्रोग्राम है उसमें लास्ट टाइम होगा। तो वहां पर आप जाके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और खासतौर पर हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो।

एनीवेज जी मैं क्योंकि लाइफ में बहुत सारी डिसीजंस जो हैं वो इतनी आसान नहीं होती हैं, आपको बड़ा सोचना पड़ता है उसके बारे में, और जिस जगह पर आपने बहुत टाइम दिया हो, जहाँ पर आपका बड़ा वक्त गुजरा हो और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हो और आपकी बहुत सारी मेमोरीज हों, उस जगह को छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है. तो मेरे लिए भी ये डिसीजन जो है, जो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स हो सकते हैं अभी ट्यून इन करें, उनको इस चीज़ का ना बताओ. वैसे तो मैंने अनाउंस कर दिया था एक महीने पहले ही. सो जहाँ पर भी आप होते हो, वहाँ पर जहाँ पर आपकी मेमोरीज होती हैं, जहाँ पर आपने बहुत मेहनत की होती है, एफर्ट की होती है, अपना टाइम दिया होता है, उस जगह को छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता है, और ये डिसीजन जो है वो इतनी ईजी नहीं होती है. आई नो कि जिस तरह एक रेडियो प्रेजेंटर होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वो जितनी एनर्जी के पैशन के साथ वो प्रोग्राम करता है, इसी तरह लिसनर्स जो हैं वो उसी तरह दिल लगा कर एक रेडियो प्रेजेंटर के ऊपर ट्रस्ट करके उसके साथ आप कह सकते हैं उनको टाइम देते हैं. और आपको पता है, जब आप अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है, कीमती वक्त किसी को देते हो, तो ये आपकी आप कह लो कि सबसे प्रीशियस चीज़ होती है. तो जिस तरह मैंने तकरीबन 20 ईयर्स आप लोगों को जिस तरह साथ दिया और कोशिश की कि जिस तरह पंचुअलिटी के साथ, जिस तरह डेडिकेशन के साथ जो है मैं प्रोग्राम्स जो हैं वो करता रहूं, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कितने प्रोग्राम्स जो इस टाइम तक कर चुका हूं, लाखों की तादाद में होंगे. और उसी तरह हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हैं, अगर रेगुलर नहीं सुन पाते तो ऑन एंड ऑफ जो है वो आते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं. अब तो देखो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के थ्रू कहीं ना कहीं बहुत सारे लिसनर्स जो हैं आपको मिलते रहते हैं. तो उनका फीडबैक जब आप तक पहुँचता है, जो कि एक आरजे का आप कह लो कि फ्यूल होता है, ठीक है, जिसे हमें मोटिवेशन मिलती है जो माइक्रोफोन के इस साइड पे बैठे होते हैं, सो वो बहुत ज़रूरी होता है. और एक तो आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस तो हम तक पहुंच रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप यहाँ से जाते हो, तो जब हमारे लिसनर्स जो हैं हमें सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, हमें ढूंढते हैं कि यार ये प्रेजेंटर कहाँ पर है, उसको फीडबैक देना है, तो जब हम तक वो फीडबैक पहुँचता है, आप लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को कितनी खुशी होती है. आप यकीन माने कि मैंने जब स्टेटस लगाया तो मुझे बहुत सारे आज कुछ 10 साल पुराने, कुछ 15 साल पुराने, कुछ इवन कि जब मैंने रेडियो कैरियर जो है वो स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 20 साल पहले, उस वक्त के लिसनर्स जो है उन्होंने जब कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि अब लाइफ बड़ी चेंज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी आ गई हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां हो गई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए. आप यकीन माने कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, जर्मनी, कहाँ कहाँ से मुझे मैसेज नहीं आए, जो और बहुत सारे लोग जो हैं जिनमें से शो में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बताते भी हैं. और तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे फीडबैक मिला, और उन्हें थोड़ी हैरत भी हुई कि मैं रेडियो क्यों छोड़ रहा हूँ. एक ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था जो कि मैंने एक बड़ा डिटेल्ड पोस्ट जो है सोशल मीडिया के ऊपर लिखी थी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था सारा, और उसमें मैंने बताया था कि मैं रेडियो क्यों छोड़ रहा हूँ. कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, और एक इंसान की एक अपनी डिसीजन होती है और अपना फैसला होता है. मेरे ख्याल से कि मैंने ये बात बहुत पहले, बहुत सालों पहले कही थी कि जब भी मुझे ऐसा कभी लगेगा कि हाँ मेरे में अब वो बात नहीं है, मेरे में वो एनर्जी नहीं है, अब मैं उस तरह डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं नए लोगों को मौका दूंगा, बजाय इसके कि मुझे कहा जाए कि अब आप ऐसा करें वैसा करें. वैसे तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सर वही शेख साहब जिन्होंने मुझे मौका दिया था फर्स्ट टाइम ऑन एयर होने का, और उसके बाद मैम सदर फरानी. आप यकीन करें कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपको बनाया होता है, ठीक है, बनाया इन द सेंस कि देखो जो आपको, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जो आपको एक चांस देता है, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि जब आपको इस माइक्रोफोन के ऊपर बिठाया गया है तो आपने डिलीवर कैसे करना है. अब देखो आपके, ये आपके ऊपर है कि आया कि आप इस माइक्रोफोन को आके जस्ट सॉन्ग्स प्ले करते रहो और रिक्वेस्ट प्ले करते रहो, या आप टाइम पास करते रहो. दूसरा तरीका यह है कि आप उसको यूटिलाइज करो, एक अच्छे अंदाज में उस माइक्रोफोन को इस्तेमाल करो और लोगों तक जो आप बात पहुंचाना चाहते हैं वो एक अच्छे अंदाज में पहुंचाओ. और मैंने यकीन माने कि जब मैंने रेडियो कैरियर जो है वो स्टार्ट किया था, एक्चुअली मैं आपको बताऊं आज के
मेरी मेरे खानदान में मेरे खानदान में बहुत सारे रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, ठीक है, शायद बहुत सारे लिसनर्स हैं, उनके नाम जो है वो सुने भी होंगे. एक एफएम 101 फैसलाबाद से थे, एक लाहौर में मेरे कज़न थे, वो बहुत फेमस रेडियो प्रेजेंटर थे. फिर मैंने कहा यार इस्लामाबाद है, फिर मुझे तो होना चाहिए ना. तो खैर, तो मेरा हम सबका, इंक्लूडिंग मी, हम सबका एक मोटिव था कि देखो लाइफ में बड़ी फ्रस्ट्रेशंस हैं, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, हर इंसान जो है वो किसी न किसी मसले में फंसा हुआ है, किसी न किसी सोचों में गुम है, कन्फ्यूज है. जब आपने इस माइक्रोफोन को यूज करना है, इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, आपने सिर्फ लोगों को बस सोचने के ऊपर मजबूर कर देना है. आपने अपनी बात ऐसे डिलीवर करनी है कि बेशक अगर वो सीरियस भी है तो एक अच्छे मतलब के एंटरटेनिंग अंदाज में आपने उसको लोगों तक पहुंचाना है. ये नहीं कि आपने सीरियस के बातें शुरू कर देनी है, मजीद लोग वैसे ही बड़े दंगे मतलब के अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह से, तो उनको और आप स्टक कर दो. सो देखो, जब मैंने रेडियो करियर अपना स्टार्ट किया था, उस टाइम सरवेज शेख ने मुझे मौका दिया इस माइक्रोफोन पर बैठने का. मैंने काफ़ी टाइम तक एफ एम 93 पे प्रोग्राम्स किए और वहाँ पर बड़े सीनियर प्रेजेंटर्स जो हैं वो प्रोग्राम करते थे. हम सारे एक साथ ही वहाँ पर 10 to 12 और 12 to 2 की स्लॉट में गए थे. उनमें से बहुत सारे नाम हैं, वो आप लोग जानते हैं, उनको आप सुनते भी रही हो. तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, ऐसा वो स्लॉट्स बड़ी लिमिटेड स्लॉट्स थी और बड़ा कंपटीशन था. उसके बाद फिर मतलब एफएम 101 से एफएम 93 पे गया, एफएम 93 से दोबारा एफएम 101 पे आया, जब एफएम 93 जो है वो चैनल बंद हो गया. तो और यकीन माने कि उस टाइम जिस कंपटीशन की मैं बात करूँ, ये हेल्दी कंपटीशन था. और उस टाइम माइक्रोफोन लेना आसान बात नहीं थी, उस टाइम आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी, आपको मनवाना पड़ता था कि आप वाकई हकदार हैं इस माइक्रोफोन के. और ये मंडे नाइट की जो स्लॉट है, जो मैं आज लास्ट प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये मैं 2011 से ये प्रोग्राम जो है मेरे पास है. उससे पहले मैं वीक के 3 शोज करता था, उसमें थर्सडे और ट्यूसडे को 10 to 12 था, और साथ मंडे की जो रात थी, यानी कि मंडे और ट्यूसडे की मिड नाइट जिस तरह आज है, तो ये एफएम 101 इंटरनेशनल में करता था. फिर मैंने 2 शो छोड़ दिए और मैं एक शो पे आ गया. लेकिन ये स्पेसिफिक शो जो है, जिसको लोगों ने सुना, जिसको पसंद किया, इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल लिसनर्स जो मेरा 10 से 12 का शो भी सुनते थे. मैं हमेशा ये बात कहता, तो मुझे अच्छा भी फील होता था. मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत प्राउड मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ, नहीं. जो आज मैं वो बातें कह रहा हूँ जो मैंने इस माइक्रोफोन पे इधर बैठ के मैंने फील किया, और जो मेरी अचीवमेंट्स में से एक थी, ठीक है. 10 to 12 की स्लॉट में मैंने बेतहाशा टॉपिक्स रखे. मैंने कभी गेम शो पे मैंने फोकस नहीं किया, और मैंने 12 to 2 में बहुत सारे मैंने टॉपिक्स जो है मैं रखे. मेरे ख्याल से कि मैं यकीन माने जिस दिन मेरा शो होता था, मैं सारा दिन बैठ के ये बात सोचता था कि मैंने आज प्रोग्राम में सवाल क्या करना है, टॉपिक क्या रखना है, क्योंकि मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा कि किसी टॉपिक के बगैर जो है वो शो हो, और जिसमें कोई लिसनर्स अपना फीडबैक ना दे सके. हाँ, मैं हमेशा से जनरल चिटचैट करता हूँ, मैं जो गॉसिप चल रही होती हैं, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो इर्द गिर्द, मैं उनके बारे में बातचीत करता हूँ हमेशा से. लेकिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो लाजमी होना चाहिए, जिसके ऊपर आप भी बात कर सको, जिसके ऊपर लिसनर्स जो हैं वो अपना फीडबैक आप तक पहुंचा सकें. तो मैंने कभी भी, शायद ही कभी होगा कि मैंने अपना प्रोग्राम जो है वो खाली छोड़ा हो, जिसमें कोई सवाल ना हो. और एक बात जो है, लिसनर्स हमेशा मेरे से, बहुत सारे लिसनर्स कहते हैं आप रिक्वेस्ट शो क्यों नहीं आपने कभी किया. मैंने रिक्वेस्ट शो नहीं किया. हाँ, मैं जब मैं रेडियो ज्वाइन किया था, उस टाइम स्माइल एंड डायल मैंने प्रोग्राम किया था 1 to 3 एफएम 101 पर, वो रिक्वेस्ट शो होता था. वो शायद मैंने 1 महीना किया था, तो मुझे उस टाइम पता चला था कि लोगों की रिक्वेस्ट जो हैं, मतलब रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन लोग किस तरह के ट्रैक्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है. अब मेरा जो शो का फॉर्मेट है वो थोड़ा अपबीट है. अगर मैं प्रोग्राम में सैड सॉन्ग्स प्ले कर दूंगा सारे, और ऐसे सैड सॉन्ग जिसके बाद सुनने वाले जो है वो सारे रोना शुरू कर देंगे, ठीक है, उदास हो जाएंगे, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था. इसलिए मैं सैड सॉन्ग्स जो है मैंने हमेशा से स्लो सॉन्ग्स जो है वो मैंने कब लगाए हैं कि आपका एटलीस्ट जो टेम्पो है वो स्लो ना हो. और इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की है मैं अब भी ट्रैक्स को मैं प्रोग्राम में लेके चलूं. और ट्रस्ट मी कि जितना टाइम भी एफएम 101 के साथ गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी मेमोरीज हैं.
मैं आज आपको बताऊं कि कभी कभी मैंने अपने शोज में मुझे लोगों ने हमेशा ये फीडबैक दिया, आप बड़ी नेचुरल बातें करते हैं, जो ऐसे लगता है ये सारा कुछ जो है वो लाइफ में हो रहा है। मैं आज आपको ये आखिरी प्रोग्राम में बता रहा हूँ अपने कि मैंने अपने प्रोग्राम में अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड सारी बातें की होंगी, शायद मैंने नाम चेंज कर दिए होंगे, मैंने मतलब अपने ऊपर रख के मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड शायद अपने शोज में सारी बातें की होंगी। लोगों की तो चलो मैं बात करता ही हूँ कि मतलब बाहर क्या हो रहा है, क्या मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं सब कुछ, लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर वक्त गुजारा है, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग में, वो सारी चीज़ें जो है मैंने अपने शो में मैंने बताई हैं, डिस्कस की हैं, और शायद आपको आज तक नहीं पता कि वो सारी चीज़ें जो है वो मेरी लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन मैंने बताई हैं। और मैंने हमेशा एक बात की कोशिश की है, इवन के सोशल मीडिया पर या अपने शोज़ में मैं कभी भी कोई ज़्यादा पर्सनल बात मैं नहीं करता, और मैं मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बातें जो है वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर लिखूं या अपने शोज़ के अंदर उसको डिस्कस करता रहूं, मैं नहीं करता। मैंने हर चीज़ की एक लिमिटेशंस रखी हुई हैं, और इस चीज़ का जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यकीन माने कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मैंने अपने प्रोग्राम जो हैं वो स्किप नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, शहर से बाहर गया हूँ, तो शायद मैंने अपने शोज जो है कुछ मैंने स्किप किए होंगे। और मैं ये बात कहता भी हूँ लोगों को, देखो जब लिसनर्स आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं ना माइक्रोफोन के ऊपर, तो फिर आपको भी पंचुअल होना चाहिए, आपको इसको आदत बनाना चाहिए कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा मैंने कोशिश किया कि यार मेरे से प्रोग्राम जो है वो स्किप ना हो, और मैं प्रोग्राम जो है वो करता रहूं। और चले आज आपको एक मज़े की बात बताता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी मैडम सदफ रानी से बात हो रही थी, तो यकीन माने कि जितनी कंप्लेंट्स जो हैं मैं मैडम को करता था ना, शायद किसी ने भी नहीं की होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं मैडम को पता है मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं बात जो है वो कह देता हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता एक अच्छे तरीके से, मैं बात जो है वो कह देता हूँ, चाहे मुझे अच्छी लगती है बुरी लगती है, क्योंकि मैनेजमेंट को चीज़ें पता होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो सकता है, किन चीज़ों से हमारा चैनल जो है वो और बेहतर हो सकता है, प्रोग्रामिंग बेहतर हो सकती है। समटाइम्स यकीन माने मुझे इस बात की हमेशा बड़ी खुशी रही है, बहुत सारे अभी प्रेजेंटर्स हैं वो FM 101 से भी प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरे चैनल से भी प्रोग्राम कर रहे हैं, और कुछ टेलीविज़न पे भी आप देखते हैं, मैं किसी एक का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा। मुझे हमेशा बड़ी खुशी हुई, और मैंने हमेशा बड़ा इंकरेज किया है उन सारे लिसनर्स को जो रेडियो पे आना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, और मैं हमेशा पहले खुद बात करके मैं देखता हूँ कि यार लिसनर्स को जो रेडियो पे आना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, और मैं हमेशा पहले खुद बात करके

अच्छा एक बात, लिसनर्स हमेशा लाइव कॉल्स करके भी पूछते हैं क्या हम आपको याद है। देखें जब एक रेडियो प्रेजेंटर जो है प्रोग्राम कर रहा है, तो मैं अपनी बात करूँ, मैं प्रोग्राम जब भी कर रहा होता हूँ मुझे पता जो स्पेसिफिकली लोग याद रहते हैं ना, उनके नाम भी आपको याद रहते हैं और उनकी आवाज़ भी आपको याद रहती है। ये आवाज़ की दुनिया है, ये आवाज़ की दुनिया जो है ना एक ऐसी दुनिया है जहाँ हम एक दूसरे को आवाज़ की वजह से पहचानते हैं एक दूसरे को। हम मैं अगर यहाँ पर बातें करूँ, इस टाइम मैं स्टूडियो में अकेला बैठा हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं आप लोगों से बात करूँ, मुझे पता है कि इस टाइम बहुत सारे लोग जो है मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। सो बहुत सारे लिसनर्स पूछते हैं आप हमें भूल तो नहीं गए, यकीन माने हम किसी भी लिसनर को नहीं भूलते हैं और हमें भी याद रहता है, चाहे वो 20 साल पहले का लिसनर हो, चाहे वो 15 साल 10 साल या अभी उसने रिसेंटली सुनना शुरू किया होगा। ऑब्वियसली जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते प्रोग्राम में तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने दूसरी बार कॉल की है, पांचवी बार कॉल किया है। सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम अपने लिसनर्स को भूल जाते हैं और मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ और बहुत सारे लिसनर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं और उनके साथ गपशप होती है। मैं बड़ा फ्रेंडली सा बंदा हूँ, मैं लोगों से मिलता भी हूँ, गपशप भी लगाता हूँ, जो मुझे पुराना सुनते आ रहे हैं लोग उनको पता है मैं काफ़ी सोशल बंदा हूँ और मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनको समझना, उनकी बात को सुनना, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ रही है। और जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं उन प्रेजेंटर्स में से था जिन्होंने कहा था, उन दो तीन प्रेजेंटर्स में से, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने कहा था कि यार देखो सोशल मीडिया आ रहा है तो लोगों को देखना चाहिए कि कौन प्रेजेंटर जो है वो प्रोग्राम कर रहा है। तो हमने अपनी पिक्चर्स जो हैं वो शेयर करनी शुरू की थी कि यार हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सो हम दो तीन गिने चुने हम प्रेजेंटर्स थे और जिन्होंने ये स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लोगों जो सुनने वाले थे वो कहते थे कि यार जो प्रोग्राम कर रहा है हमें उसे देखना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो सुन रहा होता है उसने एक अपने इमेज बनाया होता है माइंड में कि ये प्रेजेंटर जो है वो कैसा होगा जिसकी आप बातें जो है सुन रहे होते हो और अपना फीडबैक जो है वो साथ दे रहे होते हो। अब देखो ना ये BGM इस टाइम मैंने स्टीरियो लव जो है प्ले किया हुआ है एडविन माया का, आप यकीन करो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये BGM मेरा इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। और इनफैक्ट मैं खुद भी, मैंने काफ़ी साल इसको मैंने BGM रखा, मैं खुद भी अगर मैं किसी जगह पर किसी कैफे गया हूँ, किसी कहीं यूट्यूब पर मैंने देख लिया कि बाहर गया हूँ, जब भी मैंने ये ट्रैक जो है एडविन माया का मैंने सुना स्टीरियो लव, मुझे खुद वो वाइब आती थी कि यार मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और आप यकीन करो पिछले दिनों मुझे बड़ी हंसी भी आई और बड़ी खुशी भी आई है। दो तीन साल पहले एडविन माया ने इसका एक इस ट्रैक को रीमेक किया, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर वो वीडियो शेयर की स्टीरियो लव की जो उन्होंने दोबारा से रीमेक किया। अच्छा हमारी एक लिस्टनर हैं, आई थिंक वो अमेरिका में थी, तो उन्होंने नीचे मुझे टैग किया और साथ एडविन माया को ये बात कही कि आपको पता है कि ये जो आपका ट्रैक है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हसनैन ने अपने प्रोग्राम में प्ले कर करके मशहूर किया। मुझे उनकी बात पे हंसी भी बड़ी आई और लेकिन उन्होंने ये बात लिखी। अब ऑब्वियसली सिर्फ मैंने तो इसको प्रमोट नहीं किया या इसको प्ले नहीं किया और बहुत सारे लोग जो है उनका फेवरेट ट्रैक है ये, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैंने इस ट्रैक को हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ बैठ कर इसको एडिट किया था और थोड़ा फास्ट किया था, तो लेकिन जब मुझे फीडबैक लोगों का आया कि स्टीरियो लव बहुत अच्छा है BGM, तो इसको मैंने एक बहुत लंबे अरसे तक चलाया, फिर मैंने इसको चेंज कर लिया, तो अभी भी इसकी वाइब जो है वैसी ही है जैसे 2011 में थी, 12 में थी, 13 में, अभी भी ऐसे ही लगता है जैसे वो टाइम जो है वो वापस आ गया।

तो खैर शो को मैंने कैसे सोचा कि मैंने अपने शो को थोड़ा अलग अंदाज में करना है, अलग तरीके से करना है, क्योंकि मैं रेडियो जब मैं 9th 10th में था तो उस टाइम मैं रेडियो सुनता भी था, मैं एक लिसनर था, तो मैं रेडियो सुना करता था, और जब FM 101

चैनल लॉन्च हुआ था तो मैं उस टाइम भी एफएम 101 सुनता था और मैं पार्टिसिपेट भी किया करता था, तो मुझे पता था कि प्रेजेंटर जो है वो कौन प्रेजेंटर कितनी एफर्ट कर रहा है और किस तरह लिसनर्स को एंगेज रख सकता है. तो मैंने जब प्रोग्राम अपने स्टार्ट किए तो उस टाइम मेरा एक गोल था कि मैंने लिसनर्स को एंगेज किस तरह करने हैं अपनी तरफ. तो उसके लिए मैंने किया कि मैंने अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट अपने तरीके से रखा, एक मेरा अपना स्टाइल था बोलने का, एक प्रोग्राम को लेके चलने का. हाँ, मैं गेम शोज मैंने कभी नहीं किए, शायद एक आध बार किए होंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, वैसे ही लिसनर्स के कहने पे कि थोड़ा चेंज कर ले, लेकिन मैंने गेम शोज वैसे कभी भी नहीं किए. सो जो हंसी मजाक हमारे प्रोग्राम में होता था और जितना फीडबैक आप मुझे देते थे मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ. मुझे अभी भी याद है वो टाइम 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मैं उस टाइम को भूल नहीं सकता हूँ जितना फीडबैक आप मुझे देते थे 4471 पे मैसेज करके, फेसबुक के पेजेस के ऊपर, इनफैक्ट के मेरे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फिर लाइव कॉल्स के ऊपर. तो वो बड़ी मेमोरीज हैं और बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जो कि लाइव कॉल में पार्टिसिपेट करते थे जिनका अपना अंदाज हुआ करता था. आई नो कि मुझे कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं रابطہ करते हैं, सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन वो वक्त जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम था जो कि मैं खुद कभी भूल नहीं सकता हूं. और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया. आप मैं ट्रस्ट मी बड़े दिल से आप सबको थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने आप लोग मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे पे ट्रस्ट किया, मुझे सुनते रहे. मुझे हमेशा से इस बात की बड़ी खुशी होती थी कि जब इस्लामाबाद रावलपिंडी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है मुझे सुनते थे और वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, तो इनफैक्ट मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के भी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था. क्योंकि एक टाइम पे हम मोटिवेशनल बातें तो हम करते रहते हैं और शो में हंसी मजाक भी करते रहते हैं, सीरियस बातें भी करते रहते हैं, लेकिन जब मुझे स्टूडेंट्स कहते थे ना कि आपकी वजह से हमारी लाइफ बदली, हालांकि मैं कोई कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई उस्ताद नहीं हूँ, कोई मुझे मतलब टीचर नहीं हूँ मैं, लेकिन स्टिल किसी भी वे में अगर मुझे कभी भी किसी ने कहा है कि मेरी वजह से उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आई है या उनकी लाइफ में कोई चेंज भी आई है, आप यकीन मानो कि मेरा काम हो गया यहाँ पर. और मेरा हमेशा मकसद ये रहा है कि मेरे शो से कभी कोई उदास ना हो, कभी कोई बोर ना हो, कभी किसी की आंखों में आंसू ना आए या किसी की दिल आजारी ना हो. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो मैंने अपने शोज में हमेशा कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, वो मैंने इसलिए रखी हैं कि रखी थी कि उसे शो में डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती थी, लाइक अगर कॉलर आ रहे हैं और उन्होंने प्रोग्राम नहीं सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं फिर उनसे माजत कर लेता था, एक्सक्यूज़ कर लेता था और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चला जाता था. हालांकि देखो जहाँ पर मैंने हमेशा ये प्रोग्राम में बात की, अगर एक प्रेजेंटर है उसके एथिक्स हैं तो लिसनर्स के भी तो है ना, और उनको भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है. तो मैंने हमेशा इस चीज़ को लेके चला हूँ कि जो भी पार्टिसिपेट करे उसे पता हो प्रोग्राम में क्या हो रहा है, बजाय इसके कि आप जस्ट अभी सो के उठे हैं या अभी आप खाना खा के आए, अभी आपने ट्यून इन किया है और आज सादा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो और फिर मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा साथ लेके चला कि किसी को मैसेजेस नहीं देने हैं. आई एम नॉट मैसेंजर, मैं यहाँ पे मैसेजेस कन्वे करने नहीं आता, और लोग करते होंगे. मैंने हमेशा कहा कि मैं नहीं करता, और इनफैक्ट कि आप शो में ये क्रॉस कमेंट जो होते हैं कि यार एक दूसरे को सलाम कर दें नाम लेकर, मैं उसको भी मैंने मना किया कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक दो बार बड़े मसले मसाइल हुए. क्योंकि ऑब्वियसली देखो जब मैं हमेशा से बात करता हूँ, आपका फीडबैक जो है प्रोग्राम में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, आपकी सोच के मुताबिक होना चाहिए जो लिसनर्स हैं वो क्या सोचते हैं. अगर मैंने कोई सवाल आपसे पूछा है या टॉपिक रखा है तो जरा आउट ऑफ द बॉक्स आप उसका जवाब दो, मुझे वो अच्छा लगता है. मुझे पता है कि हम वो स्कूल कॉलेज में जो हमें वो क्वेश्चन लिखा होता है ना, तो उसके नीचे हम वही आंसर लिख रहे होते हैं जो बाकी सारे लिख रहे होते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए कि जो प्रेजेंटर सवाल कर रहा है उसका हम क्या जवाब देंगे. मुझे हमेशा वो लोग अच्छे लगे हैं ख़ास तौर पर जो कि थोड़ा डिफरेंट सा जवाब देते हैं सोच के. उसे देखें पता चलता है कि आप
अपने इर्द गिर्द या अपनी लाइफ को और हर चीज को किस तरह से सोचते हो, ठीक है? और सो इट्स गुड, आपको अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहिए, आप अपनी बात जो है वो करनी चाहिए।

ओके और मैं क्या करता रहूं प्रोग्राम्स में, आज मैं प्रोग्राम में ना वो सारी बातें कर रहा हूं जो मैं अपने पिछले तकरीबन 20 साल के करियर में करता आया हूं। मैंने हमेशा से एक चीज़ सोची थी कि मैं अपने प्रोग्राम में जो पाकिस्तान, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम किया है, स्पेशली जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाऊं। और यकीन माने कि मैंने जिस जिस को भी रابطہ किया, उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनके किसी का नाम नहीं लूंगा। मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही कि उन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना है और वो फिर मेरे प्रोग्राम में भी आए। और मैंने बहुत सारे गेस्ट को यहाँ पर बुलाया और उनके साथ बहुत सारी बातें की। इनफैक्ट कुछ उनमें से लोगों ने जब टीवी पे बैठ के ये बात की कि हसनैन जो है बड़ा स्टॉन्च प्रमोटर है पाकिस्तानी म्यूज़िक का और ये बहुत प्रमोट करता है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब प्राइवेट चैनल्स के ऊपर पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले नहीं होते थे, तो लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी जब ये एक पॉलिसी आई कि आप सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्ले करना है, हम FM 101 इंटरनेशनल से हम पाकिस्तानी टैलेंट को ही प्रमोट करते रहे हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक को ही प्रमोट करते रहे हैं। और हम इस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं कि हमने इस माइक्रोफोन से बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रमोट किया। मैं अभी भी लिसनर्स को पता है बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि सिर्फ मैंने अपने प्रोग्राम में प्ले किए हैं, मैंने खुद वो कभी कहीं पर नहीं सुने। तो अब बहुत सारा ऐसा काम होता है, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको लोग नहीं जानते बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने जो हैं वो गाए हैं, लेकिन वो एक दो गानों के अलावा जो है वो और सॉन्ग्स बना नहीं सके हैं। तो यंग टैलेंट को हमेशा मैंने प्रमोट किया है और मुझे कभी भी किसी ने ये बात नहीं कही कि हमने आपके प्रोग्राम में आने के लिए पैसे मांगने हैं, आपसे पैसे चाहिए। मुझे पिछले दिनों बड़ा अफसोस हुआ, मैं एक आर्टिस्ट को प्रोग्राम में बुलाने का सोच रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये फर्स्ट टाइम था, इट नेवर हैपन, और मैंने उनसे डायरेक्टली बात भी नहीं की। मुझे जब पता चला कि उन्होंने कहा है कि पैसे कितने पे करोगे, ठीक है, हसनैन जो है वो पैसे कितने देगा मुझे बुलाने के, तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि ये वो माइक्रोफोन है, ये वो FM 101 का प्लेटफॉर्म है। आई विश कि उनका मुझे साल पहले, दो साल पहले पता चल जाता मैं उनके ट्रैक्स प्रोग्राम में प्ले ना करता, क्योंकि ऑब्वियसली देखो जहाँ से पाकिस्तानी म्यूज़िक प्ले होता है ना, अगर कोई आर्टिस्ट ये बात कहे कि मुझे पैसे चाहिए वहाँ पर आने के लिए, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर इस स्टूडियो ने पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट को बनाया है, ठीक है, और ये वो आर्टिस्ट हर जगह कहते भी हैं, ये वो स्टूडियो FM 101 का जहाँ पर आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो बैठे रहते थे कि उनके ट्रैक जो हैं वो प्ले हो जाएं। तो आजकल वो आर्टिस्ट जो हैं बड़े वेल नोन हैं, फेमस हैं, लेकिन मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी। आई विश कि मुझे पहले पता चल जाती, मैं उनके कभी भी ट्रैक्स प्ले ना करता। मैंने, हाँ देखो, इस बात से मुझे याद आया, 2009 या 2010 में एक आर्टिस्ट थे, हम ऐसे एक शो कर रहे थे जिसमें हमने 2 घंटे में बहुत सारे आर्टिस्ट को हमने लाइव कॉल पर लिया ईद के ऊपर। मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है पाकिस्तान के, उनको हम बचपन से देखते आए हुए हैं और मुझे ख्वाहिश थी कि यार ये बंदा जो है कभी मेरे प्रोग्राम में आता, लेकिन मेरा बड़ा दिल टूटा उस टाइम। वो अपना नंबर किसी को नहीं देता, मेरी ईमेल्स के ऊपर उनसे बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार मैं बिजी हूँ, मैं, मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है, ऐसा वैसा, दिस एंड दैट। मेरी उनसे 10 दिन तक ईमेल्स के ऊपर बात चलती रही, उन्होंने मेरे से कमिटमेंट की, नंबर उनके पास मेरा था, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको जो है इस टाइम पे मैं, आप मुझे ऑन एयर ले लेना, हमने तो बुलाया भी नहीं था, ऑन एयर ले रहे थे। आप यकीन करें जब शो चल रहा था ना, उन्होंने मेरे से कहा कि यार मैं बिजी हूँ अभी, मुश्किल है यार। अच्छा, थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे भी आ गया, मैंने उनसे पता क्या कहा, मैंने उनसे कहा देखिए रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन मैं FM 101 से आपका कोई ट्रैक प्ले होने नहीं दूंगा अब, मैं तो ये मेरी आपकी कमिटमेंट है, मैंने उन्हें ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। आप यकीन करें मुझे विद इन 5 मिनट्स मुझे उनकी कॉल आई है, कहते हैं सॉरी यार हसनैन, अब काम इतना ज़्यादा होता है कि समटाइम्स हम कोई ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो ऑन एयर लो। लेकिन जब मैंने ऑन एयर लिया, मैंने उनके साथ ठीक से बात नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि देखो, जो जगह आर्टिस्ट को बनाती है, FM 101 एक वो चैनल है जिन्होंने अभी, जिन लोगों को आप देखते हैं ना TV के ऊपर या जो कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, ये FM 101 ने उन लोगों को बनाया है। और ये मैं लिटरली आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर उनके ट्रैक्स
प्ले हुए हैं, आते थे वो खुद बैठते थे, तो अच्छा नहीं लगता ना कोई इस तरह की बात करे। तो एनीवेज ये मैं जस्ट आपको एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा था। तो खैर बहुत सारे आर्टिस्ट जो है यहाँ पर आए और बड़ा अच्छा लगा उन सबके साथ बात कर कर उन सबको। अभी रिसेंटली लास्ट प्रोग्राम मैंने जो किया डोरी खान के साथ, उस टाइम मैंने सोच लिया, डोरी के साथ मेरी कमिटमेंट थी, मेरे दोस्त भी हैं, काफ़ी पुरानी कमिटमेंट थी कि मैंने उनके साथ प्रोग्राम करना है। तो उसके बाद मैंने ये प्लान कर लिया था कि मैंने अभी मैं लास्ट प्रोग्राम करूँगा, और आज वो दिन आ गया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई यार 20 साल गुजर गए, इतना टाइम गुजर गया है। एक टाइम था कि मैं मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब मैं FM 101 के स्टूडियो आया था और आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम जब ऑन एयर हुआ था तो सुमेरा बुखारी थी, वो PTV पे न्यूज़ पढ़ती थी, तो वो प्रोग्राम कर रही थी। तो सर वही शेख साहब ने मुझे एकदम जो है वो माइक ऑन करके उनके साथ बिठा दिया। सो मेरा वो फर्स्ट टाइम था कि मैं फर्स्ट टाइम जो है ऑन एयर गया था, और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। सर ने बहुत ट्रस्ट किया, सर ने मैंने कभी ट्रस्ट तोड़ा भी नहीं, मैम सदर फरानी का भी, उन्होंने बहुत फ्रीडम भी दिया, मुझे खुद रिस्ट्रिक्शंस का पता था, उन्होंने कभी रोका भी नहीं, और कोशिश की कि हमेशा इस माइक्रोफोन को एक अच्छे अंदाज में मैं प्रेजेंट कर सकूं शोज जो है यहाँ से। और ये है कि हाँ समटाइम्स देखो कभी कभार एक जिस तरह मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ, आप लोगों को नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों को नहीं पता कि शायद मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, शायद मेरा अच्छा मूड नहीं है, शायद मैं गुस्से में हूँ, शायद मैं किसी ने कोई बात ऐसी कह दी है, शायद मैं उदास हूँ, शायद किसी की फौतगी हो गई है, शायद कोई भी वजह हो सकती है ना। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की जब मैं इस माइक्रोफोन पर आऊँ तो आप लोगों को पता ना चले कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरी लाइफ में कोई बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हो सकता है ना, लाइफ है, हर एक की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मैंने कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे एंड पे क्या चल रहा है। ठीक है, और इनफैक्ट कि मैंने अभी एक दो सालों में ये बात कहना शुरू कर दी थी कि यार मुझे फील होता है कि यार मुझे काफ़ी दूर से शो करने आना होता है, और तो मैं काफ़ी थक जाता हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सो अब वो टाइम आ गया कि शायद मेरे में वो एनर्जी नहीं है, मेरी बॉडी जो है वो थक जाती है, मेरा दिल करता है कि अभी मैं रेस्ट करूं। और इंसान की लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको ये डिसाइड करना होता है, ये एक डायलॉग भी है और मैं बता भी रहा हूँ, आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किताब जो है बंद करनी है या सफ़ा जो है पलटना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि इंसान को सारी ज़िंदगी कुछ नया करने का सोचना चाहिए। ठीक है, मैंने रेडियो किया, आप लोगों ने बहुत इज्जत दी, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, और यकीन माने कि आज मैं सोचता हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, जितना आप लोगों ने रिस्पांस मुझे दिया है, मैंने भी उतनी एफर्ट की है और मैंने भी उतनी मेहनत की है इस माइक्रोफोन पे और मैंने भी उतना टाइम दिया है। सो मैंने कोशिश की है कि मेरी तरफ से आप लोग खुश रहें, आप लोगों की लाइफ अच्छी रहे, और बहुत सारे लिसनर्स जो हैं, देखो एक रेडियो प्रेजेंटर जो है उसके साथ बहुत सारे लिसनर्स जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, हम ये सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ है। तो हम लोग हमेशा कोशिश होती है कि अगर कोई एडवाइस भी मांग रहा है तो वो अच्छी एडवाइस जो है उसको दी जाए कि दूसरे की लाइफ जो है जिससे अच्छी हो सके। तो ये है कि पता नहीं चला इतना टाइम जो है वो गुजर गया है और ऐसा लगता है अभी जैसे कल की बात है, और लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पिछले दोनों शोज में एक बात कही थी कि हम लोग कहते हैं कि यार लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रही है, लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ भी सेम नहीं होता, सब कुछ बदल गया होता है। आप अभी पिछले महीने को देख लें, पिछले साल को देख लें, और अभी की लाइफ को देख लें, आज के दिन को, प्रेजेंट को देख लें, कितना कुछ आपकी लाइफ में बदल गया है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कुछ चेंज नहीं आ रही लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है। आप मैं जैसे इस किताब
को बंद कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा मेरा रिश्ता जो एफ एम 101 से कभी ख़त्म नहीं होगा, रेडियो पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगा। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं अभी जिस तरह 14th of August थी, पहली अनाउंसमेंट पाकिस्तान की रेडियो पाकिस्तान से हुई थी, ये रेडियो पाकिस्तान है, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। और ये ताल्लुक़ जो है वो हमेशा रहेगा, ये ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल उस टाइम बड़ा टूटा था, मेरे फादर लेट AR जैदी क्रिकेट कमेंटेटर, उन्होंने 35 years रेडियो पाकिस्तान और PDV को दिए। जब उनकी डेथ हुई तो यकीन माने जब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करने आया तो मुझे रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग बहुत डिफरेंट लग रही थी। मुझे मैं उस टाइम हर हर चीज़ को बड़े डिफरेंट अंदाज से देख रहा था, क्योंकि मेरे वालिद ने यहाँ पर 35 years जो हैं वो दिए हैं रेडियो पाकिस्तान को, PTV को टाइम दिया है। और आजकल तो खैर रेडियो की कमेंट्री इतनी नहीं होती है, एक टाइम पर जो कमेंटेटर्स हैं उर्दू और इंग्लिश के, वो प्रॉपर स्पॉन्सर्स के साथ रेडियो पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते थे, मेरे वालिद साहब उनमें से एक थे, और इनफैक्ट PTV की तरफ से भी। तो उस दिन के बाद काफ़ी कुछ मेरी लाइफ में बदल गया था। और कभी कभी कुछ पिक्चर्स मेरे सामने आ जाती थी, मुझे ऐसा लगता था इन्हीं मेरे सामने जो सीट्स पड़ी हुई हैं उसमें मेरे वालिद साहब बैठते थे तो एज ए गेस्ट, तो कभी मुझे वो टाइम याद आता है। सो मैं आपको बताऊं, इस स्टूडियो में FM 101 के स्टूडियो में मैं 1999-2000 से मैं आ रहा था। उस टाइम मैं प्रोग्राम नहीं करता था, मैं बड़ा छोटा था, तो मैं उस टाइम देखता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना फेम क्या होता है, वो मैं देखता था यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लगता था अपने वालिद साहब के साथ जब आता था कभी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी प्रेजेंटर जो है बन सकता हूँ, मैं उस टाइम लिस्टर था। तो खैर और बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत बड़ी जर्नी है 20 years की, और इसमें बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ अच्छा नहीं भी हुआ। लाजमी नहीं है लाइफ में आपके सारी चीज़ें जो वो अच्छी चल रही हों, बहुत कुछ अच्छा नहीं भी होता है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इसी तरह सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। और बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस भी FM 101 से की हैं, और बड़ी डिफरेंट ट्रांसमिशंस भी की हैं, चाहे वो फ्लड की ट्रांसमिशन हो, स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन हो। और कंबाइंड शोज़ में मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे लिसनर्स जो हैं ये बात कहा करते थे आप कंबाइंड शो में इतनी बातें क्यों नहीं करते। बेसिकली कंबाइंड, मैं आपको आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ, कंबाइंड शो में कभी भी मेरा दिल नहीं किया आने का। उसकी रीज़न ये है कि मैं हमेशा से सोलो शो करना चाहता था और मैंने किया। हाँ मैं बैठता ज़रूर था कभी कभी आके, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था कंबाइंड शोज़ में। और मेरा हमेशा से माइंड सेट रहा है कि मैंने सोलो शो करना है, मेरा अपना शो हो जिसमें मैं खुद उस शो को लेके चल सकूँ, उसको प्रेजेंट कर सकूँ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि कंबाइंड शो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं आता था। एनीवेज जी, बातें बहुत सारी हैं आज के प्रोग्राम में, आज आपका मेरा साथ जो है वो बिल्कुल लास्ट टाइम है, और आपका मेरे साथ दो बजे तक रहेगा। अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हैं, और आपको भी प्रोग्राम में शामिल करना है, मैंने आपकी राय भी लेनी है। लेकिन जो जो हमारे लिसनर्स जो हैं वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आपने क्विकली पार्टिसिपेट करना है, छोटी सी बात करनी है, आप एक दो लाइंस में अपनी बात करें और दूसरे कॉलर को आप मौका दें ताकि वो अपनी बात जो है वो कर सकें। तो हमारा नंबर है 0511111111 एंड 0519202540। एक ट्रैक मैं प्रोग्राम में प्ले करूंगा, और फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट करो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर आपके मैसेजेस जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। एक ट्रैक जो कि जिसको मैंने बहुत प्रमोट किया, मैं लिटरली कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनको मैंने इंडिविजुअली बहुत प्रमोट किया है, वो शायद इतना TV पे नज़र नहीं आए, इतना सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आए, बाकी रेडियो चैनल्स पे मुझे सुनने को नहीं मिले। उनमें से एक ट्रैक जो मैं अभी प्ले करने जा रहा हूँ, समी खान, मुझे बड़े अच्छे समी खान के गाने जो लगे थे, जिसमें से एक ट्रैक था याद आऊँगा,

सो यही ट्रैक आज फर्स्ट ट्रैक है प्रोग्राम का. देखो आपको लाइफ में ऐसे काम करने चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी चाहिए कि लोग आपको याद करें आपके जाने के बाद जो है. आई नो कि आज कल लाइफ ऐसी चल रही है, लाइफ इतनी तेज़ हो गई है कि ओवरलैपिंग हो जाती है. हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, माइंड से हमारे लोग जो है वो निकल जाते हैं, नए लोग लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन स्टिल कभी कभी भी ऐसे लोग जिनका आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट हो, जब भी उनकी याद आपको आए, जब भी आपके माइंड में उनकी कोई बात आए, जब उनको कहीं देख लें तो अच्छे अल्फाज में आप उनको याद कर सकें. एनीवेज़ ही ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हसनैन रजा है, आप सुन रहे हैं FM 101 इंटरनेशनल साबा चियो से. सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा, हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद.

0: ओके तो मेरे साहब वेलकम बैक कहते हैं फ्रॉम वन ऑफ इंटरनेशनल में आप समी खान की आवाज में ट्रैक सुन रहे थे और बैकग्राउंड पे आज मैं अपना पुराना बीजीएम ही प्ले करूंगा. एनीवेज सी बातें आपके साथ चल रही हैं आज लास्ट टाइम और अभी मैं वक्त देख रहा हूँ, वक्त भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और ज़िंदगी में भी वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है. आपकी लाइफ कॉल्स जो है मैं कुछ प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा और टू द पॉइंट बात कीजिएगा, बताइएगा कोई एक बात वो मेरे से रिलेटेड, मेरे शो से रिलेटेड जो है एक दो लाइंस में और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें. 051-111-111 एंड 051-920-2540 पर देखते हैं हमारे साथ फर्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जल्दी से कोई बात एक दो लाइंस कहिए और अपना नाम पहले बताइए ताकि हम दूसरे कॉलर की तरफ जाएं. देखें अब ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है इस टाइम बताना, ठीक है.
1: लेकिन मैं अभी तो
0: बहुत शुक्रिया. थैंक यू, अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम.
2: आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से.
0: आमिर फ्रॉम इस्लामाबाद. आमिर क्या कहना चाहेंगे जल्दी से.
2: जी जल्दी से सर, आपको अलविदा कहना चाहता हूँ. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. मैंने म्यूजिक जर्नी आपके कहने से स्टार्ट की थी.
0: ओके.
2: तो छह साल पहले.
0: ओके.
2: ठीक है. और आपने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन की और मेरे साथ मुझे बहुत ज्यादा यानी कि परफॉर्मेंस के लिए मुझे जो जो बातें आप करते रहे ना उसको पिक करता रहा हूँ. ईशान भाई का और आपका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जहाँ भी आप जा रहे हैं आप दुआएं आपके साथ.
0: ओके ओके थैंक यू. ठीक है. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
3: सोनिया बात कर रही.
0: जी सोनिया कहाँ से बात करी, क्या कहेंगी जल्दी से.
3: कहाँ से करी, इस्लामाबाद से करी. बस ठीक है, जाइए जहाँ भी जाइए आपको अपने मकसद में कामयाब करे और बस हमें याद करते रहिएगा हम आपको. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.
0: चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.
4: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम सलाम.
4: अनीला फ्रॉम लाहौर.
0: जी अनीला क्या कहना चाहेंगी.
4: कहना ये चाहूंगी कि पहली बात तो ये कहूंगी कि अब क्या रुलाओगे इतना मॉड किस्म का गाना, वो भी इतना सैड.
0: नहीं मैं मैंने मैंने तो कोई उदास बात ही नहीं की प्रोग्राम में. मैं ना उस टेम्पो का प्रोग्राम कर रहा हूँ.
4: बहुत हैप्पी हैप्पी से.
0: मैं ना उस प्रोग्राम का टेम्पो कर रहा हूँ, ना मैं किसी को रुलाना चाहता हूँ, ना किसी को उदास करना चाहता
4: हूँ. ऐसा था ना मैं याद आऊंगा.
0: हाँ तो याद तो फिर आती है ना. जो देखो जो लोग.
4: हाँ नहीं नहीं हम आपको बहुत मिस करेंगे. आप भी हमें याद करेंगे, हम भी आपको बहुत याद करेंगे. आप भूल भी जाएंगे, हम भी आपको याद करेंगे. आप जहाँ भी जाएं बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए. खुश रहें और बहुत अच्छे से किसी ना किसी और तरह हमें फिर से मिल जाए. थैंक यू, टेक केयर.
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज. देखो उसका सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया के ऊपर इजीली आप मुझे ढूंढ सकते हो, मैं आपको मिल जाऊंगा. अस्सलाम वालेकुम.
5: अस्सलाम वालेकुम सर.
0: वालेकुम सलाम.
5: सर जी बात बस इस बात पे खत्म करेंगे. बातें तो बहुत है लेकिन जिस जगह पे जा रहे हो, जहाँ भी, जिस मिट्टी, जिस कोने पे, अल्लाह पाक लंबी उम्र दराज करे और खुश रखे.
0: अच्छा नाम क्या है आपका, बोल बात कौन करे.
5: मेरा असद नाम है, कोहाट का रहने वाले हूँ. लाहौर में ड्यूटी कर रहा हूँ.
0: अच्छा लाहौर में ड्यूटी.
5: प्रोग्राम सुना लेकिन आपका सुना, आपसे सुन लिया. आखिरी प्रोग्राम है. जहाँ भी रहे खुश रहे, लंबी उम्र दराज अल्लाह करे आप.
0: थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.
5: ओके.
0: अस्सलाम वालेकुम. All right, जी 051111111 and 051920254 0. Assalamu alaikum. Hello. वालेकुम सलाम।
6: मैं लाहौर से शालिका बात कर रही हूँ। सुनैन भाई कैसे आप?
0: जी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं कैसा हूँ?
6: सुनैन भाई आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, हम आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे।
0: अच्छा
6: आज हम भी रहे खुश रहे, आप हमें बहुत ज्यादा याद आओगे, बहुत ज्यादा सब आरजे की अपनी जगह, आपकी अपनी जगह होगी।
0: चलो थैंक यू वेरी मच, बस दुआ में याद रखना। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
7: मरियम रानी से आजाद कश्मीर।
0: जी मरियम क्या कहना चाहेंगी आप?
7: सबसे पहले तो आपको यही कहूंगी कि हंसते मुस्कुराते रहें और खुशी खुशी जाए जहां भी रहें। और मुझे आपके शो की एक बात और आपकी एक बात अच्छी लगी कि आपने सब लिसनर को ना एकल रखा था, चाहे आपके वो फैन हो ना हो, लेकिन आपने हमेशा सबसे अच्छे से बात की है, एक एक इक्वल बात की है। जी मुझे आपके शो की और आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी।
0: चलो कोशिश की है मैंने सबको इक्वल ही लेके चलूं मैं।
7: जी तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, जहाँ रहे खुश रहे हंसते मुस्कुराते रहे।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
7: अल्लाह हाफिज।
0: अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम।
7: आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको अपने लिसनर्स याद रहते हैं, तो मुझे पूछना था कि आपको मैं याद है।
0: हाँ आवाज जानी पहचानी लग रही है, अब मेरे ज़हन में दो तीन नाम आ रहे हैं, लेकिन आप खुद बता दें।
7: निम्रा बात कर रही हूँ झेलम से।
0: ओ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब तो पुराने स्टाइल में।
7: मुझे तो भूल गया है।
0: अच्छा भूल गया है। निम्रा कैसी है, आप ठीक ठाक है?
7: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मेरे से देखो, मेरे से नहीं पूछना, आपको पता ना मुझे सबसे इरिटेट करता है सवाल जो है। अच्छा क्या क्या कहना चाहेंगे?
7: मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको शो सुना था 2012 में, एंड इट्स बीन 14 इयर्स नाउ। और फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको शो सुना था, तब मेरी सिस्टर फातिमा ने मुझे फोर्स किया था कि मैं आपको शो सुनूं, और वो मुझे फोर्स करती थी आपके लिए कि मैं आपके शो में कॉल करूं।
0: ओके।
7: और उनकी अगर मैं डायरी आज भी देखती हूँ, तो उसमें आपके लिए बहुत सी चीजें लिखी हैं कि आप जब शो करते थे, आप शो में क्या बातें करते थे, आपके लिए बहुत सी चीजें। तो बेसिकली बताने का ये मकसद है कि यू वर द रीजन ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैनी पीपल। और वो जो एक टाइम था आपके साथ, वो एक बेस्ट टाइम था, हम बहुत से लोगों के लिए बेस्ट टाइम था। तो वो उसकी वजह से जो आपके साथ एक कनेक्शन है, वो एक इमोशनल कनेक्शन बन गया, वो हमेशा रहेगा। वो आज भी इतने 14 ईयर्स के बाद भी मैं आपके शो में कॉल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि आपका लास्ट शो है, आप काफी इमोशनल हो गई थी। तो वो उसी एक इमोशनल कनेक्शन की वजह से जो आपके साथ बन गया, आपकी आवाज के साथ और आपके शो के साथ। तो मैं कहूंगी कि हम आपको बहुत मिस करेंगे।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू निम्रा, आप सुनती रही हो, पार्टिसिपेट करती रही हो, शो का हिस्सा रही हो, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
8: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
8: जी भाई मैं इस्लामाबाद से रिमशा।
0: रिमशा जी, रिमशा क्या कहना चाहेंगी?
8: भाई काफी दिनों के बाद मैंने शो ओपन आपका सुनना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने आज ही आपका शो सुनना स्टार्ट किया। और पहले मैं काफी जब से सुन रही थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं आपको सुनती थी। आप कहते थे कि मैं चला जाऊंगा शो छोड़ के, लेकिन अभी मैंने आपको सुना है तो आप बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे जो आपके शो की सही बात और सबसे अच्छी बात जो लगती थी ना, वो ये भी लगती थी कि आप कहते थे कि जब भी कोई कॉल आए तो सिर्फ वो आप टॉपिक पे बात करें ताकि दूसरों को टाइम मिले। मुझे आपकी ये शो की बहुत ही अच्छी बात लगी थी। तो एक मजाकिया बात ये है, जब आप बोलते थे कि अगर चाय पीने को दिल कर रहे, कॉफी पीने को दिल कर रहे, अगर मैं नहीं पी सकता तो आप पीना पिए।
0: हाँ ना, तो मैं नहीं पी सकता तो आप क्यों पियो?
8: बिल्कुल, मुझे ये बात हमेशा आपकी याद रहेगी। आप यकीन करेंगे, मैं बचपन ना ऐसा होता है कि जब गैस नहीं होती ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, वो कहते नहीं मेरा मन कर रहा है, मैंने कहा जब मैं नहीं पी सकती तो आप भी ना पिए।
0: बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहा करो।
8: जी बिल्कुल, और आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहे जहाँ भी आप जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।
0: मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ।
8: आपको बहुत ज्यादा मिस किया जाएगा।
0: चलो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।
8: ओके,
0: अस्सलाम वालेकुम। हेलो। جی السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں کومل بات کر رہی ہوں.
0: جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟
9: میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میری لائف میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتی, وہ آپ ہو. اور بالکل میری لائف میں آپ نے سوچنے کا نظریہ بالکل آپ کی وجہ سے چینج ہوا. اور اللہ آپ کو ہمیشہ آباد یاد رکھے, خوش رکھے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے, اور یاد رکھیے گا ہمیشہ.
0: تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.
9: اوکے
0: اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام.
10: میں عاطف عباس کی بات کر رہا ہوں.
0: جی عاطف کیا کہنا چاہو گے؟
10: کیسے سر؟ خیریت سے اللہ کا شکر ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. سر جا تو رہے ہیں آپ, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا. آپ نے کہا تھا بہت ساری باتیں کروں گا, پچھلے ہفتے بھی کہا تھا, اور باتیں تو آپ نے ابھی کی نہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں؟ یہاں سے تو ابھی جا رہے ہیں, لیکن کہاں جا رہے ہیں آپ نے بتایا نہیں ہے.
0: میں نے تو کہیں جانے کی بات کی ہی نہیں ہے
10: یار. کیا نا لاسٹ شو آج, اور کیسے؟
0: نہیں میں نے تو ابھی جو ایک گھنٹہ اتنی باتیں کی ہیں اس میں نے بتایا کہ میں ریڈیو کیوں چھوڑ رہا ہوں.
10: اچھا آپ نے بتا دیا ہے.
0: ہاں سنا نہیں نا آپ نے؟
10: نہیں سنا نا یار.
0: بس
10: چل جہاں بھی جائیں آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, اور ہمیں یاد رکھیں. ہم تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے.
0: تھینک یو سو مچ. بس دعا میں یاد رکھنا.
10: چلیں بہت شکریہ. دو بہت ایسا آپ کو آج موقع مل جائے گا.
0: اوکے اوکے اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو.
11: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
11: حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟
0: زبردست.
11: عبدالنور ہاشمی ریواز گارڈن لاہور.
0: اوئے ہوئے.
11: پہلے تو آپ کو
0: ہاشمی بھائی
11: کہیں گے.
0: ہاں
11: اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے. تو میرا ریڈیو سے تعلق اتنا زیادہ تو نہیں ہے, مجھے 5 سال ہو گئے ہیں. آپ کا شو بھی میں اکثر سنتا تھا, تو کافی کچھ سیکھا آپ سے, جنرل نالج پہ, حالات حاضرہ پہ,
0: جنرل نالج
11: کیریئر پلاننگ پہ. تو اللہ تعالیٰ آپ اس کی جزائے خیر دے.
0: اچھا
11: میں مجھ سے بات کروں گا اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا گوں. آپ کے لیے ایک شعر نظر کروں گا اور اجازت چاہوں گا. پچھڑا کچھ اس ادا سے کہ ساری رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو اداس کر گیا. اللہ حافظ.
0: تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا ابھی انہوں نے شعر سنایا ہے. اچھا میں نے کبھی بھی نا اپنے پروگرام میں, میں ویسے ہاشمی صاحب میں ویسے بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی بھی اپنے پروگرام میں پوئٹری کو شامل نہیں کیا, اور مجھے بڑی اسپیسیفک پوئٹری جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے, تو میں نے کبھی کسی کو پروگرام میں شامل بھی نہیں کرنے دی. سو مجھے ہمیشہ سے یہ لگا کہ شاید میرے پروگرام وہ فارمیٹ نہیں ہے پوئٹری کا کہ میں پوئٹری جو ہے وہ پروگرام میں شامل کروں. میں کوئی جب کوئی کہتا ہے نا میں شعر اشعار سنا دوں, تو میں نے ہمیشہ اس کو روکا, نہیں یار میرے پروگرام میں نہیں, 2 سے 4 میں کر لینا. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ مانور. تھوڑا اونچا بولیے گا. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس جانا تو ہے.
9: لاسٹ شو آپ کا.
0: جی جی کوئی بات کرنا چاہیں گی؟
9: انا سنتے تو رہتی تھی لیکن میں نے کال فرسٹ ٹائم کی ہے.
0: اوکے
9: آج فرسٹ ٹائم کال کی ہے, اور آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم ان کی طاقت ہم رہے خوش رہے بس آباد رہے.
0: اوکے تھینک یو. تھینک یو.
9: تھینک یو.
0: اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو.
12: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ہلو.
12: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
12: حسنین بھائی میں اقرا اشار بات کر رہی ہوں.
0: جی اقرا کہاں سے بات کر رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟
12: میں کشمیر سے ہوں بیسیکلی, اور بہت عرصے بعد آپ کا شو سنا, بلکہ لاسٹ, اور سائلنٹ لسنر تھی تو سوچا آج کر لو. خوش رہیں, آباد رہیں, اور اللہ حافظ.
0: چلو تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
0: حق نواز فرام راول پنڈی. کیا کہنا چاہو گے؟
13: हसन भाई आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहूंगा। मैंने आपको 2023 में सुनना स्टार्ट किया था, तो सारे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे। आप बिल्कुल मतलब जो है ना अच्छे प्रोग्राम करके गए हैं, जा रहे हैं, और आपने अपना जो रूल्स रखा है ना उसे कभी हटे नहीं है। बहुत अच्छा ये आपने शो किया है, मतलब जितने भी FM 101 पे शो किया आपके, तो कहना ये चाहूंगा कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आइंदा आने वाली जिंदगी में भी आपको इसी तरह अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे, बहुत अच्छी आबदाद वसूल करके FM 101 से लेके जा रहे हैं। तो आगे भी आपके लिए दुआएं कि आपकी लाइफ में आने वाली जितने भी लाइफ आपकी उसमें इसी तरह आपको कामयाबियां समेटती जाएं, और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत का साया नसीब करवाए।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके पास, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। नहीं ब्रदर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आई थिंक लाइन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। आप दोबारा डायल कर सकते हो 0511111 एंड 0519202540। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, यासिर फ्रॉम पिशावर, क्या कहना चाहोगे? चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, बहुत सारे मैसेज जो है मेरे पास फेसबुक पर और 4471 पर आ रहे हैं, और जितने मैसेज हैं मैं सोच रहा हूँ कि इनको मैं प्रोग्राम में कैसे शामिल करूँगा, लेकिन अभी कुछ देर में मैं कोशिश करता हूँ कि जितने आपके मैसेज जिसमें कोई बात हुई हुई है वो मैं लाजमी प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। मैंने अच्छा एक और बात है, मैंने अपने प्रोग्राम में हमेशा क्या चीज़ ले कर चला हूँ कि अगर जो लिसनर्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, मैं हमेशा आपसे कहता रहा कि अपने मैसेज में ना कोई बात लिख के भेजें, बजाय इसके कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। उसकी वजह यह है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर ही रहे हो तो उसमें कोई ना कोई बात तो लिखो ना, चाहे वो टॉपिक के हवाले से हो, चाहे कोई आपकी ज़िंदगी में कोई बात चल रही हो, या आप कुछ सोच रहे हो उसके हवाले से आप कोई बात कर सकते हो। मैंने हमेशा मैं नाम नहीं पढ़ता उन लोगों के जो सिर्फ सलाम हाय हाउ आर यू ऐसे करते हैं। मैं मतलब देख लेता हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम में शामिल सिर्फ उन लोगों को करता हूँ, क्योंकि फिर वो रह जाते हैं, फिर उनके मैसेज में शामिल नहीं हो पाते जिन्होंने कोई ना कोई जो है वो मैसेज के अंदर बात लिखी होती है। तो अभी भी मेरे बहुत सारे मैसेजेस हैं, अब इसमें तारीफ़ें भी लिखी हुई हैं और बातें भी लिखी हुई हैं। आपको पता कि मैं प्रोग्राम में तारीफ़ें अपनी मैं पढ़ता नहीं हूँ, हमेशा से आदत ऐसी रही है। और अच्छा, अफीरा ने पिशावर से पार्टिसिपेट किया है, आपने कहा है कि हुसैन भाई लास्ट शो को यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा। मेरी एक लिस्टर हैं सरवत, वो पिछले कई टाइम से प्रोग्राम्स जो हैं वो रिकॉर्ड करती हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, और वो यूट्यूब पे अपलोड कर देती हैं, तो वो लाजमी इनको शो को अपलोड कर देंगे। आई थिंक उन्होंने लास्ट प्रोग्राम भी किया था अपलोड। अच्छा, इसके अलावा नहीं, मैंने बिल्कुल कोई उदास नहीं किया है। और मोना मुल्तान से पार्टिसिपेट करी हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम सुनती रही हो, पार्टिसिपेट करती रही हो, अपना फीडबैक देती रही हो। और अच्छा, इसके अलावा कुछ मैसेज मैं और शामिल कर लेता हूँ। थैंक यू यार, आप लोगों ने जितने भी मैसेज सेंड किए हैं बहुत शुक्रिया आपका। सारा फारूक कुमार से पार्टिसिपेट करी है, आपने कहा कि दिस माइट ऑल्सो बी माई लास्ट टाइम लिसनिंग टू द रेडियो एज आई ओनली यूज टू लिसन टू योर शो। एनी वे, थैंक यू सो मच सारा, आप बहुत टाइम से शो सुन रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें। अच्छा, विकास पूछ रहे हैं आप फेसबुक पर वीक में एक दफ़ा ऑनलाइन ज़रूर आना। यार ऑनलाइन तो मैं आता हूँ, और मैं देखो कुछ पॉलिसी ऐसी एग्जैक्ट मैंने कभी बताया कि मेरे आईडीज़ क्या हैं, लेकिन आज मेरा लास्ट शो है, मैं बताऊँगा। आप मुझे फेसबुक पर सर्च कर सकते हो www.facebook.com/hasnainraza101, मेरा पेज है www.facebook.com/facebook.com/rjhasnainraza मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर आप मुझे सर्च कर सकते हो, मेरे ईमेल एड्रेस है djhasnain@hotmail.com, या आप मेरा नाम लिखोगे आपको मैं मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे hasnainrazav1 मेरा आईडी है, आप मुझे सर्च कर सकते हो, और स्नैपचैट पे भी ऐसी है। तुम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप जस्ट मेरा नाम लिखोगे आपको मैं मिल जाऊंगा। सो फेसबुक पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक्टिव रहता हूँ, और अभी मेरा इरादा है कि मैं एक्टिव होऊंगा। सो आप मुझे फॉलो कर लो, अगर फॉलो नहीं किया हुआ तो आपको मजीद जो भी मैं कह रहा हूँ आपको मिल जाएगा। वकास हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, मैंने रेडियो पर आपकी आवाज़ सुनी थी, फेब 2016-17 की बात है, ईद की, और बहुत शुक्रिया वकास। अच्छा, फिर एक और वकास खान है, आप 2009 से सुन रहे थे, आपने कहा कि बचपन की यादें हैं आपके शो से। अच्छा, गुल हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है, आपने कहा समझ नहीं आ रही क्या बात करूं मैं, और चलो आपने पार्टिसिपेट किया। कमर हमारे साथ लंदन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू कमर। फिर खिजर कुरेशी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने कहा कि 20 साल प्लस डेडिकेशन, आई एम लिसनिंग यू टू योर फाइनल शो फ्रॉम क्लिफ्टन पार्क US आफ्टर 12 इयर्स ब्रेक, और स्टीव लव का आपने कहा कि वो 2011-14 वाली यादें तो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, ऐसे ही यार, और खुश रहो, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। मलिक साहब हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू आपका। फिर अच्छा जी, फातिमा शाह, आप देखें कि मैं याद आऊँगा, नहीं मैंने रुलाने के लिए यकीन करें प्ले नहीं किया, लेकिन मुझे सॉन्ग खुद बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा फिर जी, कमर हमारे साथ हैं, 2009 से आप हमें सुन रहे हो, और आपने कहा कि इफ़ यू वांट टू गिव ओनली वन लास्ट एडवाइस टू योर 2009 लिसनर्स, देन व्हाट इट विल बी। यार एडवाइस मैं क्या दूं यार, मैं भी प्रोग्राम के एंड में इसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। जन्नत हमारे साथ पार्टिसिपेट करी हैं, अच्छा आपने क्रिकेट शो की बात की है, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल की, उस टाइम से आप सुन रही हो। फिर अक्सा है हमारे साथ, आपने कहा आज पंजाबी में थोड़ी सी बात कीजिएगा। अच्छा अभी करते हैं पंजाबी में बात, अभी तुहाडी कॉल जिहड़ी हैगी ने ना वो प्रोग्राम में शामिल कर देने, तो मेरी पंजाबी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बोल लेना कभी कभी बोल लेना। अच्छा अच्छा हमारे साथ आरजे ज़ीशान दुरानी है, ज़ीशान बहुत पुराने मोनी जो हैं हमारे लिस्टर भी हैं, अभी FM 101 का हिस्सा भी हैं, थैंक यू यार ज़ीशान। उमारा नाज हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है, आपने कहा स्टीव लव की अलग ही वाइब थी 2013-19 तक, ये तो है फिर, और चलो शुक्रिया आपने जो फीडबैक दिया। फातिमा शाह 2010 से आप सुन रही हो, ठीक है, साइलेंट लिस्टर हो, आपने पार्टिसिपेट किया बताया, बहुत शुक्रिया आपका। साइन तबसुम, थैंक यू सो मच ब्रदर। फिर अक्सर कह रही है आई डोंट नो व्हाई आज आप में वो पुराने वाला पैशन और एनर्जी वाला शो लग रहा है। नहीं नहीं, आज लास्ट शो है ना, तो इसलिए आपको शायद लग रहा है मेरे में एनर्जी है। बेसिकली देखो यार, मैं आकर कोई उदास बातें करके आपको उदास करके जाना नहीं चाहता ना, अच्छी बात नहीं है। तो खुशबख्त हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच खुशबख्त। फिर फातिमा नूरुल्लैन है, आप 2018 से सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, और बहुत सारे मैसेज हैं, उनको मैं देखता हूँ, अभी टाइम मिला तो मैं प्रोग्राम में शामिल करता रहूँगा। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो www.facebook.com/fm101channelpakistan, 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो, लाइव कॉल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 0511111 एंड 0519202540 पर। अभी मुझे एक ट्रैक प्ले करना है, उसके बाद फिर मजीद आपके साथ बातें करेंगे और आपके साथ लाइव कॉल्स पे आपकी कॉल जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखो मैंने अपने पूरे करियर में इस तरह के ट्रैक्स जो है कम ही प्ले किए हैं, लेकिन आज पता नहीं मेरा दिल कर रहा है, ठीक है शो में एनर्जी है, लेकिन मैं तीन ही ट्रैक्स प्ले करूँगा और तीनों में कुछ ना कुछ होगा। तो नेक्स्ट ट्रैक जो मैंने आपके लिए क्यों किया हुआ है ना, ये है फ़ाखिर की आवाज़ में, और ये ट्रैक जो है मुझे अभी हम वाइब की बात कर रहे हैं ना, इस ट्रैक में अलग ही वाइब है। आप इस ट्रैक को कभी सुनो ना आंखें बंद करके, तो आपको ये ट्रैक बड़ा अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ फ़ाखिर के बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि बहुत टची सॉन्ग्स हैं, और अभी जो ट्रैक मैं प्ले कर रहा हूँ, काश हम जुदा ना होते, Oh, oh, oh. ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हुसैन रजा है, सुनते रहिएगा FM 101 इंटरनेशनल सामा स्टूडियो से.

0: चाहता है
1: हम पास हो या ना हो हमें प्यार से बुलाना और काफ़ी सेंटी ट्रैक है लेकिन सेंटी हो रहा नहीं है ये तो हमने शो का रूल रखा हुआ है ना. एनीवेज़ ये कॉलर्स हम प्रोग्राम में शामिल करें 0511111 0519202540. सो देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लेट्स चेक इट आउट. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
2: जी? हसन भाई विकास बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से. तबीयत कैसी, अंदाज कैसे, मिजाज कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक ठाक. जल्दी से बोले क्या कहना चाहेंगे?
2: आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है और आपने इतना सर्व किया रेडियो के लिए और आज भी आपकी एनर्जी वैसी की वैसी है और बेहतरीन आपने की अपनी तरफ से और आपको जो है वो लोग सुनना चाहते हैं मजीद और इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी आप कहीं पर भी अगर प्रोग्राम करें तो यकीनन इन्फॉर्म करते रहें ताकि लोग आपको मजीद इंजॉय करें.
1: चलो थैंक यू वेरी मच विकास. अल्लाह हाफिज़. अच्छा अभी विकास ने एक बात की कि कहीं भी प्रोग्राम करते रहे. मैं एक आपको बात बताऊं, मेरे पास बहुत सारे चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया. ये मैं 2010-11-12 की बात कर रहा हूँ मैं, और लेकिन मैंने स्विच नहीं किया और मैंने आज तक स्विच FM 101 से किया भी नहीं. और मैं अभी किसी और रेडियो चैनल पे जाकर प्रोग्राम करूंगा भी नहीं. मैं अभी रेडियो कर ही नहीं रहा और मैंने हमेशा FM 101 के साथ रहा हूँ. FM 101 पे ही प्रोग्राम किया है और FM 101 ही मेरी पहचान है. एनीवेज़ ये कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
3: हेलो अस्सलाम
1: वालेकुम. अस्सलाम
3: मोना फ्रॉम मुल्तान.
1: जी मोना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं. क्या कहना चाहेंगी?
3: बस ये कहना चाहूंगी कि आपको अलविदा करना बहुत पेनफुल है और आपके लिए बेस्ट विशेस. और आपके शो की सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने हमेशा लिसनर्स को मौका दिया, मोटिवेट किया और जितने आपके टॉपिक्स होते थे उस पर बात की और तनकीद को भी आपने अच्छे से सुना है. क्योंकि आपने शो में तनकीद किया है आपको जो भी जितना भी कहा है और अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ. और जहाँ रहें खुश रहें. बेस्ट ऑफ लक.
1: चलो थैंक यू. थैंक यू अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. जी कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है?
4: इकरा फ्रॉम चकवाल.
1: इकरा फ्रॉम चकवाल. जी इकरा क्या कहना चाहेंगी?
4: सी वेल मैंने आपका शो फॉर द फर्स्ट टाइम सुना था मिड ऑफ जनवरी 2012 में और उसके बाद काफी टाइम तक आपकी कमिटेड और रेगुलर लिसनर और कॉलर रही. देन आई गॉट डिसअपीयर्ड और आज फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने कॉल की है और आप फर्स्ट आवर से हैं जिनको मैंने फर्स्ट टाइम सुना रेडियो पे. आई लाइक योर शो और उसके बाद फिर मैंने रेडियो सुनना स्टार्ट कर दिया.
1: ओके
4: हमेशा आपके शो से पॉजिटिविटी मिली, मोटिवेशन मिली, हमेशा आपने मोटिवेट किया और मुझे कभी लगा कि लाइक मुझे पीस ऑफ एडवाइस चाहिए लाइफ में तो आई शेयर दैट थिंग विद यू और मुझे पीस ऑफ एडवाइस मिला. आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट एंड यू आर द बेस्ट आरजे एंड यू आर माय मेंटर. आप सिर्फ मेरे मेंटर नहीं, आई गेस आप बहुत सारे लिसनर्स के लिए मेंटर हैं.
1: थैंक यू वेरी मच इकरा. थैंक यू. थैंक यू.

0: Israel.
1: Thank you so much, or Rocky, it looks like best wishes, and I'll have good to see you in your success day.
0: Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz.
1: Thank you so much. Allah Hafiz.
0: Allah Hafiz. Assalamu alaikum.
2: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Ji, Islam bhai, kaise hain?
0: Ji, abhi ye chhod de, main kaise hu, jaldi bol de, kya kehna chahte hain?
2: Acha, main ye kehna chahti hu ki doodh pe aayi hai malai. Aadhi raat ka waqt tha jab bahut se pehlo se juda hue Islam bhai.
0: Okay.
2: भाई मैंने पहली दफा कॉल की है और मैं बहुत पुराना आपको सुन रही हूँ.
0: ओके,
2: आपको खुश रखें, मगर हमें बहुत ज्यादा अफसोस भी हो रहा है आप जा रहे हैं.
0: चले, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
2: ठीक है जी, अल्लाह आपको खुश रखें, जा भी रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखें. अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.
3: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम. मैं कनाडा से नाहिद बात कर रही हूँ.
0: जी नाहिद, क्या कहना चाहेंगे?
3: मैंने आपसे दो बातें करनी है. आपकी मैं खामोश सामे रही हूँ बहुत देर.
0: Okay.
3: एक दफा आपसे पहले बात हुई है.
0: और
3: वो भी इस वजह से कि आप छोड़ के जा रहे हैं, तब
0: Okay.
3: भी मैंने कॉल की. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चंद लोग जिनकी कॉल मिल जाती है या कॉल मिला लेते हैं, वही नहीं, बहुत से मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी आपको कॉल नहीं किया होगा, कभी मैसेज नहीं किया होगा, लेकिन वो पूरे टाइम ध्यान से आपको सुनते रहे हैं. और मैं उनकी रिप्रेजेंट हूँ, मैं उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत कर रही हूँ कि आपके लिए बहुत सी आसानियां और कामयाबियां हों. और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब कोई बंदा कहाँ किसी जगह से जाना चाहता है, ये क्वेश्चन है मेरा, आप इसका जवाब कॉल पे देना चाहें या बाद में देना चाहें, जैसे आपकी मर्जी. तो जब बंदा कहाँ से किसी जगह से जाता है, तो फिर बंदा ये सोचता है कि मेरे बात वो समझते हैं कि जैसे हम घर से जाते हैं, चलिए मैं घर से कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि एक जिम्मेदार शख्स है जो घर को संभालेगा. आप ये बात समझते हैं कि आपकी जगह कौन सा बंदा है जो लेगा? हम देखेंगे, सुनेंगे कि कौन आपकी जगह लेते हैं. ये मेरा क्वेश्चन.
0: चलो, ये तो देखिए मैनेजमेंट का काम है, और जो भी आएगा अच्छा होगा. ठीक है,
3: ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं 15 से सुन रही हूँ और जो लोग गए हैं उनकी जगह पे कोई भी वैसा नहीं आया.
0: चलिए, ये एक अलग टॉपिक है, तो
3: जी इसमें बस ये मेरा सवाल था. आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं, आपकी कामयाबियों के लिए बहुत सी दुआएं. आप जहाँ जाएं खुश रहें, शादाबाद रहें और कामयाबियां समेटें.
0: थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम. अदनान भाई, इरफान मलिक बात कर रहा हूँ, मंडी वाले
0: से. जी इरफान, क्या कहोगे?
4: अरे मैं ये कहूँगा कि 3 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ.
0: ओके.
4: मतलब मैं एक बीमार था, मतलब रात को मुझे नींद नहीं आती थी. आपके शो में यकीन करें इतनी अच्छी, कभी कभी फनी बातें होती थी, कभी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता था. तो एक मेरा दोस्त था मुल्तान का, तो वो भी जब मुझसे जुदा हुआ था ना, तो इस तरह ना मेरे दिल को एक ना खींचती पड़ी थी. लेकिन मुझे आज फिर ऐसा लग रहा है कि यार सहन भाई भी हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो ये मुझसे जुदा हुआ है ना, परत के मुझसे वो मिले ही नहीं.
0: Okay.
4: तो मैं तो सादा मोबाइल भी यूज करता हूँ, तो चले ढेर सारी दुआओं के साथ आपको रुख्सत करता हूँ. आपकी वजह से मेरी बहुत ऐसी उदास रातें थी जो मतलब ना बहुत खुशी से गुजरी. तो इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला जिस तरह आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे, अल्लाह ताला आपको भी तमाम मुस्कुराहटें नसीब फरमाए.
0: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू इरफान. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट जी, इरफान हमारे साथ थे, और बहुत सारे लिसनर्स जो हैं अभी लिसनर ने बात की कि खामोश लिसनर, साइलेंट लिसनर्स भी देखो शो का हिस्सा होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते. हालांकि मैंने हमेशा उनको इनक्रेज किया कि प्रोग्राम में किसी ना किसी बहाने से पार्टिसिपेट करो, चाहे वो मैसेजेस हों, चाहे वो कॉल्स हों. अच्छा, मेरे से एक गिला बहुत सारे लिसनर्स को रहा है. मैंने मैंने ऑफ़ एयर कॉल्स शायद रेयर ही ली होंगी, मैं ऑफ़ एयर कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती जब शो ख़त्म होता है। मेरी कभी भी आदत नहीं रही कि मैं ऑफ़ एयर कॉल्स हूँ। शायद वो बड़े लकी लिसनर्स होंगे जिनकी मैंने एक एक दो तीन शायद ऑफ़ एयर कॉल्स मैंने ली होंगी, लेकिन मैं शो अपना मैंने किया और शो ख़त्म हुआ और मैं साथ ही चला गया। तो ये गिला मेरे से रहा है लोगों को कि आप ऑफ़ एयर कॉल्स जो है वो नहीं लेते हैं। एनीवेज यू कॉलर्स, अभी मैं वक्त भी देख रहा हूँ, वक्त भी थोड़ा कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा।
5: ये लाहौर से इरम बात कर रही हूँ भाई, कैसे हैं आप?
0: इरम बात कर रही हैं लाहौर से, क्या कहेंगी आप?
5: भाई मुझे पहले ये कहना है कि पहले कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती। आज मैंने फर्स्ट दफा आपका जो प्रोग्राम है ना वो शुरू से सुना और बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब आपका विजन बहुत अच्छा था, वो विजन मैंने पहले दफा सुना, जब विजन लगा तो मुझे लगा शायद आप नहीं आने वाले।
0: ओके
5: तो फिर जब मैंने उस विजन को पूरा सुना तो आपने जब कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह का आप आ गए, चलो लास्ट प्रोग्राम में भी आपकी आवाज सुनने को मिल गई। तो माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छा प्रोग्राम। और भाई हम नाम नहीं लेंगे, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, और नाम ही लेंगे। एक प्रोग्राम था, हमें उसका इंतजार था, वो नहीं आया, उसकी जगह कोई और आ गया, तो उसने वो मजा नहीं था जो उसने वो प्रोग्राम करता था ना।
0: ठीक है,
5: उसने उसने अपने तरीके का प्रोग्राम।
0: ओके ओके ठीक है, चले
5: जी,
0: चले, थैंक यू।
5: और जी सर सलामत रहे, अल्लाह
0: आपको खुश रखे,
5: आबाद रखे, जहां भी
0: रहे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
6: जी, हसन भाई माजर चाहूंगा, वकास दोबारा से बात करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि होते हैं ना कुछ स्पेशल इवेंट, होते हैं ईद का होता है, कोई बर्थडे स्पेशल होता है, तो उन प्रोग्राम्स में आपकी क्या क्या इरादे हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? और दूसरा ये कि रेडियो के हवाले से मेरा सवाल नहीं था, मेरा था टीवी के हवाले से कि आप रेडियो को खैराबाद कहने के बाद आगे क्या प्लान है, मतलब टीवी पे आपको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है?
0: यू नेवर नो, हो सकता है, अभी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। सोशल मीडिया पे तो मैं एक्टिव हूंगा, लाजमी हूंगा, तो लेट्स सी।
6: और एक एक मेरी तरफ से शेर है, वो कहते हैं ना दो भाई दोनों तबाही, आप और इमरान अली मानी जो है जिन्होंने 101 को जितना सर्व किया, आई थिंक ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड है। और है कि घड़ी तो पलकों पे रख लो, सदियां लगी है यहाँ आते आते।
0: गुड, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाम बता दो पहले, कहाँ से कॉल कर रहे हो, फिर आगे बात कर लो।
7: जी इसमैन, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ लंदन से।
0: ओके जी उस्मान।
7: जी इसमैन, यू नो लाइक मैं ये बात बड़े वसूल से कहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं, जिंदगी है, गुजरती है, आपको पता है ऐसे ही मेमोरीज होती हैं, ठीक है। किसी ने यहाँ किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो यहाँ हमेशा रह सके, किसी के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। तो बीइंग ऑन रियलिस्टिक साइड, ठीक है, यू नो यू हैव डन ट्रेमेंडस जॉब, ठीक है। और इवन आई फील सो इमोशनल कि यू नो यू आर लीविंग, और ये मेरी एक आदत है, जब मैं इमोशनल होता हूँ तो मैं हंसता हूँ, आपको पता है। और ये यकीन करें, आई डोंट नो व्हाई बट I feel so speechless today, क्योंकि ये कनेक्शन था जहाँ पे हम आप मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पता है कितने लोगों ने आपसे एक नाता बनाया, यू नो, एंड आउट ऑफ सडन ये यू नो यू गोइंग, आई मीन इट्स नॉट यू बट दिस इज आवर नेचर वर्क, सो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, बट यू विल बी रिमेम्बर, इट्स नॉट ओनली यू, जो जो भी यहाँ पे बैठे हैं, यू नो वी डू थिंक अबाउट देम, यू नो, और जितने भी लोग यहाँ से हमने आवाज सुनी, मैं पहले सुनता रहा आपको, मैंने कभी आपको कॉल नहीं करता था, ये बैक इन 2015-16 की बात है, या आई यूज्ड टू बी लिसनर, ठीक है, लेकिन यू नो देन इवेंचुअली बात की, बहुत कुछ सीखा, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच स्टफ आई हैव लर्न, यू नो थ्रू FM, थ्रू डिफरेंट पीपल जो कि इस जर्नी का हिस्सा रहे, आप यू आर वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट आउट देयर, ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग देयर आई एम टेलिंग यू, बट ऑब्वियसली हर बंदे की एक वैल्यू होती है, हर बंदा, आप वहां पे चुप रहते थे जहां पे आपको रहना चाहिए, वहां बात करते थे जहां पे आपको कहनी चाहिए, यू नो दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, हर बंदा इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकता, सो बीइंग वेरी पेशेंट ये आपकी खूबी है, माशाल्लाह इसको अच्छी रखें, जहां जाए अल्लाह बहुत अच्छा करे वंस अगेन। or you know, I don't want to end this call because I know this is the end of all this relation, you know. But once again, thank you so much for all the moments, man, and the way you have conducted your show, full of memories. Once again, thank you so much. And being you are one of the listeners, I want to say thank you from bottom of my heart. Thank you, man.
0: Thank you, brother. Thank you. Khushro. Thank you.
7: Okay. Allah Hafiz.
0: All right, जी उस्मान कह रहे हैं कि मैं जब उदास होता हूँ तो मैं हंसता हूँ. मैं भी थोड़ा हंसने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करनी चाहिए, उदास होना नहीं चाहिए. यानी बीजी कॉलर देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
8: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन कहाँ से?
8: मैं दो तीन मोबाइल से कोशिश कर रहा था. इकबाल मुखलिस सर्च कर रहा हूँ जर्मनी से.
0: जी इकबाल भाई जर्मनी से क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी बात.
8: जी जी बस और इसी बात यही करूंगा कि टीनेज ने बस बात की थी. टाइम ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज एंड देयर विल बी रेडिटी बट वन थिंग वी नेवर चेंज एंड दैट योर मेमोरी फॉर यू एंड योर भाई अस. अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपसे मुलाकात हुई. मैं बड़ा अच्छा लगा. अच्छे इंसान जो होते हैं वो अपनी जगह कहते हैं ना, हजरत अली कभी कौल था ऐसे रहो कि बस वो जगह पूरी ना कर सके. आपने पूरी माशाल्लाह एजुकेशन के साथ सारा कुछ किया. ऑल द बेस्ट माय डियर.
0: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आप हमेशा प्रोग्राम में हिस्सा रहे इकबाल भाई. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़ जी. बहुत सारे पुराने लिसनर्स, बहुत सारे कमिटेड लिसनर्स और बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो अभी भी आ रही हैं और बहुत सारे मैसेज भी आपके आए हुए हैं. और ऐसा ऐसा मैं घड़ी की टिक टिक को भी देख रहा हूँ और साथ देख रहा हूँ कि वक्त जो है वो साथ साथ गुजरता जा रहा है, चलता जा रहा है. और ये मुझे बता रहा है कि मेरे फाइनल शो का वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है.

अभी जैसे जैसे वक्त ख़त्म हो रहा है, थोड़े आपके मैसेज जो हैं वो मैं प्रोग्राम में यहाँ पर रोकूंगा, आपकी कॉल्स को रोकूंगा। और रेडियो रेडियो ने बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी में, लाइफ चेंज की है। रेडियो ने कॉन्फिडेंस दिया, रेडियो ने बहुत सारे अच्छे लिसनर्स दिए, बहुत सारे अच्छे दोस्त दिए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत अच्छे कलीग्स दिए, बहुत अच्छी मैनेजमेंट दी जिन्होंने हमेशा जो है सपोर्ट किया। और अगर मेरे से कोई पूछे रेडियो ने लाइफ में क्या दिया, रेडियो रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रेडियो एक ऐसा दोस्त है जहाँ पर मैंने हमेशा आकर अपने दिल की बातें की हैं, जहाँ पर हमेशा मैंने वो बोला है जो मैं शायद और बहुत लोगों से नहीं बोल पाया। रेडियो ने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलाया मुझे, शायद मैं रेडियो के अलावा उनसे शायद ना मिल पाता। और रेडियो ने जहाँ पर आप ख़ुद कोशिश करते थे कि बोलना कैसा है, कैसे है, रेडियो ने उसको पॉलिश किया, रेडियो ने उसको और बेहतर किया। और जहाँ मैंने हमेशा अपने लिसनर्स को कुछ बातें की हैं, यार अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छे कर लो, लाइफ में आप आगे निकल जाओगे। मैंने एक बड़ी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया, मुझे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने बुलाया हुआ था, मैंने बताई थी ये बात अपने लास्ट ईयर प्रोग्राम में, तो एज ए गेस्ट मुझे बुलाया था, तो सारे पूछते रहे कि स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, तो मैंने ज़रा डिफरेंट बात की वो, क्योंकि सारे पढ़ाई की बात तो सारे ही कर रहे थे, पढ़ाई तो ज़रूरी है, देखो डिग्री लेना ज़रूरी ठीक है होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आजकल के दौर में आपके पास नंबर वन कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये बात बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, और तीसरा कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसके साथ आप लाइफ में आगे जा सको, तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो फिर आप बहुत सारे काम जिंदगी में नहीं कर सकोगे। डिग्री एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो तीन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तीन अगर आप अपने अंदर पॉलिश कर लो ना, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो रेडियो ने मुझे बोलना सिखाया, मुझे जिन लोगों से मिलवाया मैंने उनसे बड़ा सीखा, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त भी बने रेडियो की वजह से। और मैंने बड़ी रातें एफएम 101 को दी, मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए, और उससे मेरी बड़ी लर्निंग हुई, बहुत लर्निंग हुई। और फाइनली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वक्त इतना जल्दी गुजरा है, इतना जल्दी गुजरा है कि ऐसे लगता है कि जैसे पलक झपक के ये 20 साल जो हैं गुजर गए हैं। और लेकिन थैंक यू वेरी मच आप सबका, जो लिसनर्स जो है मुझे सुनते रहे हैं, रिस्पेक्ट देते रहे हैं, मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता उसको कि जो मेरे दिल में आप लोगों के लिए है, और जो मैंने इस माइक्रोफोन को हमेशा समझा है, और मैंने कोशिश की है कि मैं हमेशा इसके साथ फेयर रहूं, क्योंकि माइक्रोफोन एक ऐसा दोस्त है कि आप इसके साथ जितना अच्छा रहोगे ये आपके साथ उतना अच्छा रहेगा। और यही है कि अभी वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और ये बिल्कुल लास्ट टाइम था, आज मैं ऑन एयर था। मंडे बिंडाइट्स 12 से लेकर 2 बजे तक एफएम मरवा इंटरनेशनल में एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, बहुत लंबा अरसा गुजरा आप लोगों के साथ, और अभी ये साथ जो है यहाँ पर ख़त्म होगा। मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है, हसनैन रज़ा HASNAIN स्पेस RAZ हसनैन रज़ा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फेसबुक पर आप www.facebook.com/RJHasnainRaza www.facebook.hasnainraza101 DJHasnain@hotmail.com उसे आप मेरे कोई भी आईडी में सर्च कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो करें, ज्वाइन करें। देखिए ज़िंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में किसी भी जगह को फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। मैंने इस इदारे में, इस
चैनल पे इतना अगर टाइम गुजारा और अब मैंने ये समझा कि मुझे रेडियो छोड़ना चाहिए, उसकी बहुत सारी रीजंस थी. लाइक सबसे बड़ी रीज़न कि मेरे में वो एनर्जी नहीं रही, मेरे में वो पैशन नहीं रहा. और मैं समझता हूँ कि आजकल की जनरेशन मेरे से अच्छा कर सकती है. ठीक है, मैंने अपने टाइम में जो कुछ कर सका मैंने किया. आजकल की यंगस्टर्स जो हैं, जेन ज़ी जो है, वो ज़्यादा अच्छा कर सकती है. तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए रेडियो में अब. और वो मेरे बाद जो नए लोग आएंगे वो कोशिश करेंगे, तो मुझे उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर बैठा रहूँ, प्रोग्राम्स करता रहूँ. और मुझे ज़िंदगी में कुछ नया करना है, मुझे अब ज़िंदगी में कुछ चेंज लेके आनी है. और उसके लिए ज़रूरी है कि, वो कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह मियाँ दूसरा दरवाज़ा खोलता है. तो उसके लिए ज़रूरी है एक दरवाज़ा बंद करना. और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, जितना इज़्ज़त दी है यहाँ पर, इस दरवाज़े को सिर्फ मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ FM 101 को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आऊँगा. और कोई ऐसे इवेंट्स होंगे वहाँ पर मैं ज़रूर आऊँगा, वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी. उसके अलावा दुआ में ज़रूर याद रखें, और आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है. अभी लास्ट ट्रैक जो है वो मैं प्ले करूँगा, और मैंने आज प्रोग्राम में सिर्फ 3 ट्रैक्स ही प्ले किए हैं, और तीनों ट्रैक्स में कुछ ना कुछ है तो मैंने प्ले किए हैं. सो लास्ट ट्रैक अभी मैं प्ले कर रहा हूँ बिलाल खान की आवाज़ में, और ट्रैक है मुझको भूल ना जाना. मैं बड़े साल पहले ये ट्रैक जो है मैं प्रोग्राम के एंड में प्ले किया करता था, और उस टाइम मैं सोचता था, उस टाइम भी मैं ये कहता था कि यार एक टाइम आएगा कि मैं इस माइक्रोफोन पे नहीं होऊंगा तो क्या लोग जो है भूल जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी. आप चाहे किसी के साथ जितना भी लॉयल रह लें, जितना भी अच्छा रह लें, तो लोग भूल जाते हैं. भूलने का मतलब ये नहीं होता कि जान के भूल जाते हैं, इंसान की लाइफ बदल जाती है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, ज़रूरियात बदल जाती हैं, टाइम बदल जाता है, जगह बदल जाती हैं. तो उसके साथ साथ फिर आपका ध्यान जो है वो और बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ों में लग जाता है. सो जब भी मुझे याद करना, अच्छे अल्फाज में याद करना. और ये है कि हमेशा जब भी मेरा जिक्र हो अच्छे अल्फाज में हो, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. और अभी लास्ट ट्रैक जो आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ बिलाल खान की आवाज़ में, एक टाइम था बिलाल खान जब नए नए आर्टिस्ट थे, तो उस टाइम हमारे साथ स्टूडियोज़ में थे, और उनके साथ हमने बड़ी जैमिंग की थी, बड़े ट्रैक्स सुने थे, बड़ी उनके साथ बातें की थी, और आज ड्रामों में आ रहे हैं. तो इस ट्रैक के साथ आपको वो छोड़े जाऊंगा. सो वन लास्ट टाइम, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना. सो हसैन रज़ाई signing off now, very last time. Take care. I love you.

वो बसेस भेजी, वो बसेस को एक ही गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए। काश

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

101 FM。

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

और ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी।